मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 27वीं तिथि तदनुसार दिनांक 18 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपका मित्र अजय धाकड़। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब इन दिन समाचार कुछ ही क्षणों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
2: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारे संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में यही मातृवंदना।

अभी आपने सुन समूसर में ये मात्र वंदना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए सुधा मल्होत्रा के स्वर में ये भक्ति रचना।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंदरा। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर और साथियों के सुर में अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोता साथियों, कार्यक्रम में आगे लीजिए सुनिए चित्रा सिंह के स्वर में ये भजन।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कर्म ही पूजा है, इस विषय पर आज का ये चिंतन। आलेख सुशील कश्यप का है और वाचक हैं आभा गुप्ता।
1: मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। वह स्थिर दिखता होता हुआ भी सतत और सतत अस्थिर रहता है। कर्म ही पूजा है, इसका अर्थ बहुत सरल है, लेकिन हम कर्म को पहले समझ तो लें। जीवन की शाम होने के पहले अगर कर्म समझ में आ गया, तब ही हम यथार्थ में कर्मशील हैं। लेकिन कर्म और कर्म की गति को समझे बगैर यदि हम कर्म अकर्म को परिभाषित करने में ही लगे रहे, तो निश्चित मानिए हमारा जीवन एक यंत्र हो जाएगा, जो बिजली से चलता है, बिजली से रुकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आखिर कर्म को पूजा माना ही क्यों, और किसने मनुष्य के मस्तिष्क की विराटता को नापा है? क्यों उसे अपने शरीर में बैठे ईश्वर को देखने समझने की चाहत हुई? क्यों जीवन के रहस्य को समझने का पागलपन उस पर सवार हुआ? और क्यों वह मृत्यु के पार की दुनिया को देखने समझने के लिए लालायित हुआ? हम पूजा उसकी ही तो करेंगे जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारा कर्म ही पूज्य हो जाए, हमारी सांस ही साधना हो जाए, इस बात को हमें कौन समझाएगा? और क्या हम समझ पाएंगे? हम दार्शनिक धरातल पर ये बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य और प्रायोगिक दृष्टि से देखें तो क्या हम जो कर रहे हैं वे कर्म पूजा के योग्य हैं? हम पूजा की श्रेणी में कौन से कर्म को रखेंगे? आप ये समझने की भूल ना करें कि आप जो काम सच्ची मेहनत और लगन से कर रहे हैं उसे आप अपना कर्म मान बैठे हैं, और बड़ी होशियारी से आप अपनी पूजा से उसे जोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता है कि जिस मूर्ति जिस चित्र पर आपकी आस्था है वह पूजा करने का संतोष देती है, और आपको लगता है कि आज आपने पूजा का नित्य कर्म कर लिया। विश्व में जिन लोगों को भी कर्म समझ में आया वह सबसे पहले कर्म से मुक्त होने में लग गए। बात कुछ विचित्र लगेगी लेकिन यथार्थ यही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्हें कर्म भी पता है और कर्म की गति भी पता है। आप जो भी करेंगे उसका परिणाम निश्चित है, लेकिन जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तब परिणाम कैसा? ये ना करने की स्थिति ही सबसे कठिन है, क्योंकि कल्पना का वेग सबसे शक्तिशाली वेग है। हम कल्पना से ही कर्मशील रहते हैं तो कर्म पूजा ही करेगा ये सोचना कठिन है। मनुष्य व्यस्त होने के लिए ही कर्म करता है, क्योंकि रिक्तता अकर्मण्यता और स्थिरता से वह डरता है। शांत चित्त बैठा हुआ व्यक्ति ऊपर से तो शांत हो सकता है, लेकिन उसके भीतर कितनी उथल पुथल मची है ये कोई नहीं जान सकता। हम कर्म करने से डरे नहीं, लेकिन बुद्धि विवेक से उसके परिणाम को अवश्य समझ लें। हमारा स्वयं हमारे चिंतन से यदि मेल खा गया तो यकीन मानिए आपके कर्म यथार्थ में पूजनीय होंगे, और आप कर्म के माध्यम से हर पल पूजा ही कर रहे होंगे। बल्कि सामान्य भाषा में कहें तो हम अपनी औकात में रहेंगे। औकात को

0: भूलना ही सबसे बड़ी भूल है और औकात को याद रखना ही सबसे बड़ा कर्म और पूजा है। हम याद रखें, जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। दुनिया में सुखी कौन, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सुख का कर्म से सीधा संबंध है, क्योंकि कहा भी गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम कर्म करें, अवश्य करें, लेकिन क्या करें, कब, कैसे और कहां करें, सोचें फिर करें। तब देखिए प्रत्येक कर्म पूजा हो जाएगा और आपका जीवन मंदिर बन जाएगा।
1: कर्म ही पूजा है, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का ये चिंतन। एलेक्स विसील कश्यप का था और वाचक थी आभा गुप्ता। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का यह संगीतमय पाठ।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरीखी ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय है सब्जियों में कीट नियंत्रण, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, सब्जियों में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण कीटों द्वारा शीघ्र प्रभावित होने लगती हैं। सब्जियों से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स प्राप्त होते हैं। सब्जियों में कद्दू, करेला, लौकी, गिलकी, ककड़ी प्रमुख रूप से उगाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंगन, भिंडी, टमाटर, बरबट्टी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मिर्च उगाई जाती हैं। सब्जियों में कीटों द्वारा 25-30% तक आर्थिक नुकसान होता है, जिसका सीधा असर उनकी पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ता है। कीटों को कीटनाशकों द्वारा पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन नियंत्रण के उपाय कर सकते हैं। सब्जियों में प्रमुख रूप से लाल भ्रग और फल मक्खी नुकसान पहुंचाते हैं। लाल भ्रग के निम्फ और प्रोड दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। भ्रग हल्के रंग के जो कि जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, और प्रौड भ्रग लाल रंग के होते हैं। ये कोमल पत्तियों, फूल, पंखड़ियों और फलों को खाते हैं। इसका प्रकोप थोड़ी सी जगह पर होने पर कीटों को हाथ की जाली से पकड़कर मिट्टी के तेल में डुबोकर नष्ट कर सकते हैं। फसल बुवाई के बाद प्रकोप होने पर थोड़े से मिट्टी के तेल को राख में मिलाकर पत्तियों पर भुरकाव करने से कीट मर जाते हैं। फसल लेने के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में छिपी हुई इल्लियां नष्ट हो जाएं। खड़ी फसल में मेलाथियन 50 EC कीटनाशक दवा, 1 लीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। फल मक्खी शाम के समय फल की छाल में अंडरोपक गड़ाकर अंडे 4 से 10 के झुंड में देती है। फल में हुए छिद्र से द्रव निकलकर ऊपरी सतह पर जमा हो जाता है, और फल के अंदर ही अंडों से इल्ली निकलकर जो कि सफ़ेद रंग की होती है फल के गूदे को खाती रहती है। प्रभावित फल पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, बढ़वार रुक जाती है और अंत में गिर जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कीट ग्रसित फलों को एकत्रित करके जमीन में गाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल लेने के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे जमीन में पड़े हुए कीट के प्यूपा नष्ट हो जाएं। 1 किलो गुड़ को 20 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसमें 50 मिलीलीटर मेलाथियन कीटनाशक दवा को मिलाएं, और इस विषाक्त घोल को चौड़े मुँह के मिट्टी के बर्तन में खेत में भरकर जगह जगह पर रख दें। इस तरह फल मक्खी को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगन का प्रारंभ और फल छेदक कीट इसकी सूढ़ी अवस्था जो कि गुलाबी रंग की होती है फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट का प्रकोप 1 से 1.5 माह की फसल में आरंभ हो जाता है। इल्ली पहले प्ररोह को ऊपर से छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाती है, परिणामतः तना और कलियां सूखने लगती हैं। इसके अलावा इल्ली पर्णव्रत और पत्ती के मध्य सिरा को भी छेदती है। जब फल लगना आरंभ हो जाते हैं तो इल्ली डंठल के नीचे

0: सी फल को छेदकर अंदर घुसकर गूदा खाने लगती है, छेद को विष्ठा से बंद कर देती है, प्रभावित फल खाने योग्य नहीं रहते हैं। बैंगन की फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए एक ही खेत में लंबे समय तक बैंगन की फसल नहीं उगानी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, अदल बदल कर फसल उगानी चाहिए, क्षतिग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए, फसल पर इंडोसल्फान 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कीट नियंत्रित रहेंगे और फसल स्वस्थ रहे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा का आज का हमारा विषय था सब्जियों में कीट नियंत्रण, और इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है। श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR, और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
3: रक्तदान जीवन का उपहार है, आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है, महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
4: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री को रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम भी 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। दूरी हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले पहली सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में

अब से कुछ ही देर बाद 8:30 आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर के 90 वर्षीय पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट हॉर्टिकल्चर फल फूल और भविष्य इस विषय पर MPS बुंदेला जिला उद्यान अधिकारी ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। सुबह 7:20 पर समय रहेगा वार्ता का तुलसी साहित्य में सामाजिक चिंतन इस विषय पर और वार्ताकार हैं डॉक्टर KVL पांडे। गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकते हैं 9:00 शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा 9:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे रंजना तोड़पे का गायन राग उगा रामकली। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10:00 जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सेहत की बात तरानों के साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जटिल बीमारियां और हम होम्योपैथी इलाज इस विषय पर डॉक्टर रिजवान नवाज खान से तुलिका शर्मा की बातचीत जिसे आप सुनेंगे 10:05 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 7:30 पर और 10:50 पर। दोपहर में पुनः फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 12:00। दोपहर 2:30 पर बात आपकी गीत हमारे इस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 12:30 पर और महिला कार्यक्रम का समय रहेगा 12:01। लोक संगीत और सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर और 12:45 पर। महिला कार्यक्रम, लोक संगीत और सुगम संगीत ये तीनों ही कार्यक्रम रीवा की प्रस्तुति हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 2:03। श्रोता साथियों ये सभी कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

सायंकालीन समय शाम 6:30 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी पॉडकास्ट श्रृंखला के 33वें एपिसोड के अंतर्गत पद्मश्री श्री आर माधवन का प्रसारण। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम में युववाणी का समय रहेगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम रीवा की प्रस्तुति है। सायंकालीन सभा में फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 5:33 पर। रात्रि 8:15 पर भजन संध्या का समय रहेगा शाम 6:00। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00। अखिल भारतीय पत्रिका साहित्य भारती का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। श्रोता साथी, यह सभी कार्यक्रम हमने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। और चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:20 पर। चर्चा के विषयों में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और वर्षा ऋतु में रखें सेहत का ख्याल। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे फुल बगिया में। चर्चा के विषय होंगे पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं और मेहनत सफलता की कुंजी है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नदियां हमारी जीवनधारा, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं श्रीमती सुमनलता श्रीवास्तव। तो श्रोताओं, यदि हमारे केंद्र से आज पहली और दूसरी सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, इसके साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सम्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश को दी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया शुभारम्भ। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित 13 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धार जिले में बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की अपील की। और प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली, जिसे पीएम मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जींद के बाद प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित कुल 13 स्टेशन शामिल हैं। इस मौके पर सांची में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को करीब 189 करोड़ रुपए के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने टीकमगढ़ में नया मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की।
2: आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आएंगे, सभी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और उद्योग धंधे भी सभी प्रकार के लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके जो हमारे हरिशंकर जी ने कहा और जितने मित्र कह रहे हैं उन सबके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जुमा गाद सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे जवानों से संवाद करेंगे और पहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर हैं और कल रात सिलीगुड़ी पहुंचे थे। आज वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय अशोकनगर दौरे के तहत आज चंदेरी पहुंचेंगे। वे यहां शहरी जल वितरण योजना और नए चिकित्सालय भवन जैसे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं कल श्री सिंधिया ने अशोकनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और खेल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने दिशा समिति की बैठक में जिले में चल रही करीब 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल धार जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर व्यापक जन संवाद किया गया है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। महोत्सव में किसानों को कृषि यंत्रीकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार और रिचार्ज पिट तथा चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल, पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि तय समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कॉस्ट कटिंग नीति लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी विदेश यात्राओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और VIP स्वागत समारोहों के खर्च पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों को अब हवाई यात्रा में केवल इकोनॉमी क्लास का उपयोग करना होगा। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति हुई है। जेल मुख्यालय ने 40 अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सहायक जेल अधीक्षकों को अब उप जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जेल मुख्यालय में आयोजित समारोह में महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने पदोन्नत अधिकारियों को नई रैंक प्रदान की। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की तर्ज पर स्थापित किया गया है। टैलेंट सर्च 2026-27 अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बैडमिंटन और टेनिस चयन ट्रायल्स आयोजित हुए। बैडमिंटन ट्रायल्स में 75 खिलाड़ियों ने और टेनिस ट्रायल्स में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जो खिलाड़ी कल ट्रायल्स में शामिल नहीं हो सके उन्हें आज एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे बारिश तेज होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून सुरगांव निपानी का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोर डुंडिया का निरीक्षण कर शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगर मालवा जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक में देवा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर शामिल हुए। जिला कोषालय नर्मदापुरम में IFMIS केयर्स के तहत 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद मंदसौर की PIC बैठक कल नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर के निर्देशन में जिले में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत कल जिले के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1384 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है तुलसी साहित्य में सामाजिक चिंतन, इस विषय पर यह वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर KBL पांडे।
1: सगुण भक्ति की पूरी दार्शनिक सैद्धांतिकी के प्रति प्रपत्ति भाव के साथ समर्पित तुलसी संसार से विरक्त कर्मकांडीय उपासक नहीं थे। उनकी अनुभूति में विचार की जैसी विराट चेतना, सरोकारों में जैसा व्यापक लोकमंगल, दृष्टि में जीवन के जैसे विशद आशय और आदर्श तथा रचनात्मकता में जैसा उदात्त प्रारूप है, उसके लिए सांसों का नहीं वैश्विक आत्मीयता का महाप्राणत्व चाहिए। तुलसी न भक्ति की पारंपरिक पद्धति में एकांतिक हुए, न जीवन के दुख और संतरासों में समाज द्वेषी हुए। जीवन का निषेध करते अभावों और उपेक्षाओं पर उनका क्षोभ व्यक्त तो हुआ और वो स्वाभाविक भी था, पर उससे मुक्ति के लिए उन्हें राम जैसे लोकनायक की भक्ति का आलंबन मिल गया। लेकिन तुलसी अगर यहीं तक स्थगित हो जाते तब वह व्यक्तिगत रह जाते। इसलिए जिन अभावों में और विषमताओं में वो अपने जीवन में आहत हुए, उनके सामाजिक बदलाव की पूरी परियोजना उन्हें रामकथा में मिली, जिसे माता पिता ने अशुभ जानकर छोड़ दिया, जो बचपन से याचक रहा, चार दाने चने जिसे पुरुषार्थ चतुष्टय लगे, भूख के कारण और आश्रय विहीनता में जो किसी के भी टुकड़े खाता रहा और मसीत में सोता रहा, जिसके लिए न तो रिश्तों के संदर्भ बचे थे न अपनों का अंतरिक्ष, उस तुलसी के भीतर कहाँ वो दुर्लभ सदाशयता वाला महामानव छिपा था जो लोक मंगल के रूप में प्रकट हुआ। लोक मंगल अर्थात सामाजिक मुक्ति, लोक मंगल अर्थात समाज के प्रति व्यक्तिगत से बाहर सबको अपना मानना। तुलसी रामराज्य का लोकहित मूलक आदर्श और सृजन की विराट भूमिका में लग गए। ये तो कहा जाता है जिसका कोई न हो उसका परमात्मा होता है, लेकिन जिसका कोई न हो उसे सब अपने लगे, वो सब में स्वयं को विसर्जित कर दे, उसे तुलसी होना पड़ता है। तुलसी अपनी विनम्रता में भले ही कहें कि उनका काव्य स्वांतः सुखाय है अर्थात भक्ति भाव का निवेदन है, लेकिन उनका काव्य प्रयोजन बहुत स्पष्ट है। कीरति भवति भूति भलि सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। कीर्ति और विभूति की तरह कविता भी वही श्रेष्ठ है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की साधनावस्था कहा है। सामाजिक चिंतन की इसी मनोदशा में तुलसी के लिए परहित सबसे बड़ा धर्म है। समाज की विभिन्न इकाइयों में जब अपने से बाहर का संसार भी होता है तो समन्वय का अपूर्व रूप बनता है। समाज के संदर्भ में व्यक्ति के परिवर्तन का भी महत्व है और उसे संचालित करने वाली व्यवस्था का भी। तुलसी के चिंतन में दोनों का अभिधान है। किसी भी परिवर्तन के लिए वर्तमान से असहमति पहला सोपान है, जो परिवर्तन की कामना को क्रिया रूप देती है। वैसे तो ऐसे परिवर्तन की सक्रियता भी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वो विचार होता है कि पहले यथास्थिति तो बदले। विकल्प या स्थापन का आदर्श तो बाद में सोच लिया जाएगा, लेकिन वो सामाजिकी अधिक सार्थक है जिसमें परिवर्तन के बाद का आदर्श पहले से निर्मित है। तुलसी का वर्तमान वो है जिसका उन्होंने कलयुग के रूपक से वर्णन किया है, और उनका इच्छित विकल्प वो आदर्श व्यवस्था है जिसे उन्होंने राम राज्य के रूप में दिखाया है। इस व्यवस्था का काव्यात्मक वर्णन भले ही अतिरंजित प्रतीत हो, पर तुलसी उसी तरह का सामाजिक रूप चाहते हैं। सारे परिवर्तन मनुष्य के देखे वे स्वप्न हैं जिनके आकारों के लिए उसने संघर्ष किया। इन स्वप्नों को यूटोपिया कहा जाता है, लेकिन स्वप्नशीलता ही हमें जीवन की प्रगति का पाठ्यक्रम देती है। तुलसी के वर्तमान में सामाजिक विश्रृंखलता है, नीति और नियम स्वेच्छाचारिता के सामने सहमे खड़े हैं, धर्म और आध्यात्म पाखंड बन गए हैं, ज्ञान और विवेक लुप्त हैं, उनका आचरण पक्ष

0: विस्मृत हो गया है। परस्परता की भूमि पर वैयक्तिकता ने कब्जा कर लिया है। परिवार टूट रहे हैं। हिंसा पशुओं से अधिक मनुष्यों में परिणति पा रही है। खेती, वाणिज्य, चाकरी, दान सब कुछ असंभव हो गया है। भूमि के अपहर्ता भूप हो गए हैं, यानी समाज उस स्थिति तक नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है जहां उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। ऐसे प्रतिकार के लिए तुलसी को राम से बड़ा नायक और कौन मिल सकता था। तुलसी का अध्ययन असीम था। उनकी आस्था के निर्माण में शास्त्रों की भूमिका है। संहिताओं के नियम निर्देश अनुशासन के रूप में आदर्श माने जा रहे थे। परंपरागत व्यवस्थाएं मान्य थीं, लेकिन संत कवियों में और सबसे ज़्यादा तुलसी के चिंतन में सामाजिक व्यापकता का जो स्वरूप है वो सिर्फ कागजी नहीं बल्कि सामाजिक व्यापकता की प्रतिष्ठा है। तुलसी में अपने समय के अंतर्विरोध हैं। जब वो शास्त्रों की उक्तियों के उद्धरण देते हैं तो कुछ प्रश्नपरक लगने लगते हैं और जीवन की व्यावहारिकता में ठीक उनसे अलग अथवा विरोधी तर्क देते हैं। इस तरह देखने पर तुलसी का क्वचिदन्यतो अपि अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। समन्वय समाज के गठन के लिए आवश्यक तत्व होता है, विशेष रूप से उन समाजों के लिए जहाँ विविधताएं और बहुलताएं हैं। विभाजनों और भिन्नताओं का विलोप ऊपरी एकरूपता में नहीं किया जा सकता, उन्हें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और उदार बनाकर किया जा सकता है, अपनी इयत्ताओं के साथ दूसरे की अस्मिताओं का आदर करते हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य में लिखा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। भारतीय जनता में नाना प्रकार की परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएँ, जातियाँ, आचार विचार और पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तुलसीदास स्वयं नाना प्रकार के सामाजिक स्तरों में रह चुके थे। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं है, उनमें गार्हस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य को मिलाने का प्रयत्न है। तुलसी को रामकथा में राम के निर्वासन में व्यापक सामाजिक और मिश्र समुदायों से मिलाने का अवसर मिला। जिस समाज के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त हैं वो हमारी परिचित भूगोल का होता है। जब हम उस भूगोल से निकलकर अजाने भूखंडों और अपरिचित समुदायों के संपर्क में आते हैं और उनके साथ भ्रातृत्व और अपनत्व दिखाते हैं, तब दूसरों के साथ हमारे व्यवहार की परीक्षा होती है। ये वही कर सकता है जिसके राजतिलक वनवास में बदल जाएं और जिसे न राजतिलक का हर्ष हो न निर्वासन का दुख। ये स्थिर मनोदशा व्यक्तिगत भाव नहीं बल्कि एक व्यापक विश्व का संकल्प लेकर चलती है। राम संतों के भी आश्रम में जाते हैं। आदिम समाज के साथ शबरी का प्रसंग और इसके पूर्व निषाद समाज के प्रति उनकी मानवीय विराटता प्रकट होती है। अहिल्या का प्रसंग प्रतीक रूप में समाज के एक बड़े मुद्दे से जुड़ा है जो आज भी हमारी सामाजिक चिंता का विषय है। पृथ्वी को अन्याय रहित करने का राम का प्रण भी बदलाव से प्रेरित है। तुलसी के सामाजिक चिंतन में केवल मनुष्य समाज ही नहीं है, उसमें अन्य जीव जगत और धरातल भी जुड़े हुए हैं। वो जुड़ाव किसी यात्रा में आए हुए पड़ावों से गुजर जाने की तरह नहीं है, एक अपरिचित भूगोल के मानवीय और मानवेतर इतिहास के साथ जुड़ना है। तुलसी की लोक धर्मिता में ये विस्तृत पृथ्वी की अनेक संस्कृतियों और सभ्यताओं का अंतः संवाद है। ये जीवन को विविधता में देखने का विराट उपक्रम है। हम विश्व भाव लेकर चलें तो अपरिचय के विंध्याचल सुगम हो जाते हैं। समुद्र, अरण्य, वादियाँ स्वागत करने लगती हैं। निर्वासन अपने घर का विस्तार लगते हैं। ये भटकन तुलसी के भी जीवन में आई, पर मन के अवचेतन में बैठे राम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो विनय पत्रिका की आराधना हो, कवितावली या गीतावली की मधुर वर्णनात्मकता हो, या दोहावली की नीति परकता, व्यापक अर्थ में तुलसी अकेले कभी नहीं होते। तुलसी के सामाजिक चिंतन का एक और आयाम है जीवन और संसार के विविध अनुभवों का संचयन और उनका सूक्ति और नीति के रूप में उल्लेख। तुलसी ने समाज को रचना का जो इतना बड़ा अवदान दिया, समाज ने कागज पर ही नहीं अपनी वाचिक चिरंतनता में अविस्मरणीय बना दिया। रामबोला के तुलसी होने का वृत्तांत एक व्यक्ति का नहीं अखिल संस्कृति का महाआख्यान है।
1: अभी आप सुन रहे थे तुलसी साहित्य में सामाजिक चिंतन इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार थी डॉक्टर KBL पांडे। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सरस्वती फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम का ये गीत।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आपकी कसम का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का था और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोत साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की फिल्मों के कुछ गीत। श्रोत साथियों, आज राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी फिल्मों के कुछ गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम आगे लीजिए, सुनिए मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये गीत। गीत लिखा है योगेश ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म कटी पतंग का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने। श्रोता साथियों, आज हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में उनकी फिल्मों के कुछ गीत। श्रोता, राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। उनकी सफल फिल्मों में आनंद, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग और सफ़र उनकी यादगार और लोकप्रिय फिल्में हैं।

उन्होंने 1969 से 1971 के बीच लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में एक अनूठा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना जी अपने अंदाज, अपनी मुस्कान, उनकी मुस्कान और उनके सदावार डायलॉग आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। मरणोपरांत वर्ष 2013 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दो रास्ते का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं और अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म आराधना का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अभी यहीं से मरता है। श्रोता साथियों, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे हिंदी सिनेमा जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी फिल्मों के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात कुछ ही छोड़ों में हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।

0: आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
2: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
2: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस

0: का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम

0: रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
1: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाया।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
3: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
4: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of

0: इस उनके साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिला उद्यानिकी अधिकारी MPS बुंदेला जी, जो बागवानी, आधुनिक कृषि तकनीकों और किसानों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे उनके जर्नी के बारे में, उद्यानिकी के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और किसानों के लिए उपयोगी जानकारी भी उनसे प्राप्त करेंगे। बिना देर किए चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बुंदेला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: सबसे पहले बुंदेला जी, आकाशवाणी या सिंपल शब्दों में कहें तो रेडियो से परिचय की कोई मेमोरी है, कुछ अनुभव है, वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए।
1: हमारा जो बर्थ है वो 1965 का है, तो उस समय रेडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है साधन था समाचार सुनने का और ये मनोरंजन का। और मुझे जो बचपन में मुझे याद है, मेरे फादर बगैर रेडियो के रहते नहीं थे। उनको रेगुलर दोनों टाइम पे न्यूज़ सुनना और पुराने गाने सुनना, ये सब जो है उनके, तो हम लोगों को बचपन से ही मतलब रेडियो में गाने सुनने और न्यूज़, हमको भी उसमें इंटरेस्ट हुआ। और हमारे फादर यहाँ तक कि अगर कभी रेडियो ख़राब हो जाए या सेल डाउन हो जाए तो बहुत उसको तत्काल अभी लाओ, अभी ठीक करो, अभी उसको चालू करो, क्योंकि ये उस समय एक मां साधन था जो पूरी दुनिया के या हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो रहा होता है तो रेडियो के माध्यम से हम लोगों को मालूम चलता था। बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे वो गाने आते थे पायदान के ऊपर
0: गीतमाला,
1: हाँ, तो उसको हम लोग बहुत से सुनते थे। और प्रादेशिक समाचार खास तौर से उसमें था कि जिसमें सुनना ही है, सब काम छोड़ के उसको सुनना है।
0: हम जानना चाहेंगे कि आप प्रारंभिक जीवन के बारे में, शिक्षा और यहाँ तक की जो जर्नी है उसको संक्षेप में थोड़ा हमारे श्रोताओं को।
1: जी, वैसे तो मैं एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर छोटी सी नौकरी थी और वेटरनरी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। हमारा खेती किसानी का पुराना काम है और हम लोग के पास जो भी जमीन होती थी, हमारे पूर्वज खेती करते थे। हमको ऐसा लगा कि बचपन से कि खेती में कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो हमने अपना जो एट क्लास के बाद, जो नाइन्थ क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो हमने एग्रीकल्चर कृषि विषय में अपना पढ़ाई का हमने सब्जेक्ट चयन किया। और कृषि में हमने फिर BSc पहले तो हायर सेकेंडरी किया, फिर कृषि से BSc एग्रीकल्चर किया, उसके बाद में फिर MSc हॉर्टिकल्चर से हमने डिग्री प्राप्त की। फिर डिग्री प्राप्त करने के बाद में हमारा जॉब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, मैं सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। सन 86 से हम लगातार 40 साल लगभग हो गए हमको इस उद्यानिकी विभाग में काम करते हुए। विभाग में और अपने विषय के ऊपर बहुत उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। मेरी पोस्टिंग उज्जैन में हुई 89-91 के दौर में। उस समय जो वेजिटेबल फ्रूट्स का जो पूरे देश में एक प्रॉब्लम होती थी, यानी अवेलेबिलिटी नहीं थी, काफ़ी मतलब उत्पादन कम था। उस समय शुरुआत हुई थी वेजिटेबल्स की, जिसमें वेजिटेबल हाइब्रिड वेजिटेबल आए थे। वो हमारे जो नौकरी के साथ ही वो पहला टमाटर हाइब्रिड और जो टमाटर बीची वो एक हॉलैंड की कंपनी थी और अमेरिका की कंपनी, दो कंपनियों ने इंडिया में शुरुआत की थी। तो जब वो टमाटर मिर्ची और हाइब्रिड वेजिटेबल्स के बीच बाजार यहाँ किसानों के बीच में यहाँ आए तो उनको अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो लोगों का धारणा थी ठंडे देश के बीज हैं और इनको लगाना मुश्किल है। तो उस विषय पर हमने बहुत काम किया और उसमें हमें सफलता मिली और हमने उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्र में हाइब्रिड टमाटर और मिर्ची और पत्ता गोभी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया। एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस क्षेत्र में हुआ। वो उसी से प्रभावित होकर फिर पूरे प्रदेश में हमको एज ए स्पीकर टेक्निकल वो हमको यूज करते थे। और प्रदेश में कहीं भी कोई बड़ी कार्यशाला हो या वेजिटेबल के बारे में कुछ कहना हो तो वो हमको कहते थे बुंदेला को बुलाओ, उससे लेक्चर कराओ, उससे टेक्निकल ट्रेनिंग दिलाओ, ताकि वो किसानों को। फिर हमको जबलपुर ले गए, वहाँ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वहाँ के इंडस्ट्री ने उस समय ये लिख के दे दिया था कि ये संभव नहीं है, हमारे यहाँ ये टमाटर की खेती हो नहीं सकती। ऐसा रिटर्न में एक कागज़ लिख करके उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया था, ये टमाटर जो कि हॉलैंड और ये विदेशी टमाटर के बीज हैं, यहाँ इंडिया में संभव नहीं, हमारे जबलपुर क्लाइमेट में संभव नहीं है। तो उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमारी पोस्टिंग उज्जैन से जबलपुर की गई। हमको सरकार ने एक एकड़ ज़मीन दी और कहा कि इसमें आप टमाटर लगा के बताइए। वो टमाटर उस एक एकड़ गवर्नमेंट लैंड में लगाया तो उस जमाने में हमने उसको 1.5 लाख रुपए का सेल किया एक एकड़ जमीन से उस जमाने में।
0: किस ईयर में?
1: ये बात है 92 की। और पूरे एक इंडस्ट्री के साइंटिस्ट महोदय और हमारे जो भी लोग उसमें प्रगतिशील फार्मर्स ही है, सबको ला करके हजारों लोगों को खेत दिखाया और धीरे धीरे फिर वो एरिया भी एक काफ़ी बड़े हाइब्रिड वेजिटेबल में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे कुछ यादें हैं जो हमारे जीवन में। हमने ग्वालियर ज़िले में भी पहले एक बार हम पोस्टिंग हमारी ग्वालियर में हो चुकी है 2008-14 के बीच में। तो जो जितना भी हरा भरा ग्वालियर दिख रहा है, ये रोड साइड जो प्लांटेशन डिवाइडर के प्लांटेशन, और आपने सुना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर्वत बहुत बनाए गए हैं, नीम पर्वत, शीशम पर्वत, आमले पर्वत, 73-74 पर्वत। जब नरहरी साहब कलेक्टर थे, आकाश त्रिपाठी साहब कलेक्टर थे, विनोद शर्मा साहब हमारे जिला CO होते रहते थे यहाँ, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 17 लाख पौधे लगाए थे ग्वालियर में।

0: और उससे हमारे माननीय कलेक्टर महोदय का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ। हमारा जो पेरेंटल जगह है छतरपुर, वहाँ में पोस्टिंग रहा तो वहाँ भी पहले बीज लेते नहीं थे लोग, मतलब वेजिटेबल के जो बीज आते थे हाइब्रिड्स के खासतौर से, तो लोगों को फ्री मारते फ्री लेते थे।
1: क्यों?
0: वो मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं था लोगों का, अरे तो होगा ही नहीं मतलब ये आप। तो हमने वहाँ भी इतना डेमो लगाया, फिर डेमो लगा के मतलब उन लोगों को दिखाया, और आज मुझे कहने में आपको वो हो रहा है कि छतरपुर जिला इंदौर के बाद सेकंड नंबर की जिला है वेजिटेबल सीड सेल में, हाइब्रिड वेजिटेबल में। अगर इंदौर की बात अपन बात करें, छतरपुर जो है सेकेंड टॉपेस्ट जिला है। कुछ ऐसे काम तो किए हैं विभाग में जिसमें किसानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला और मतलब लोगों की जो आय में वृद्धि हुई है।
1: अब हमें बताएं कि आज के समय में जो हॉर्टिकल्चर है इसका महत्व क्यों बढ़ गया है और पारंपरिक खेती से ये किस प्रकार अलग है?
0: देखिए अभी जो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपनी आगे बढ़ रही है, जमीन के बंटवारे हो रहे हैं। जो जमीन पहले 50 बीघा 25 बीघा 100 बीघा होती थी लोगों का, वो आज 5-5, 10-10 बीघे में सिमट गई है। 5-10 बीघे में अगर आप परंपरागत खेती करके अपना परिवार चलाना चाहते हैं या परिवार को अपनी आर्थिक मजबूती करना रखना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। अगर आपको अपनी आय को बढ़ाना है, उस पर अगर आपको संपन्नता लानी है, तो परंपरागत खेती के साथ साथ जब तक आप उद्यानिकी फसलें नहीं अपनाएंगे आपको आपकी आय में वृद्धि होना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जो परंपरागत खेती है उसकी आय तो सीमित है, उसमें जैसे कोई गेहूं की अपने या इसके धान की बात करते हैं या सरसों की बात करते हैं तो वो उसका उत्पादन भी एक तरीके से सैचुरेट हो चुका है, उसका आय का अपन एक जो मैक्सिमम स्केल पर पहुंच चुके हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना अब काफ़ी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान अपना कुल भूमि अगर वो उसके 25% पार्ट में हॉर्टिकल्चर चालू कर दे तो निश्चित रूप से उसकी आय में बहुत अच्छी वृद्धि हो सकती है। और ख़ासतौर से सब्जी की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, फूलों की खेती का बहुत महत्व है।
1: पारंपरिक खेती से किस प्रकार भिन्न है?
0: पारंपरिक खेती में उतना उत्पादन होता नहीं था, उतनी प्रजातियां उसमें अवेलेबल नहीं थी जो उतना अधिक हो,
1: वैरायटी,
0: हाँ वैरायटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हॉर्टिकल्चर में जैसे कि आपका मान लो ओला अगर मान लो गिर जाए या कोई पाला पड़ जाए, तो अगर आप बगीचा लगा के रखा है आपने कभी अमरूद का, नींबू का, आम का, तो आपका लॉस इतना लॉस कभी नहीं होगा, यानी कि एकदम संपूर्ण मतलब हानि नहीं होती है उसमें कुछ ना कुछ आपका, और ये पूरे साल चलने वाला क्रम होता है। तो कभी ना कभी कोई ना कोई क्रॉप आपको ऐसे करके बैठ जाती है कि आपको लॉस नहीं होता। परंपरागत खेती में अगर एक बार मान लो क्रॉप आपकी कोई लगी है, अगर ओला गिरा या कभी अधिक पानी बरसा या कोई किसी आई, जैसे अभी भी अपन वर्तमान प्रदेश की बात करें तो पानी नहीं बरस रहा, सूखा की स्थिति अभी ऐसा लग रहा है कि शायद कम पानी में, जैसे कि हाइब्रिड टमाटर एक बहुत अच्छी क्रॉप है, बहुत अच्छी फसल है, वो अगर करते हैं तो उनको परंपरागत खेती की तुलना में अगर वो इसको करेंगे तो उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है।
1: अब बात करते हैं हमारे ज़िले के बारे में, ग्वालियर के बारे में। यहाँ पर उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या आपके विभाग की पहल चलाई जा रही हैं?
0: देखिए पहला तो जो हमारे सरकार का प्रमुख उद्देश्य है वो क्षेत्र विस्तार, क्योंकि ग्वालियर जिला अभी जो अगर अपन तुलना करें पूरे प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से तो उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत कम इसका आच्छादन है। टोटल जो कृषि होती है ग्वालियर में उसका 8% हॉर्टिकल्चर है, जबकि यही जो अपन मालवा की जहाँ जो रिच जो अपने मालवा में जो उज्जैन की बात करें या देवास की बात करें या अपन इंदौर की बात करें तो यही वहाँ पर 20-30% का उनका एरिया है। तो सबसे पहला हमारी योजना है वो क्षेत्र विस्तार योजना है
1: उद्यानिकी के अंदर,
0: हाँ जैसे कि फल क्षेत्र विस्तार योजना है। अगर आप अमरूद नींबू और अगर आम के पौधे लगाते हैं तो 60,000-80,000 से लेकर के एक अलग अलग डिस्टेंस पे, जैसे आप 6-6 मीटर पे अगर पौधे लगा रहे हैं तो आपको 50,000 रुपये हेक्टर का अनुदान है। अगर 4-4 मीटर दूरी पर पौधे लगा रहे हैं तो 80,000 रुपये हेक्टर का अनुदान है। अगर आप 3-3 मीटर 2.5-2.5 मीटर की दूरी पर आम अमरूद नींबू के पौधों का रोपण कर रहे हैं तो उसमें 1,00,000 रुपये प्रति हेक्टर तक का शासन अनुदान देती है। और उसमें ये बाध्यता नहीं है कि पौधे आप सरकार से ही लेंगे। हिंदुस्तान में कोई भी जो अच्छी नर्सरी रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस हो, NHB रेटिंग नर्सरी हो, उससे आप पौधे लेकर लगा देंगे पौधे और पैसा आपके खाते में हमारे सरकार विभाग की तरफ से चला जाएगा। इसके बाद में सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना है, 24,000 रुपये प्रति हेक्टर का अनुदान है। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है, 20,000 रुपये हेक्टर का अनुदान है। और ग्वालियर चूँकि दिल्ली के बहुत नज़दीक है तो यहाँ पर फूलों की खेती का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 घंटे में अपन दिल्ली पहुँच सकते हैं अपना फूल लेकर के
1: जी।
0: तो फूलों की खेती पर भी 20,000 रुपये हेक्टर का अनुदान है। गेंदा गिलाडिया कोई अगर खेती करता है, लवरंगा नवरंगा और कट फ्लावर में गुलाब की खेती करता है तो उसमें भी सब में मतलब 1,00,000 रुपये से, एक बल्ब की खेती में 1.5 लाख रुपये तक का 1 हेक्टर का अनुदान किसानों को है। तो प्रमुख योजना तो क्षेत्र विस्तार की है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जो हमारे विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उसका नाम है PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये एक ऐसी योजना है कि किसानों

0: को किसानों के साथ साथ उद्यमी बनाना है, क्योंकि किसान अगर किसान ही रहेगा, अगर वैल्यू एडिशन करके अपना उत्पादन नहीं बेचेगा तो उसको आर्थिक जो लाभ जिस गति से होना चाहिए उस गति से होगा नहीं। और अगर गांव में कभी उत्पादन बढ़ रहा है किसी चीज़ का, जैसे सरसों का उत्पादन बढ़ रहा है, मूंगफली का बढ़ रहा है, तिल का बढ़ रहा है, तो अपन वहाँ हमारे विभाग की ओर से इंडस्ट्री लगाने पर, कोई भी खाने वाली कोई भी अगर फैक्ट्री लगाता है, जैसे ऑयल मिल है, आटा मिल है, बेसन मिल है, पोहा मिल है, गुड़ की फैक्ट्री है, कोई पेठा बनाने की फैक्ट्री है, कोई मिल्क के कोई अगर प्रोडक्ट बनाता है, पनीर दूध घी मतलब घी वगैरह पैकिंग करके बेचता है, तो एक बड़ी योजना है PMFME, उसमें हम लोग 35% अनुदान उस प्रोजेक्ट कॉस्ट पे देते हैं, जो कि एक हितग्राही को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान सरकार देती है। उसके साथ में फिर काफ़ी बड़ी बड़ी योजना, जैसे कम पानी में खेती करना है तो ड्रिप इरीगेशन, जिसमें 55% का अनुदान, जिसमें टपक पर पानी पौधे पास पहुँच, हाँ तो कम पानी में अच्छी पैदावार लोगों को मिल जाती, पानी का और नुकसान नहीं। मतलब
1: इन योजनाओं के विषय में अगर हमारे श्रोताओं में से जो लोग हैं विस्तार से जानना चाहें तो उनको कहां पर ये जानकारी मिल सकती
0: है? वैसे तो आज तो इंटरनेट का जमाना है, कहीं भी आप सर्च करें तो मिल जाए, और एक आप MIDH गाइडलाइन करके आप टाइप करेंगे, ऑपरेशन गाइडलाइन आप MIDH करके लिखेंगे, हाँ MIDH
1: पर हमारे श्रोता इस विषय में
0: ऑपरेशन गाइडलाइन उसमें पड़ी हुई है,
1: ऑपरेशन गाइडलाइन,
0: हाँ तो उसके अंदर आपको पूरा जो भी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं, खासतौर से योजना भारत सरकार की ही मतलब लागू है, तो सारी योजनाओं का डिटेल उसके अंदर है। और वैसे चूँकि आपस हमारा कार्यालय में आके भी कभी कोई संपर्क कर सकते हैं, ये मेला ग्राउंड के सामने हमारा कार्यालय है, सहायक संचालक उद्यान, तो वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कभी भी जो है। और हम लोग बीच बीच में कार्यशालाएँ करते हैं, कई टेक्निकल हम लोग पंपलेट भी लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो उसके माध्यम से भी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आपको अगर उद्यान की विभाग का लाभ लेना है तो उसमें हमारा पोर्टल है MPFSTS, आप लोग थोड़ा नोट भी कर सकते हैं MPFSTS, उसको आप खोलेंगे तो आप अपने घर से खुद मतलब आपके घर से आप मोबाइल के माध्यम से उसमें पंजीयन कर देंगे। उस पंजीयन में 5 चीज़ें लगती हैं, आधार कार्ड और एक फ़ोटो और खसरा खतौनजी नकल और बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी, ताकि आपका अनुदान आपके खाते में पहुँच सके। तो इसके लिए आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना, ना किसी के पास जाना, आपको खुद भी मतलब आपके मोबाइल से उद्यान की विभाग की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश में, उस पोर्टल में पंजीयन करने के बाद आपको स्वतः सारी जानकारी मिल जाएगी, और आपको उसमें दिख जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं पूरे प्रदेश में लागू हैं और किस योजना में आपको लाभ लेने रुचि है, उसको आप उस योजना में जोड़ देंगे, जैसे लक्ष्य प्राप्त होंगे तो उस योजना का लाभ आपको ऑटोमेटिक 100% जो कि ऑनलाइन सिस्टम से हमारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता है। तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अब पोर्टल पर MPFSTS पोर्टल पर उद्यान की विभाग की योजनाओं को लाभ लेने के लिए आप जुड़े, और जुड़ करके ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा, आपका जो भी योजना पर आप चयन करेंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉटरी सिस्टम से और वैसे सिस्टम से आपका जो भी लाभ आपको पात्रता है वो आपका पास आप संदेश पहुँच जाएगा, मैसेज पहुँच जाएगा कि आपका चयन हो गया है, आपका अनुदान स्वीकृत हो गया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं।
1: मैं दोहरा देती हूँ MPFSTS
0: जी,
1: इस पोर्टल पर जाकर सबको एक्सप्लोर अवश्य करना चाहिए, खासतौर पर जब आप घर बैठे ही सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बुंदेला जी बताइए कि किसानों के लिए कौन कौन सी ऐसी आधुनिक तकनीकें या नवाचार हैं जिनको अपना करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं?
0: देखिए नवाचार के रूप में जैसे अभी एक नया जो सिस्टम आया है कि गाँव में मजदूर नहीं मिलते हैं, तो मल्चिंग करके योजना है, आप उसमें आजकल देखा होगा आपने बहुत जगह किसानों के खेतों में अपन जो टमाटर मिर्ची बैगन या जो भी क्रॉप लोग लगा रहे हैं, फल उद्यान वगैरह भी और भी दूसरी क्रॉप, तो एक प्लास्टिक की मल्चिंग आती है उसको बिछा करके उसको ढक देते ज़मीन से, तो उसके अंदर फिर ड्रिप इरीगेशन ड्रिप की पाइप डाल देते हैं, तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो कम पानी में खेती होती है, दूसरा जो चारा है वो बिल्कुल नहीं होता है, तो एक तो मल्चिंग और ड्रिप का उपयोग किसानों को बढ़ाना चाहिए। दूसरा थोड़ा नई तकनीकी जैसे पॉली हाउस में फूलों की खेती करना, पॉली हाउस में कलर्ड शिमला मिर्च की खेती करना, और नई टेक्नोलॉजी में भी नए फ्रूट्स बहुत आ गए, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स ग्वालियर में अच्छा हो रहा है, ब्रोकली भी अभी किसान ने इधर चालू की है अपने घाटी गांव एरिया में, जो कि ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर जैसा होता है, विटामिन्स वगैरह बहुत होते हैं, तो सक्सेसफुली वो भी यहां हो रही है, तो ब्रोकली है, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, रेड कैबेज है, इधर लोगों को चेरी टोमेटो हैं जो छोटे टमाटर आते हैं, तो उधर की तरफ लोगों को टेक्नोलॉजी में नए में जाना चाहिए ताकि उनको
1: आए उनकी बढ़ सके,
0: बढ़ सके जी सर।
1: बुंदेला जी जलवायु परिवर्तन बड़ा गंभीर प्रश्न है आज का, उद्यानिकी को किस तरह प्रभावित कर रहा है और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: देखिए जलवायु परिवर्तन वास्तव में पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा एक, जैसा आप देख रहे हैं अभी टेम्परेचर इतना जा रहा है कि बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो, दुनिया में पूरा ही मतलब इसमें भी परेशान है, और जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उत्पादन में जो है कमी आने लगती है, जैसे कि अगर ऐसा कहते

0: हैं लोग कि अगर दुनिया का पृथ्वी का टेम्परेचर तापमान 1 डिग्री बढ़ गया तो गेहूं जो उत्पादन आज हो रहा है उसका उत्पादन 50% घट जाएगा, तो आधा डिग्री के आसपास बढ़ चुका है, आधा का और जो है। तो इसी प्रकार से अगर दूसरी फसलें जो है जैसे अपना टमाटर है, गन्ना है, सारी क्रॉप में उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। अगर तापमान को अगर नियंत्रण में नहीं रखा, अगर 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ गया तो जो उत्पादन आज देश में और दुनिया में हो रहा है उसको जस्ट आधा हो जाएगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। एक और बड़ी समस्या है कि अगर आपने इस अवधि में अगर पौधारोपण नहीं किया, अगर आप आम के, अमरूद के, नींबू के बगीचे, अगर कटहल के लगाते हैं, आंवले के बगीचे लगाते हैं, तो आपका वो आपको आय भी देता है और साथ में तापमान कंट्रोल भी करता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने में पौधों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शोषित करते हैं, ऑक्सीजन को अपने को देते हैं। आप नीम का पौधा खासतौर से जैसे है तो आप कभी उसके नीचे 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, 10 डिग्री आप नीम के नीचे खड़े हो जाइए, 10 डिग्री बाहर आप 10 फीट निकल के बाहर चलेगी, 10 फीट बाद आपका 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो तापमान कंट्रोल करना है तो फिर खेतों में, मेड़ों पे, सब जगह जितना जहाँ भी जो भी जगह खाली पड़ी है, उपयोग में नहीं है, बंजर भूमि इत्यादि जो सब में ही पौधा रोपण करना ही पड़ेगा, तभी ये संभव होगा कि अपन तापमान कंट्रोल कर सके। उसका
1: पॉल्यूशन
0: कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये धूल वगैरह जो है उसका भी, AC अपन जो यूज कर रहे हैं इसका भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो गैस निकलती है उससे तापमान वृद्धि होती है। सबको मिलजुल कर इसमें सार्थक प्रयास करने होंगे तभी ये चीज़ संभव है अकेले।
1: तो औद्यानिकी फसलें जो होती हैं उन पर जो असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन का, इससे निपटने के लिए कोई उपाय होते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल उपाय होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में साल भर सब्जियाँ नहीं मिलती थी, पहले साल भर सीजन पर सब्जियाँ आती थी, आज अपन देख रहे हैं सब सीजन सब्जियाँ मिल रही हैं, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं सारे, अब अभी आपका अमरूद खाने को मिल जाएगा, पहले कभी नहीं मिलता था, ठंड में ही मिलता था, टमाटर पूरे साल मिलता है, मिर्ची पूरे साल मिलती है। तो ये सब नई नई जो प्रजातियाँ विकसित हो रही हैं उद्यानिकी में वो टेम्परेचर के को भी मतलब बर्दाश्त करने क्षमता रखती हैं, तो उद्यानिकी में जो प्रभाव पड़ने वाला वो थोड़ा कम है, जो खाद्यान्न फसलों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है तापमान वृद्धि का, क्योंकि उद्यानिकी में तो नित नए आविष्कार हो रहे हैं और नित नई वैरायटियाँ डेवलप, कई प्राइवेट कंपनियाँ और सरकार मिलकर काफ़ी ज़्यादा इसमें अनुसंधान पर जोर है, वो दुनिया ही में लोग काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे भी लोग रिसर्च करके उसको ब्रीडिंग करके और नई वैरायटी बना रहे हैं, तो वो सक्सेस भी हो रही हैं। आपने देखा होगा आज से करीब 10-15 साल पहले पत्ता गोभी आती थी, वो देसी रहती, देसी पत्ता गोभी, अब आज मार्केट में एक देसी पत्ता गोभी का, क्योंकि वो गोभी का एक टाइम था होने का, लेकिन हाइब्रिड पत्ता गोभी पूरे साल हो जाती है, हर टेम्परेचर पर अलग अलग वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। ऐसी अभी फूल गोभी के देख रहे हैं, अभी भी मार्केट फूल गोभी आ रही है
1: जी,
0: हाँ पहले ज़माने में नहीं आती थी। उद्यान की फसलों के उत्पादन में तो फर्क तो है, लेकिन उसका नियंत्रण अभी कंट्रोल में है, आगे अगर 2-3 डिग्री
1: नई वैरायटीज को डेवलप करके
0: 2-3 डिग्री अगर बढ़ेगा तो फिर समस्या आएगी, टमाटर में प्रोडक्शन बिल्कुल घट जाएगा। फ्लावर से जो जब फ्रूट सेट होता है तो पोलन जो होता है, जब वो पोलन वायबल नहीं रहेगा तो फूड सेटिंग नहीं होगा, प्रोडक्शन मिलेगा।
1: हम उम्मीद करते हैं कि वो समय नहीं आएगा कि 2-3 डिग्री बढ़े, उद्यान हमें स्थापित करने चाहिए जिससे कि टेम्परेचर कंट्रोल करें।
0: उद्यान से 2 फायदे हैं, आप देश का आने वाली पीढ़ी के लिए आपका भला करके जा रहे हैं, अपना तो जो जीवन गुजरा, अगर आप पौधा लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं तो आपको आय भी प्राप्त होगी, आपको फल भी मिलेंगे और इसके साथ में आप तापमान कम करने में देश की मदद भी करेंगे।
1: बुंदेला जी, उन युवाओं को और किसानों को आपका क्या संदेश रहेगा जो उद्यानिकी को करियर या व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं?
0: देखिए, इसके अलावा विकल्प नहीं है। आज आप देखिए, आप कई सोशल मीडिया में देखिए, बड़े बड़े इंजीनियर जो लोगों ने BE और BTEC और MTEC और MBBS इत्यादि अच्छी डिग्री लेने के बाद भी लोग हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं, और उद्यानिकी एक तरीके का व्यवसाय है, मतलब ये खेती नहीं है, उद्यानिकी पूरा एक व्यापार की तरह, अगर आपको किसानों को हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको अपनाना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको छोटी मोटी नौकरी करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में 5 एकड़ ज़मीन अगर है और हमारा अगर जो पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति है तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, लेकिन 5 लाख रुपये न्यूनतम वो एक वर्ष में उससे अपनी आय प्राप्त कर सकता है, और थोड़ा और हाईटेक अगर खेती करता है, थोड़ा और इंप्रूवमेंट, तो 10 लाख रुपये तक भी वो 5 एकड़ ज़मीन से साल भर में प्राप्त कर सकता है,
1: यहाँ अपने क्षेत्र में।
0: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपन एग्जांपल अगर बात करें टमाटर की, तो टमाटर की पैदावार 1 एकड़ में 400 कुंटल से 500 कुंटल तक होती है, अगर 10 रुपये किलो टमाटर, 8 रुपये किलो टमाटर बाज़ार में अगर बिक रहा पूरे साल, तो 4 लाख रुपये का टमाटर 1 एकड़ से पैदा होता है। ऐसे अपन अगर हरी मिर्ची की बात करें कि मिर्च की प्रोडक्शन, तो एक एकड़ में 150 से

0: सौ कुंटल मिर्ची, हरी मिर्ची निकलती है, और 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो तो एवरेज भाव मिर्ची के होते, कभी 50 होते हैं, लेकिन 10 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में मिर्ची बिकती रहती है सीजन बाई सीजन जैसा मौसम आता है। तो मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से यही एक संदेश है ग्वालियर वासियों के लिए, खासतौर से जो नई जो जनरेशन जो छोटी मोटी नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रही है और उसके लिए अगर वो है, तो जो भी उसके साधन उपलब्ध हैं, घर में जो खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध है, उसको वो एक उद्योग के रूप में उसको स्थापित करके निश्चित रूप से एक 5 एकड़ ज़मीन वगैरह में वो अगर इसको मेंटेन करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख रुपये साल में वो आय अर्जित कर सकते हैं।
1: ये एक रिवायत है कार्यक्रम के अंत में कि अपनी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमें बताएं जो हम आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: मुझे तो पुराने गीत बहुत पसंद हैं जैसे कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसके इससे बाहर जाना कहाँ।
1: बहुत ही सुंदर ये गीत है, हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ फूलों वाला गाना आप पसंद करेंगे लेकिन हम आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट हॉर्टिकल्चर फल फूल और भविष्य इस विषय पर एमपीएस बुंदेला जिला उद्यान अधिकारी ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। इसमें सुबह के 8:58 होने को हैं। अब अगला कार्यक्रम कुछ क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित कुल 13 स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हरियाणा के जींद में कल करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने इस दौरान देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जुमा गाज सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे यहां जवानों से संवाद करेंगे और प्रहरी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल धार जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें सरकारी विदेश यात्रा, महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी स्वागत समारोह, हवाई यात्रा, होटल्स में होने वाली बैठकों सहित कार्यशालाओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल पुलिंग नीति भी अनिवार्य की गई है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं डिंडौरी और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश तेज होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडी व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे और 9:10 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

गुड मॉर्निंग ग्वालियर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता और साथियों को आपकी मित्र अजय का नमस्कार। दोस्तों, आज दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और महान रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला जी की जयंती है। जहां दोस्तों, इनकी जयंती हर वर्ष 18 जुलाई को मनाई जाती है। इनके जन्म दिवस को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2009 में की थी।

0: शिताब मंडेला जी। मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेबोजी गांव में हुआ था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के खिलाफ एक लंबी और अहिंसक लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा। वर्ष 1994 में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। रंगभेद के खात्मे के लिए उन्हें वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार और वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। श्रोता, इस दिन लोगों से अपने समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए 67 मिनट निकालने की अपील की जाती है। यह 67 मिनट का समय नेल्सन मंडेला द्वारा रंगभेद के खिलाफ और मानव सेवा में बिताए गए 67 वर्षों का प्रतीक है। आज उनकी जयंती के इस मौके पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका मित्र अजय। श्रोता साथियों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाते हैं, जिस वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं। और श्रोता, इसी जल्दबाजी और लापरवाही से आपको सतर्क करने के लिए और दुर्घटना से बचाने के लिए आपने सड़क पर जगह जगह लिखा देखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी और दुर्घटना से देर भली। इस तरह लिखे हुए बोर्ड आपको जगह जगह मिल जाएंगे। दोस्तों, इस लापरवाही और जल्दबाजी के कारण ही काफ़ी संख्या में जन की हानि होती है। श्रोता, कई बार असावधानी केवल वाहन चालक से ही नहीं होती बल्कि पैदल चलने वाले यात्रियों से भी होती है, इसलिए यात्रा करते समय जल्दबाजी और लापरवाही से बचना चाहिए। श्रोता, अगर हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किसी दुर्घटना का शिकार हम खुद भी हो सकते हैं और हमारे कारण कोई

0: दूसरा भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आजकल जिस तरह से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। श्रोता साथियों, एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में हर वर्ष सड़क हादसों में करीब 1.5 लाख लोगों काल की रास बन जाते हैं और काफ़ी संख्या में लोग घायल भी होते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप यातायात का पालन कैसे करें और क्या हैं यातायात के नियम। श्रोता, वाहन सदैव अपनी पंक्ति में ही चलाएं। वाहन मोड़ते समय आवश्यक संकेत जैसे कि इंडिकेटर दें और हॉर्न ज़रूर बजाएं। और अगर आप वाहन चलाते समय रुकते हैं तो संकेत ज़रूर दें। दोपहिया वाहन चलाते समय 2 व्यक्ति से ज़्यादा ना बैठें और साथ ही हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय या सड़क पर पैदल चलते समय मोबाइल पर बात ना करें। भीड़भाड़ वाली जगह जैसे स्कूल, अस्पताल, चौराहों, कॉलेज इत्यादि के आसपास पैदल यात्रियों का ध्यान रखते हुए अपने वाहन की गति को जो है वो धीमा रखें। साथ ही दोस्तों, चकाचौंध करने वाली हेडलाइटों का उपयोग न करें। रात के समय वाहन चलाते समय डिपर का प्रयोग करें। यातायात के संकेतों का पालन करें। सड़क पर पैदल चलते समय फुटपाथ और साइकिल से चलते समय साइकिल ट्रैक का उपयोग करें। पैदल सड़क पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग ओवरब्रिज का उपयोग करें और सड़क पार करते समय दौड़कर सड़क पार ना करें। इस तरह श्रोता साथियों, आप अपनी समझदारी और जिम्मेदारी से सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज हमारे द्वारा बताई गई इस सलाह का आप अनुसरण ज़रूर करेंगे। श्रोताओं, यातायात के नियमों का पालन ज़रूर करें। यातायात सुरक्षित हो, इसके लिए आप खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोता, मध्य प्रदेश में 10,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया आज शनिवार से शुरू हो रही है और चयनित अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेज अपलोड और जिले का विकल्प देना होगा। दस्तावेज सत्यापन 19 से 21 जुलाई तक होगा। इस भर्ती में शिक्षा विभाग के 8,000 और आदिम जाति विभाग के 2,000 पद शामिल हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: साथियों, आजकल के समय में बच्चों को इमोशनली मजबूत करना बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर वे भावनात्मक तौर पर मजबूत होंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अक्सर दोस्तों हमने ऐसे कई किस्से सुने हैं कि परीक्षा में कम अंक आने या असफल होने के डर से बच्चे घातक कदम उठा लेते हैं। यह उदाहरण है कि वे इमोशनली तौर पर कितने कमज़ोर हैं। ऐसे में एक अभिभावक शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की इमोशनल हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। श्रोताओं, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, इसका उनके विकास पर असर पड़ता है। दोस्तों, बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उन्हें दें, इससे वे जिम्मेदार बनेंगे। और अगर बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। दिन भर में फैमिली टाइम निश्चित करें, जिसमें आप बच्चों से बातें करें, उनकी बातें सुनें, जिससे वे खुद को इग्नोर फील ना करें। योग और मेडिटेशन, खेल कूद को बच्चों की दैनिक दिनचर्या में शामिल कराएं। और बच्चों में नई हॉबी भी डेवलप करें, जिससे उनमें सामाजिक जुड़ाव विकसित होगा। श्रोता, अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली खबर भी स्वास्थ्य से ही जुड़ी है। श्रोता, जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, भोजन करना जितना ज़रूरी है दोस्तों, और व्यायाम करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है दोस्तों नींद। जी हाँ दोस्तों, नींद का पूरा होना भी स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ पर्याप्त नींद ही नहीं बल्कि समय पर नींद लेना और सही समय पर उठना भी बेहद ही ज़रूरी है, और ऐसा ना करना कई रोगों को दावत देना है। श्रोताओं, नींद हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इस आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी सोने की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एक अच्छी नींद हमारे दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और शरीर के दूसरे अंगों को आराम देने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। श्रोताओं, पर्याप्त नींद शरीर ही नहीं मन के लिए भी ज़रूरी है। कम नींद से वयस्कों में बीमारियां होती हैं और याददाश्त भी जो है वो कम होने लगती है, वहीं बच्चों का शारीरिक विकास जो है वो प्रभावित होता है। श्रोता, कुछ लोग रात भर काम या यात्रा के दौरान जागते रहते हैं और अधिकतर लोगों को यह लगता है कि अगर रात में नहीं सोते हैं तो दिन में सोकर नींद पूरी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोते समय शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और इनमें अधिकांश जो हार्मोन्स हैं वो केवल रात को ही जो हैं वो स्रावित होते हैं। दिन में सोने से दोस्तों थकावट, जो थकान है वो थोड़ी बहुत दूर हो सकती है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन्स की भरपाई है वो नहीं होती है, और यही वजह है कि जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हार्मोन का असंतुलन होने लगता है, उनमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे ब्लड शुगर, थायराइड जैसी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। शोध साथियों, एक शोध के अनुसार रात को काम करने वाले लोगों में कैंसर से जुड़े जीन सक्रिय रहते हैं और उनमें कैंसर का जो खतरा है वो अधिक रहता है। श्रोता, नींद न आने का कारण है मानसिक तनाव, अत्यधिक थकावट, पेट खराब होना, दिनचर्या का संतुलित ना होना, सोने उठने और खाने पीने का कोई निश्चित समय ना होना। दोस्तों, कम सोने के जो खतरे हैं वो जुखाम और फ्लू का खतरा रहता है, दिल की बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मधुमेह का खतरा हो सकता है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है और समय से पहले आप काल के ग्रास बन सकते हैं। दोस्तों, नींद की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, आजकल मोबाइल का चलन इतना चल गया है कि इसमें

बच्चे युवा मोबाइल के आदि हो चुके हैं। अक्सर जो समस्या है दोस्तों वो यहीं से शुरू होती है। नींद ना आने का बहाना बनाकर अधिकतर युवा जो हैं वो मोबाइल देखते रहते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है और इससे न केवल आँखों की नमी कम होती है बल्कि आँखों में जलन होने से नींद भी नहीं आती है। पर्याप्त और भरपूर नींद के लिए श्रोता साथियों ज़रूरी है कि सोने से पहले मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप दूरी बना लें और संभव हो तो सोने से पहले कुछ ही किताबें पढ़ें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप कम समय में पर्याप्त नींद का भी अनुभव करेंगे। दोस्तों आपको बताते हैं कि देर तक सोने और लेट उठने के नुकसान। कैलोरी बर्न नहीं होने से शरीर जो है वो मोटापा ग्रस्त हो सकता है, वजन अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, हार्मोन का असंतुलन होने लगता है और इससे आपका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, धीरे धीरे डिप्रेशन आपको घेर लेता है, दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और ज़्यादा आराम करने की स्थिति में मांसपेशियों पर भी जो है वो बुरा असर पड़ता है। श्रोता अधिक देर तक सोने से दिमाग पर भी असर पड़ता है और याददाश्त भी जो है वो कमज़ोर होने लगती है। श्रोता साथियों अच्छी नींद के कुछ और बेहतर उपाय भी हैं, जैसे कि सोने से पहले पैरों को धोकर सोएं और सोने के कम 3 घंटे पहले ही खाना खा लें और रात का खाना कोशिश ये करें कि 7 से 8 बजे के बीच ही खा लें। रात को बाहर का खाना खाने से बचें और रात को हल्का खाना ही खाएं। रात को भोजन करने के बाद 10 मिनट ज़रूर टहलें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। और श्रोता कोशिश ये करें कि दिन में सोने की आदत से बचें, हमेशा रोज़ एक ही समय पर सोना चाहिए, इससे यह रोज़ आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। दोस्तों अच्छी नींद के क्या क्या फ़ायदे हैं। पाचन तंत्र इससे अच्छा रहता है, शरीर का वजन संतुलित रहता है, तन और मन शांत और खुश मिजाज रहते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो मजबूत होती है, सिर दर्द और अन्य रोगों के दर्द से जो है वो राहत मिलती है और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। दोस्तों एक अध्ययन के मुताबिक 18 से 64 वर्ष तक के लोगों के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो पर्याप्त होती है। उम्र के हिसाब से नींद का जो ग्राफ है वो कुछ अलग अलग है। छोटे बच्चों के लिए 11 से 14 घंटे, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 10 से 13 घंटे और किशोरावस्था में जो बच्चे हैं 14 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 8 से 10 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त होती है। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जितना पौष्टिक भोजन करना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, व्यायाम करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है दोस्तों पर्याप्त नींद लेना। दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद ही ज़रूरी है। श्रोता साथियों अब समय उचला इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो इस कार्यक्रम से अब अपने मित्र अजय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रंजना तोंडपी का गायन, राग है रामकली।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रंजना तोड़पी का गायन राग था रामकली। मीडियम व्यू 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। अब जिले की चिट्ठी कुछ क्षणों में हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी, आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रपति ने लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने जिले के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिक्षा, शोध और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ग्वारीघाट पहुंचकर माँ नर्मदा की आरती में भी शामिल हुए। वहीं रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। समारोह में वीरांगना को श्रद्धांजलि और सशस्त्र सलामी दी गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल शुरू किया है। इसे पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक विभाग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। साथ ही प्रथम नाम की एआई प्रणाली भी शुरू की गई है, जो मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और मंत्री राकेश सिंह ने निर्माणाधीन रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं जल्द ही जबलपुर से कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 दिन सीधी उड़ान शुरू होने की तैयारी है। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फायदा मिलेगा। इसी बीच जबलपुर के मटर और सिंघाड़ा को जीआई टैग मिला है। इससे इन उत्पादों की अलग पहचान बनेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी जबलपुर को बड़ी उपलब्धि मिली है। यूएन वुमेन की सेफ सिटीज परियोजना के लिए देश में सिर्फ जबलपुर का चयन हुआ है। इस योजना से महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान और सुरक्षित बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान भी शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब बात स्थानीय निकायों की। राज्य वित्त आयोग की समीक्षा बैठक में पंचायतों और नगर निकायों की आय बढ़ाने,

0: पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की गई ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। शिक्षा और पर्यावरण की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और भारतीय ज्ञान परम्परा पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आकर जबलपुर में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए प्रदेश का वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस को ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.2 अभियान जारी है। स्कूलों में विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने और जरूरत पड़ने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर रहने वाले निराश्रित लोगों की पहचान कर उन्हें परिवारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कृषि की खबर। कृषि विभाग की टीम ने प्राकृतिक खेती और खरीफ फसलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। किसानों को बेहतर बीज, संतुलित उर्वरक और कम पानी वाली फसलों की जानकारी दी गई। विज्ञान और उद्यमिता से जुड़ी दो अच्छी खबरें भी हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग हुआ। वहीं महिला उद्यमिता और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। मौसम की बात करें तो जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। खरीफ फसलों की बुआई को फायदा हुआ है। बरगी बांध में पानी की आवक अभी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार की नई कहानी लिखी है। जबलपुर के अभिषेक भावे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से मिले ऋण से अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खड़ा किया। आज की तारीख में उनका टर्नओवर सालाना 15 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं जबलपुर की ही शैल पटेल ने आजीविका मिशन से मिली मदद से चाय नाश्ते की दुकान शुरू की, जो पति के निधन के बाद उनके परिवार का सहारा बनी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखियों की बदौलत अब गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। परखेड़ी गांव की क्षमा ठाकुर जैसी बैंक सखिया बायोमेट्रिक मशीन से लोगों को नकदी निकासी और जमा जैसी सेवाएं दे रही है। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: मीडिया व्यू 216.45 मीटर यानी 1385 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय सुबह 10:05 में हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनाने जा रहे हैं जटिल बीमारियां और होम्योपैथी इलाज। इस विषय पर डॉक्टर रिजवान नवाज खान से तुलिका शर्मा की बातचीत।

0: सेहत की बात तरानों के साथ। श्रोताओ, इस कार्यक्रम का एक ताज़ा तरीन अंक लेकर हम हाजिर हैं और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नवाज खान। आप होम्योपैथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
1: शुक्रिया। नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, होम्योपैथी जो है वो काफ़ी पुरानी पैथी है इलाज की दिशा में अगर हम देखें तो।
1: जी।
0: बीमारियों पर ये कैसे असर करती है, क्योंकि जो इसकी विश्वसनीयता है वो बहुत सारे लोगों में अपनी पैठ नहीं बना पाई है। बहुत सारे लोग अभी भी एलोपैथी और आयुर्वेद में यकीन रखते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो होम्योपैथी का दीवाना है।
1: जी जी।
0: तो ये क्या प्रक्रिया होती है बीमारियों के साथ जिसकी वजह से होम्योपैथी का इतना अभी भी दबदबा बना हुआ है?
1: देखिए, होम्योपैथी बहुत पुरानी पैथी है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से होम्योपैथी को अपन पेश करते हैं, जैसे पिल्स हैं, जो गोलियां होती हैं, उसको लोगों में भ्रम है, एक कन्फ्यूजन है, एक डेल्यूजन है उनके माइंड के अंदर कि ये बारीक गोलियां कैसे काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इनमें ऐसा क्या है। जब देखते हैं उनको तो उतना मुतासर नहीं हो पाते, उतना अट्रैक्ट नहीं हो पाते। उनको लगता है कि ये बारीक गोली, मीठी गोली, ये क्या असर करेगी।
0: एक ही तरह की
1: शीशियों में होती है, वाइट कलर की होती है। तो लोग नेगेटिव एक मैसेज आता है उनके माइंड में और उस पर उतना बिलीव नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने आप को उससे दूर ले जाते हैं कि यार ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, बहुत टिपिकल ट्रीटमेंट है और इसमें सालों लग जाएंगे, तो उसको लेके वो नेगेटिव रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी डिजीज़ पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पाती है दूसरी पैथी से, लास्ट में फिर वो होम्योपैथी के पास ही आते हैं।
0: किस तरह से आप बीमारियों को पहचानते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि किसी भी तरह की कोई जांचें वगैरह तो होती नहीं है। यदि हम एलोपैथी में जाएं तो तमाम तरह की जांचें, खून की जांच है या एक्सरे है या अल्ट्रासाउंड है, ये सब होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। तो किस तरह से आप किसी बीमारी की जांच करते हैं?
1: सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बीमारी क्या है, डिजीज़ क्या है, व्हाट इज़ डिजीज़। इन केस ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का अपना एक सिद्धांत है, दैट इज़ कॉल्ड सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटा। सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटा, समान से ही समान की समानता। तो इस जो लॉ है, दिस इज़ द लॉ ऑफ होम्योपैथी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सारा मूव करना है। पेशेंट में क्या डिजीज़ है, हमें उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। इन केस ऑफ होम्योपैथी हम उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बट पेशेंट क्या सिम्टम दे रहा है हमें, हम उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलॉसफी, डिजीज इज नथिंग, इट्स जस्ट अवे फ्रॉम ईज। अवे फ्रॉम ईज
0: मतलब आप अपनी सामान्य अवस्था में नहीं है।
1: अपनी सामान्य अवस्था में नहीं है। सपोज आप अच्छे बैठे हुए थे, बहुत खुश थे, हैप्पी थे, एंजॉय कर रहे थे, और एक मैसेज आया आपके पास में, उसने आपको सैड कर दिया। नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। आप एंटर हो गए डिजीज में।
0: बिल्कुल।
1: है ना, कहाँ से एंटर हुए आप, माइंड से एंटर हो गए। तो अवे फ्रॉम ईज चले गए आप, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज। बस दिस इज साइकोलॉजिकल। होम्योपैथी में अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमें इस बात से मतलब ही नहीं होता कि इसको क्या डिजीज़ है। वो अपनी डिजीज़ बताता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है, हमें सब कुछ देता है, बट हमारा जो अपना मोटो होता है वो ये होता है कि हम उससे सिम्टम्स कलेक्ट करें। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम पे हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। टोटैलिटी ऑफ सिम्टम क्या है, हेड टू फुट। हेड टू फुट हमें सिम्टम कलेक्ट करना है उस पेशेंट से कि उसके बॉडी में किस तरीके के सिम्टम डेवलप हो चुके हैं। एक्यूट डिजीज़ अगर पेशेंट में डेवलप है, एक्यूट केस है कोई, तो एक्यूट सिम्टम्स लेके आएगा। क्रोनिक केस है तो क्रोनिक सिम्टम्स लेके आएगा। तो एक होम्योपैथ, एक अच्छा होम्योपैथ हमेशा सिम्टम्स और ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो मेडिसिन सेलेक्ट होती है उसको कंटिन्यू कराता है पेशेंट को।
0: डॉक्टर साहब, हम इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम का कुछ फॉर्मेट अलग है। हम बातचीत तो करते हैं अपने डॉक्टर साहब के साथ बीमारियों पर और इलाज पर, लेकिन साथ साथ में जो भी डॉक्टर हमारे साथ बैठे होते हैं उनकी पसंद के गीतों को भी सुनते चलते हैं। तो आप बताएं, आपको संगीत में रुचि है?
1: जी हाँ, बिल्कुल रुचि है मेरे संगीत में।
0: हाँ, कब से सुन रहे हैं आप संगीत? कितनी उम्र से आपको संगीत से लगाव शुरू हुआ?
1: 14-15 ईयर्स का था तब से मैं संगीत में इंटरेस्ट है शुरू से, और स्कूल टाइमिंग्स में भी रहा हूँ, सितार में थोड़ी बहुत है।
0: अच्छा, मतलब आप सितार बजाते हैं?
1: बजा लेता हूँ।
0: वाह वाह।
1: सितार, संगीत में रहा है, मेरा इंटरेस्ट काफी रहा है, लेकिन
0: आगे चल के संगीत लोग समझते हैं कि फिल्म संगीत जो है वो, लेकिन आप जिस संगीत की तरफ बात कर रहे हैं वो सितार बजाते भी हैं।
1: बजा लेता हूँ मैं, और स्कूल टाइमिंग से मैंने काफी प्रैक्टिस भी करी हुई है और जुड़ा भी रहा हूँ कई कुछ मतलब म्यूजिशियंस के साथ में, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती गई और प्रोफेशन की तरफ आना पड़ा मुझे अपने, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो हाथ आजमा लेता हूँ।
0: तो म्यूजिशियन के साथ एक वाद्य संगीतकार के रूप में जुड़े रहे या गाते भी रहे?
1: नहीं, गाता तो नहीं रहा, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, जैसे सितार है, वायलिन है, इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहा हूँ मैं।
0: तार वाद्य बजाते रहे?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हारमोनियम वगैरह में भी एक जो मतलब एक म्यूजिक से इंटरेस्ट रहता है, एक धुन से इंटरेस्ट रहा है हमेशा।
0: एक बार जब सरगम आप आत्मसात कर लेते हैं तो आप किसी भी वाद्य पर हाथ तो आजमा ही सकते हैं।
1: हाँ कोशिश करता हूँ, खैर उतनी तो अब निपुणता नहीं रही, लेकिन पहले था मतलब काफी अच्छे से मैंने किया है स्कूल टाइम से। मुझे याद है जब मैं नाइन्थ में था तो सितार की प्रैक्टिस किया करता था।
0: डॉक्टर साहब देखिए, बातचीत में आपके व्यक्तित्व का एक इतना बढ़िया पहलू निकल कर आया है, और चूंकि आप कह रहे हैं कि संगीत में आपकी इतनी रुचि है तो यकीनन गाने भी बहुत अच्छे सुनते होंगे, तो आप बताएं कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को आपकी तरफ से सुनवाएं।
1: जी मेरा एक पसंदीदा गाना है पुकारता चला हूँ मैं,
0: गली गली
1: बाहर की।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत है। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान नवाज खान साहब से। विषय है हमारा जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे तो आपने ये बताया कि आप लक्षणों के आधार पर काफी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलाज से पहले मरीज की जो बीमारी अपने लेकर आया होता है उसके साथ एक काउंसलिंग सेशन होता होगा आपके?
1: बिल्कुल, एक काउंसलिंग सेशन होता है। वही काउंसलिंग सेशन को हम केस स्टडी भी बोल सकते हैं, और विदाउट दैट काउंसलिंग वी नॉट सेलेक्ट मेडिसिन इजीली।
0: तो यानी ये वहाँ पर यदि मरीज आपके पास जाए तो पूरी ईमानदारी से अपनी सारे लक्षण, जितने भी शारीरिक लक्षण हैं, तकलीफें जो भी हैं, वो एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बतानी चाहिए।
1: हाँ, बताना चाहिए। अगर एक अच्छे होम्योपैथ के पास में कोई पेशेंट जा रहा है तो उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अपने लिए भी उसके लिए बेनिफिटेड है और डॉक्टर के लिए भी बेनिफिटेड है, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें क्लियर बताएगा, कुछ हाइड नहीं करेगा, तो डॉक्टर को मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अच्छा, लक्षण भी क्या है, कई प्रकार के रहते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो मानसिक लक्षणों को ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो शारीरिक लक्षण है, मानसिक लक्षण है, तो अगर सारे के सारे मेंटल सिम्टम्स पेशेंट अच्छे देता है अपने, तो दवा सेलेक्ट होने में बहुत आसानी होती है और अच्छा उपचार होता है।
0: यही मैं भी कहना चाह रही थी कि उपचार अच्छा होगा यदि वो अपने लक्षण अच्छे बताएगा, अच्छी तरह से बताएगा, तो उपचार उतनी जल्दी और उतना कारगर होगा।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारा आज का विषय है जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार। ये बीमारी जटिल कब हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। बीमारियां जटिल कब हो जाती हैं?
1: बॉडी अपने आप में एक इम्यून सिस्टम लेके चलती है, बॉडी में अपना एक इम्यूनिटी होती है पूरी, और उस इम्यून सिस्टम में जब तक कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक कोई भी बीमारी जटिल नहीं बन सकती।
0: बिल्कुल।
1: नॉर्मली जब डिजीज़ क्रिएट होती है बॉडी के अंदर तो वो एक्यूट ही होती है, एक लॉन्ग पीरियड तक वो कंटिन्यू बनी रहेगी ड्यू टू लैक और डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम, तो वो फिर कन्वर्ट होने लगती है जटिल बीमारी में, क्रोनिक
0: मतलब
1: केस में कन्वर्ट होती है।
0: जो प्रतिरोधक क्षमता है वो यदि कम होने लगे और बीमारी से लड़ते लड़ते वो आपको बचा नहीं पाए तो धीरे धीरे बीमारी जो है वो जटिल हो जाती
1: है। जटिल हो जाती है। नॉर्मली क्या है, बैक्टीरिया हमारे आसपास घूम रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, वायरस हमारे आसपास घूम रहा है, लेकिन हमको नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वो माइक्रो सूक्ष्म होते हैं वो, है ना। होम्योपैथिक फिलॉसफी अपनी ये कहती है कि पहले आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता डिस्टर्ब हुई है, उसके बाद में ये बैक्टीरिया ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुए हैं।

0: क्यों? क्योंकि अगर जब जब तक आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगी तो कोई हमारी बॉडी में कैसे आ सकता है? पॉसिबल नहीं है उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ जटिल बीमारियों को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे थायराइड है, एक क्रोनिक केस बन गया है, एक ऐसी पॉपुलर डिजीज बन गई है आज की दुनिया में कि लोग उसके लिए मेडिसिन ही खा रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन खा रहे हैं, पर डे मेडिसिन खा रहे हैं.
1: और लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो छूटती नहीं है.
0: हाँ, ये मेडिसिन आपकी नहीं छूटेगी. आप किसी अदर पैसी के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यही कहेगा कि आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: फॉर एग्जाम्पल एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे हैं, इसमें भी आपको डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगी, इसको जिंदगी भर खाना पड़ेगा, इसको बंद नहीं कर सकते. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जटिल बीमारी में हम आजकल ट्यूमर मान लें, कैंसर मान लें, ये भी एक तरीके की बहुत बड़ी बड़ी जटिल बीमारियां हैं. तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनकी भी अपनी स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज में चल रहा है ये.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सब जो बीमारियां हैं ये बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई है, और जब तक प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम बनी हुई है तब तक हमारी बॉडी में कोई डिजीज एंटर नहीं कर सकती. जैसे ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ और रेगुलर डिस्टर्ब होता जा रहा है, ये बीमारियां डेवलप होती जा रही बॉडी में और एक मतलब बड़े तौर पे एक बड़ा शिकंजा कस लेती है. जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब होता है, और बॉडी का जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते चले जाते हैं. तो एक बीमारी के साथ में दूसरी बीमारी पीछे से कनेक्ट है.
1: बिल्कुल.
0: जब कोई पेशेंट जटिल बीमारी से जुड़ा हुआ हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी केस्टिंग करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, और उसके मानसिक और जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनकी टोटैलिटी करते हैं. टोटैलिटी करने के बाद में फिर हम उसको एक जो उसका सिलेक्टेड मेडिसिन होता है वो कंटिन्यू कराते हैं. जब हमने उस मेडिसिन को सिलेक्ट किया तो जो मेडिसिन है वो डिजीज पे काम ना करते हुए वो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम करती है.
1: जी.
0: जो डरेंजमेंट हुआ है बॉडी के अंदर, जो इम्यून सिस्टम को मान सकते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आत्मा है, एक हिंदी में वर्ड यूज कर सकते हैं, वाइटल फोर्स है, एनर्जी जो हमारी बॉडी में जो डिस्टर्ब हुई है, उस डिस्टरबेंस को वो होम्योपैथिक मेडिसिन जाके पूरी तरीके से रिपेयर करेगा. रिपेयर करने के बाद में जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हुआ था वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा. नॉर्मल फॉर्म में आएगा, इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होगा, और वो सारा जितना भी डिजीज़ है, थायराइड है फॉर एग्जांपल, एपिलेप्सी है या ट्यूमर है या जो भी अदर क्रोनिक डिजीजेज हैं, वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे रिपेयर होकर ख़त्म हो जाएंगे. होम्योपैथी में क्रोनिक केसेस के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट से सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ क्रॉनिक बीमारियों के बारे में आपने बात की, उनके इलाज कैसे किया जाता है ये बात की, हम आगे बात करेंगे. यहाँ पर हम गीत का ब्रेक फिर से लेना चाहेंगे.
0: जी.
1: गीत आप बताएं, और हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि गीत जो पर्टिकुलर आप बता रहे हैं, क्या वो किसी वजह से आपको पसंद है या यूँ ही इस तरह के, इस लहजे के गीत पसंद हैं?
0: मैं वर्ड्स जो होते हैं, वर्डिंग्स पे ज़्यादा जाता हूँ. गीत में क्या बोल हैं और उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, मीनिंग क्या निकल के आ रहा है.
1: तो हमारे श्रोताओं को आप भी कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: देखिए, एक गाना है, अजीब दास्तां है ये,
1: कहाँ शुरू कहाँ खत्म.
0: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल.
1: ये मंजिलें हैं कौन सी?
0: बिल्कुल.
1: न वो समझ सके ना हम, दिल अपना और प्रीत.
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ.

0: स्वागत है एक बार फिर इस गीत के बाद कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार, इस विषय पर हमसे बात कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान नवाज खान। श्रोता साथियों, होम्योपैथी के बारे में और किस तरह से जटिल बीमारियों को पहचाना जाता है, यहाँ हमने डॉक्टर साहब से ये बात की। डॉक्टर साहब, जटिल बीमारियों में आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए। बहुत सारे लोग स्किन डिजीज़ से बहुत ज़्यादा समय से परेशान रहते हैं, तमाम तरह के इलाज भी ले लेते हैं। इलाज लेने पर वो बीमारी कुछ दिन के लिए दब जाती है, फिर वापस उभर आती है। आपने बातचीत की शुरुआत में भी बताया था कि जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं लोग तो होम्योपैथी की तरफ आते हैं, तो एक तरह से स्किन डिजीज़ की भी जटिलता लेके लोग पहुँचते हैं।
1: और जी बिल्कुल,
0: अक्सर लोगों के मुंह से ये सुनने में भी आता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले बीमारी उभरेगी और फिर बाद में ख़त्म होगी, क्या ऐसा होता है?
1: देखिए, होम्योपैथी के बारे में लोगों को थोड़ा सा गलत फहमी भी है कि होम्योपैथी पहले बीमारियों को बढ़ाती है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे घटाती है, कम करती है।
0: हाँ।
1: ऐसा लंबे समय तक होता है और इतने में तो मतलब उनको अनकम्फर्टेबल लगेगा और
0: धैर्य
1: खत्म कर जाएंगे, पेशेंस लेस हो सकते हैं। होम्योपैथी के अपने लॉ हैं और होम्योपैथी उस लॉ के अकॉर्डिंग मूव करती है। जब भी कोई डिजीज़ क्योर होगी तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगी। जैसे पेशेंट को कोई सर में प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ सर में है, तो वो अगर बॉडी में अंदर सप्रेस है तो वो धीरे धीरे अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएगी, हेड टू फुट जाएगी और इनवर्ड टू आउटवर्ड आएगी। तो अगर कोई बीमारी सप्रेस है, सपोज एक्जिमा है या कुछ एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, वो सप्रेस हैं अंदर, तो वो कहीं ना कहीं दमे होंगे तो वो बाहर आएंगे मेडिसिन को देने के लिए, नहीं तो वो अंदर डिजीज़ अगर रह गई तो पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाएगी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड रिलीफ। दवा खाई और आराम मिल गया, इट्स नॉट क्योर, इट्स रिलीफ। तो ये पेशेंट को भी समझना पड़ेगा और डॉक्टर को भी समझाना चाहिए कि वहाँ आपको रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्योर मिल रहा है, तो चॉइस आपकी है, क्या पसंद करते हैं आप, मतलब क्योर में जाना चाहते हैं, रिलीफ में जाना चाहते हैं। कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट एक सेकंड में होता है, बट इट विल टेक टाइम टू रिपेयर। 10 दिन में जाके वो रिपेयर होती है, तब जाके वो सही होती है, गाड़ी पूरी तरीके से दुरुस्त होगी। ऐसा ही मतलब होम्योपैथी में तो ये है पूरा। स्किन प्रॉब्लम्स होम्योपैथी में बिल्कुल जड़ से ख़त्म होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ख़त्म नहीं होती हैं।
0: डॉक्टर साहब, आपसे बात करके एक चीज़ समझ में आई कि जो जटिल बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ आप कह रहे हैं, या तो आपने उसे शरीर में बहुत दिनों से पाल रखा है तो वो जटिल हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: एक तो ये स्थिति होती है और एक आप उन्हें भी जटिल बीमारियां कह रहे हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा बहुतायत में देखने में आ रही हैं। आपने थायराइड का नाम लिया।
1: जी बिल्कुल,
0: कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोगों को देखने में आ रही हैं। इसी तरह की बीमारियों में जो ज़्यादा देखने में आ रही हैं, लाइफस्टाइल डिजीजे जिनको हम
1: लाइफस्टाइल डिजीज, बिल्कुल
0: थायराइड तो है ही, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, ये भी उन्हीं श्रेणी में आती हैं। क्या इनका भी इसी तरह का इलाज है जो कि क्योर की श्रेणी में आए?
1: डायबिटीज़ की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कुछ डिजीज़ इनक्योरेबल भी हैं।
0: अच्छा,
1: ये लिमिट्स के बाहर जा चुकी हैं। इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो चुका है। जैसे कैंसर के केसेस हैं, अगर वो फर्स्ट स्टेज में मिल रहे हैं तो हम उनको वहाँ रोक सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते।
0: ओके,
1: सपोज़ कोई पेशेंट आता है कैंसर का, तो हम उस केस को रोक सकते हैं, भाई तुम्हारा कैंसर है, आप इन मेडिसिन को कंटिन्यू करें, आपका कैंसर रुक जाएगा और आप उसके साथ में सर्वाइव कर सकते हैं अगले 10 साल। जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आपकी शुगर बढ़ रही है, ये इनक्योरेबल डिजीज़ में काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी से अपन चाहें कि क्योर मिल जाए तो नॉट पॉसिबल। वहाँ पे इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और वो चीज़ आपको दोबारा रिकवरी देना बड़ा मुश्किल है। लास्ट स्टेज का कैंसर है, डायबिटीज़ है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो चुका होता है और पेशेंट में ये डिजीज़ इनक्योरेबल ही काउंट होती है। अपन सर्वाइव कर सकते हैं मेडिसिन के साथ में, क्योर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन को ले लें, किडनी स्टोन है,
0: बिल्कुल
1: है ना, किडनी स्टोन के केसेस में जो किसी को किडनी स्टोन हो गया तो बात कही भाई किडनी स्टोन हो गया, ओके, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अब तो इसको ऑपरेट कराना है। बट इफ़ अ पेशेंट कैन टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से किडनी का स्टोन ब्रेकआउट होकर निकल सकता है। 60-70% केसेज में ऐसा होता है कि हम सर्जरी से बच जाते हैं। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन, सही मेडिसिन, सही होम्योपैथ के पास जाते हैं और सही दवा का चुनाव करके वो सही दवा देता है, तो सर्जरी से आप बच सकते हो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं हो पाता तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगी।
0: ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कब और किस स्थिति में होम्योपैथी की तरफ जाएं और किस स्थिति में हम एलोपैथी की तरफ जाएं।
1: बिल्कुल।
0: और एक अच्छे डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मरीज को सही दिशा में भेजे। यदि मरीज पूरी तरह से अपने आप को डॉक्टर के हाथों में देगा तभी ऐसा संभव हो पाएगा।
1: जी बिल्कुल, पूरा फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसको सारी चीज़ें क्लियर करना पड़ेगी डॉक्टर के साथ में और फेथ के साथ में मेडिसिन कंटिन्यू करना पड़ेगी तो उसको।
0: वरना हमने बहुत सारे मरीजों को देखा है, डॉक्टर को तो कुछ बताएंगे नहीं, अरे ये डॉक्टर ठीक नहीं है, उसे भी दिखा लेते हैं, सेकंड थॉट, थर्ड थॉट और फोर्थ थॉट तक
1: पेशेंट में स्टेबिलिटी कम होती है, वो क्विक रिलीफ के चक्कर में बहुत कम समय में 8-10 डॉक्टर चेंज कर देता है और जो उतना फेथ होना चाहिए उतना फेथ नहीं करवाता, लेकिन और उसी की वजह से उसको एक लंबे समय तक बीमारी से गुजरना पड़ता है। अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर के ऊपर फेथ करे और कंटिन्यू रहे उसके बाद स्टेबल बना रहे तो मैं नहीं समझता कि बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से अच्छे डॉक्टर कवर कर सकते हैं।
0: मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगी कि पैथी कोई भी फॉलो करें, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी पद्धति हो या होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी फॉलो करें लेकिन अपने डॉक्टर पर पूरा पूरा भरोसा रखें और उसके ऊपर पूरा यकीन करें, वो जैसे कहता है वैसे ज़रूर करें। ठीक उसी तरह हमारे श्रोता एक बार फिर आपसे आपके ऊपर यकीन करते हुए ये जानना चाहते हैं कि उनकी पसंद का कौन सा गीत वो आपके माध्यम से सुनेंगे।
1: ओल्ड सॉन्ग है मेरी पसंद का, लग जा गले, और इस गाने को मैं काफ़ी गुनगुनाता रहता हूँ जब कभी अकेले में होता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाना और हमेशा इसको मैं गुनगुनाता ही रहता हूँ।
0: जैसे कहते हैं कि धीमी बारिश जो होती है वो अंदर तक सीप करती है, वैसे ये गीत भी है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान नवाज खान से। विषय है हमारा जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी उपचार के बारे में अगर हम सोचें, ये देखें, समाज में बहुत सारे लोग हैं, घरों में जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कुछ किताबें रखे रहते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं, वो किताबें पढ़ के लक्षणों के आधार पर कि आप ये वाली दवाई खा लें या वो दवाई खा लें। कोई डिग्री नहीं होती उनके पास। छोटे बच्चों को दांत निकल रहे हैं, कैल्केरिया फॉस दे दो या फाइव फॉस दे दो, इस तरह की चीज़ें घरों में परंपरागत रूप से चली आती हैं। एक होम्योपैथी का डिब्बा बहुत सारे घरों में हुआ करता था, मेरे घर में भी है। तो क्या ये परंपरा फॉलो करनी चाहिए?
1: देखिए, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ना फॉलो करें, बिकॉज लोगों की जो माइंड में एक चीज़ है कि ये बारीक गोलियाँ हैं, सफ़ेद गोलियाँ हैं और इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते

0: टू बी वेरी फ्रैंक होते हैं और बड़े गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं. डिपेंड करता है कि वो हमें नज़र नहीं आते, है ना. क्या होता है कि अब अनक्वालिफाइड किसी भी व्यक्ति के माध्यम से आप कोई ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने चाह रहे हो और उसको पता नहीं है कि इसमें क्या देना है क्या नहीं देना है मेडिसिन. सबसे पहली बात तो उसे होम्योपैथी सिद्धांत ही नहीं पता है कि होम्योपैथी सिंगल रेमेडी पे आधारित है और इस तरह के डॉक्टर्स या जो भी घर में मेडिसिन रखते हैं और दे देते हैं लोगों को चार चार पाँच पाँच दवाइयाँ, तो वो केस को सिवाय पैलिएशन के और कुछ नहीं करती. पैलिएशन का मतलब अपन समझे तो वो बीमारी को दवा देती है और सामने वाला खुश हो जाता है, बीमारी सही हो गई मेरी, जबकि बीमारी सही नहीं हुई है, बीमारी अंदर दब गई है. और उस दबी हुई बीमारी को लेके आने वाले भविष्य में चार पाँच साल बाद पता पड़ता है कि एक और जटिल बीमारी खड़ी हो गई, बड़ी जटिल बीमारी खड़ी हो गई और बाद में इसका दोष किसी और को मिलता है, किसी ने किसने क्या दवाई दी किसको क्या हुआ. लेकिन ऐसे किसी के कहने पे या कोई दवाई दे रहा है आपको या किताब पढ़ के या इस तरीके से दवा ना लें,
1: बिल्कुल जटिलता को आप बढ़ाएंगे ही,
0: जटिलता को आप बढ़ाएंगे और कोई फायदा नहीं होगा. और अननेसेसरली दूसरी कोई कॉम्प्लेक्स डिजीज आपकी बॉडी में डेवलप होगी तो एक अच्छे डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें, समझें उसे अच्छे से, उसको बताएं अपनी पूरी बात और उससे एक अच्छा ट्रीटमेंट लें, तो मैं नहीं समझता आपका विश्वास होम्योपैथी पे और बनेगा.
1: एक छोटा सा सवाल है कि क्या होम्योपैथी में बीमारी से बचने की दवाइयां भी होती हैं? जैसे कहते हैं कि डेंगू का सीजन फैलता है तो पहले से कुछ दवाई है जो खा लें तो डेंगू नहीं होगा या चिकन पॉक्स नहीं होगा, ऐसी कोई दवाइयाँ होम्योपैथी में हैं?
0: देखिए, इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई मेडिसिन हैं, अगर कोई बीमारी बढ़ रही है या कोई प्रकोप है फैल रहा है उस कंडीशन में हम कुछ प्रोफाइलेक्सिस डोजेज होती हैं वो पेशेंट्स को दे सकते हैं जिससे कि वो उस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा. तो ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रोफाइलेक्सिस डोज के रूप में दी जाती हैं होम्योपैथी में. फॉर एग्जांपल हम खसरा ले लें इस तरह की अगर बीमारी है या हैज़ा है अगर फैल रहा है तो उस कंडीशन में हम प्रोफाइलेक्सिस डोजेज अगर उनको दे दें तो वो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा और वो बीमारी के दायरे में नहीं आएगा और वो बच के निकल जाएगा. और इस तरीके से प्रोफाइलेक्सिस डोजेज होती हैं होम्योपैथी और होम्योपैथी इम्यून सिस्टम को हमेशा अपडेट रखती है.
1: जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं उस तरह से हमारे घरों में भी नुस्खे चलते हैं कि खसरा से पहले या चेचक फैल रही है उस समय वेरुलेनम दे दें या बच्चे को चोट लगी है तो आर्निका दे दें. इस तरह की चीज़ें क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम दे सकते हैं मेडिसिन लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही. ऐसे नहीं कि हम बिना भाई समझे और बिना सोचे कोई भी मेडिसिन, आर्निका है तो चोट पे ही काम करेगी और आर्निका है तो बालों पे ही काम करेगी और साहब वो बेलेडोना है तो साहब एक्यूट केस में ही काम करेगी. तो ये कुछ 10-15-20-25 दवाइयाँ लोगों ने अच्छे से याद कर रखी हैं और उनके पास उसका डब्बा भी रहता है, मैंने देखा है.
1: मतलब डब्बा यदि बनाए, एक फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपको बनाना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बनाइए, आपके फैमिली हिस्ट्री के आधार पर वो आपको डब्बा जरूर बना के देंगे.
0: हाँ, डब्बा बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसल्ट लियो डॉक्टर
1: जी,
0: क्योंकि अननेसेसरली आप 2-4-5 दवाइयाँ साथ में खाओगे और पॉल्यूशन करोगे और अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम और डिस्टर्ब करेंगे तो फायदे के साथ में आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि डॉक्टर कंसल्ट करें, उसके बाद मेडिसिन लें, आपको आराम मिलेगा.
1: ज्यादातर लोग होम्योपैथी दवाइयाँ इसलिए नहीं खाना चाहते कि इसके साथ बहुत सारे परहेज हो जाएंगे. कुछ परहेज होते हैं क्या?
0: देखिए, बिल्कुल होते हैं परहेज. होम्योपैथी जो फिलॉसफी है वो उसके अंदर पूरा एक डाइट एंड रेजिमेन का चैप्टर है पूरा, और डिपेंड करता है कि वो पेशेंट जो आ रहा है किस डिजीज से सफ़र होके आ रहा है. तो ऐसी चीज़ों को होम्योपैथी में मेडिसिन जब दी जाती हैं तो उनको बंद कराया जाता है जिससे कि उसकी डिजीज़ आगे बढ़े नहीं. तो परहेज है, ज़रूरी है, अगर किसी चीज़ को खाने से तकलीफ बढ़ रही है तो उसको वहाँ पे स्टॉप करा देंगे. ट्रीटमेंट जब जिस पीरियड में ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो रहा है उतने पीरियड में वो चीज़ वो ना खाए जिससे उसको एग्रवेशन हो रहा है, उसकी बीमारी बढ़ रही है. और होम्योपैथिक मेडिसिंस को हम एक तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन भी कह सकते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो होम्योपैथिक एनर्जी है वो. व्हाट इज, उसमें मटेरियल डोज नहीं होता. ज़्यादातर होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन लिखा होता है, जबकि वो एक मेडिसिन कह सकते हो आप, बट इट्स एनर्जी, एक एनर्जी है वो. और एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है, है ना. तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कई बार कहा जाता है कि आप जब दवा लें तो आप कुल्ला करें, जीभ साफ करें, अच्छे से क्लीन करके लें, है ना, नहीं तो आपको जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इसकी वर्किंग पावर है वो वीक हो जाएगी, उतने इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना। जो होम्योपैथिक मेडिसिन आप जहाँ रख रहे हो वहाँ पे कोई परफ्यूम नहीं होना चाहिए, पूजा का सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो खुशबू है उससे भी इफेक्ट पड़ता है होम्योपैथिक मेडिसिन।
1: अच्छा।
0: उतने इफेक्ट्स नहीं, उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये पार्ट है, डाइट एंड रेजिमेन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और दवा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे खाना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में, और जैसा डॉक्टर आपको बताए उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना चाहिए।
1: चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, और कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले भी हम एक गीत आपसे सुनना चाहेंगे।
0: देखिए,
1: इस बार हम आपका अनुरोध अस्वीकार कर देंगे कि हम आपसे गाना ना सुने, बल्कि आप थोड़ा सा गुनगुनाइए, क्योंकि पिछले गीत में आपने बोला था कि आप अक्सर गुनगुनाते हैं वो वाला गीत, तो अब जो गीत आप बताइए हमारे श्रोताओं को वो गुनगुना कर बताइए।
0: देखिए, एक सैड सॉन्ग गुनगुनाता हूँ, मुझे पसंद है वैसे। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बहार आने से पहले

0: इस खूबसूरत गीत के बाद श्रोताओं, हम अपने डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा करेंगे। डॉक्टर रिजवान नवाज़ ख़ान साहब, आपने हमें जटिल बीमारियां और होम्योपैथी उपचार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और होम्योपैथी से हमें रूबरू कराया कि किस तरह ये काम करती है और हमें कितना सेंसिटिव होना पड़ेगा इस पैथी के लिए। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत की बात तरहना के साथ। इस कार्यक्रम में अभी हम आपको सुनवा रहे थे जटिल बीमारियां और होम्योपैथी इलाज, इस विषय पर डॉक्टर रिजवान नवाज खान से तुलिका शर्मा की बातचीत। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।

0: लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ लीजिए सुनिए निधि मोहन और जुबिन नौटियाल की आवाजों में फिल्म बादशाहों का ये गीत। गीत मनोज मंतुषी का है और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कन्वर्ट होने को है। अगला कार्यक्रम भोपाल से होगा,
1: कृपया प्रतीक्षा कीजिए। इस घंटे की खास खबरें,
2: संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहली बार है जब भारतीय निजी कंपनी द्वारा देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ का गठन किया है। पहले चरण में प्रदेश के 341 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए 21 से 23 जुलाई तक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित होंगी। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति हुई है। जेल मुख्यालय ने 40 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सहायक जेल अधीक्षकों को अब उप जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। और पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब पीवी सिंधु जापान ओपन के महिला सिंगल्स खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने।
3: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। श्रोताओं आज हम जो बोएंगे वही कल हमारी आने वाली पीढ़ी काटेगी। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी एक सीख ऐसी वैल्यू है जो हम उन्हें विरासत में देना भूल रहे हैं या देना चाहते हैं? वो कौन सा ऐसा सबक है जो उन्हें जिंदगी की धूप छाँव में आगे बढ़ाना हम सिखाएंगे? क्या वो सब्र है, मेहनत है या दूसरों का सम्मान? तो आज फोन इन प्रोग्राम में होगी बात इसी बात पर। तो फोन उठाइए, नंबर लगाइए। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो बताइए अपनी राय अपने हिसाब से कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं।
4: जी नमस्ते।
3: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी मैडम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, आदिवासी बहुल क्षेत्र उमरिया मध्य प्रदेश से।
3: संतोष जी कैसे हैं आप?
4: मैम बहुत अच्छे हैं। लगातार प्रसार भारती की वेब पर AIRF के माध्यम से OTTP और साथ में DTH के माध्यम से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण सेवा में इन सभी कार्यक्रमों का आनंद लेते, जिसके नाम है बात आपकी गीत हमारी। फोन करें, गीत सुने और वतन कराग जैसे कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। मैडम
3: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हैं, हमसे जुड़े हुए हैं सभी माध्यमों से। और आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत आभार। विषय बताइए ताकि विषय से संबंधित बात कर पाएं इस कार्यक्रम।
3: जी संतोष जी, हम अपने बच्चों को बहुत सारी सुख सुविधाएं तो दे देते हैं, लेकिन वो कौन सी एक ऐसी सीख है जो हम उन्हें विरासत में देना चाहते हैं? क्या इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
4: बिल्कुल, विरासत में अगर कुछ चीजें मिलने वाली होती है तो माता पिता का स्नेह प्यार और नाना नानी का, दादी दादी का, दादी दादों का जो संस्कार होता है वो सब सबसे प्रथम आता है। बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जो विनम्रता का सीख भी पढ़ाए और बड़ों का आदर भी करना सिखलाए। बच्चों में अच्छी आदतें हमारे संस्कारों में ही आता है, इसलिए बच्चों को इसने प्रेम पूर्वक

0: अगर समझाई दी जाए तो बच्चे आगे चलकर आपका सम्मान भी कर पाएंगे और दूसरों को भी मान रख पाएंगे।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम संस्कार तो दे देते हैं लेकिन उन संस्कारों के तले कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे दब जाते हैं। जैसे संस्कार में कई बार वो अपनी बात भी कहना भूल जाते हैं या नहीं कह पाते हैं कि कहीं मम्मी पापा को बुरा ना लग जाए। हो सकता है कभी वो बच्चा किसी परेशानी में हो लेकिन इसी डर के कारण कि या उन्हें बुरा ना लगे, वो मुझसे गुस्सा ना हो, नाराज ना हो और वो बताना ना चाहे।
0: जी, जी मैम। मैडम ये होता है जैसे एकल परिवार हो गए, खास करके जब मम्मी पापा होते हैं अपने कामों के लिए जब मतलब ऑफिस जाते हैं तो बच्चा अकेला सहमा हुआ घर में बैठा रह जाता है। लेकिन यदि अगर संयुक्त परिवार होता है, जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए और बड़े छोटे भाई बहन हो गए साथ में, तो उनसे अपनी बात वो रख पाते हैं। ऐसे में चाहिए कि घर में अच्छे से घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास बच्चों को मोटिवेशन मतलब उनके पास रहना चाहिए ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह सकें। और बच्चे तो इतने प्यारे मासूम होते हैं जो अपनी बातें स्वयं रख पाते हैं। आज की डेट में अगर बच्चों को देखा जाए तो अपनी बातें खुद अपने टीचर से भी बताते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। ऐसे में बच्चों को सीख जरूर दें ताकि वो अपनी बातें खुलकर कह पाए।
1: जी, संस्कारों के साथ ये सीख भी देना जरूरी है कि अपने मन की बात आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं।
0: जी बिल्कुल मैम, और यही मोटो है आज के विषय का। बहुत ही प्यारा सा विषय आपने आज के इस कार्यक्रम में रखा है और आपकी बातें जो है बहुत ही सार्थक और समर्थ है और इसमें हम भी अपनी सहभागिता कर पाते हैं। बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम होता है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम। पूरी टीम को हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद रहेगा।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सराहना करने के लिए। धन्यवाद संतोष जी, नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल, ग्राम सिरसा से।
0: सचिन जी, सिरसा से, कैसे हैं आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसे हैं? आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी सभी बहुत बढ़िया हैं। सचिन जी, आज हमारा विषय है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं?
1: मैम हम तो अपने आने वाली पीढ़ी को वो वाली सीख देना चाहते हैं जो कि पुराने जो लोग थे वो अपने देश के लिए बलिदान हो गए, कि कैसे उन्होंने अपना तन मन से देश के लिए रक्षा की और अपने न्यौछावर हो गए देश के लिए
0: जी।
1: तो ऐसी ऐसी चीजें अपने देश के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए।
0: ये तो हो गई देश की बात, कि देश के बारे में हमें उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए क्या क्या किया।
1: हाँ जी।
0: लेकिन आप अपने बच्चे को या अपने आसपास के आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को क्या और ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके?
1: देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी अपनी ईमानदारी से इस देश की रक्षा करें और अपने छोटे बड़ों का आदर करें, अपनी ईमानदारी से रहें देश की।
0: अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि ये जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है, स्ट्रेस ले लेती है छोटी छोटी बातों का, तो इससे आप उन्हें कुछ बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे?
1: देखिए सबसे पहले तो यदि कोई बात को लेकर परेशान है तो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने बड़ों को बताना चाहिए।
0: जी, डिस्कशन बहुत जरूरी है
1: तो उसे अपने घर परिवार में साझा करना चाहिए, का निवारण करना चाहिए, जैसे भी समाधान हो।
0: जी, और उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि उन्हें हमें ये सिखाना होगा कि हारना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि हार कर खड़े होना असली जीत है।
1: जी।
0: जिससे वो अगर अपनी हार को लेके स्ट्रेस में आते हैं तो उससे दूर हों।
1: जी,
0: सचिन जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं रानी तलिये छतरपुर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ जी।
0: रशीद जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम सही है मैम, आप लोगों का आशीर्वाद एकदम सही करना।
0: आशीर्वाद हमारा नहीं, ईश्वर का है जो हम सभी पे अपनी इनायत बरकरार रखे हुए है
1: जी। सब ईश्वर की कृपा सबके साथ होना चाहिए
0: जी। रशीद जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमारा विषय ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: संदेश हमारा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये है, पहले तो अपन ये संकल्प दिलवाते हैं लोगों को कि IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, ये बनेंगे। सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए हम एक अच्छे इंसान बनेंगे।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है।
1: फिर इसके बाद डिसिप्लिन, माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, मतलब जिसको अपन एक शब्द में कहें कि अच्छे संस्कार
0: जी,
1: वो अपन देना चाहते हैं नई पीढ़ी को, संस्कारित करना चाहते हैं
0: जी। बहुत अच्छी बात है।
1: आगे चल के बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है।
0: ये तो हमने संस्कारों की बात कर ली, इसमें मेन मुद्दा हमारा संस्कार ही है
1: जी।
0: ना, इन संस्कार ये है कि अच्छे इंसान बने वो, उनमें हिम्मत रहे, उम्मीद की किरण भी उनके अंदर होनी चाहिए, खुद पर विश्वास सबसे ज्यादा होना चाहिए कि वो अच्छा कुछ कर सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये मतलब तीन चार गुण जो है, मतलब एक अनुशासन है, ईमानदारी है, आज्ञाकारिता है, ना मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसी तो स्लो धीमे धीमे चले लेकिन प्रयास करते रहे। अगर अपन उदाहरण दें, कछुए और खरगोश की कहानी सारे लोगों ने सुनी है
0: जी,
1: भले ही अपन धीरे चलेंगे लेकिन जीत धीरे चलने वाली और नियमित चलने वाली की होती, लगातार प्रयास करते रहें तो विजय मतलब मिलती है फिर
0: जी। इसका संबंध सीधे बच्चों की पढ़ाई से है रशीद जी,
1: फॉलो करते रहें बच्चे। एक बार हम कहते हैं कि मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है मैम,
0: मेहनत जरूरी है, उसके
1: प्रयास करना ही पड़ेंगे, मेहनत करना ही पड़ेगी
0: जी।
1: यही हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी अपने मेहनत करती रहे और अपनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहे तो ईश्वर अच्छा करेगा।
0: बिल्कुल, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत
1: हैं। पेरेंट्स उसमें मतलब थोड़ा सा वर्कलोड दे देते हैं कि इतने परसेंट चाहिए हमें, कि 99 तो घड़ी वरना छड़ी, ये नहीं होना चाहिए।
0: ये नहीं होना चाहिए, परसेंट के पीछे मत भागिए।
1: सिर्फ पढ़ाई का वो अपने मतलब वैल्यूएशन थोड़ी है अपना, अपने पूरी लाइफ का वैल्यूएशन कर रहा डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट है, डिग्री है, वो एक शिक्षा संस्थानों के प्रमाण पत्र भर है। लाइफ बहुत बड़ी चीज है और लाइफ में बहुत से उद्देश्य है, डिग्री लेना उद्देश्य नहीं है मैम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वानों को देखा जाए उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो काम करके दिए जो बड़े बड़े डिग्री वाले नहीं कर पाए,
0: क्योंकि उनका उद्देश्य सफल होना नहीं, वो संतुष्ट थे। तो हमें भी बच्चों को यही सिखाना होगा, सफल होना है लेकिन सिर्फ सफल होना नहीं सिखाना है, एक अच्छा और संतुष्ट इंसान बनना भी हमें उन्हें सिखाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो संतुष्ट होना तो सबसे बड़ी चीज है, संतोष सबसे बड़ा धन है। इस तरह से अगर बच्चे काम करेंगे नई पीढ़ी, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

0: मिलती है, बहुत से उदाहरण अपने सामने हैं। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, धीरज रखना है, संयम रखना है और अपने ईमानदारी के साथ अपने आगे बढ़ते जाना है। माता पिता गुरुजनों का सम्मान अपन को अवश्य करना, उसी से अपनी राह अपनी आगे आसान होती जाएगी।
1: बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही आपने रशीद जी। सभी श्रोता सुन रहे होंगे और वो भी यही कहना चाहेंगे कि हाँ, हमें बड़ों के सम्मान के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है, सफल जीवन जीना है संतुष्टि के साथ।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे मैं जो मिला उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो अपन चाह रहे हैं वो खोजने के चक्कर में जो अपने पास है उसका भी अपन आनंद नहीं ले पाते
1: जी। उसे गंवाना नहीं है, संजो कर रखना है, साथ लेकर चलना है जो हमारे पास है।
0: बिल्कुल, जो अपने पास है उसी को स्वीकार करें। ये हम नहीं कह रहे कि बड़े स्वप्न ना देखें, बड़े स्वप्न देखना भी जरूरी है
1: जी। स्वप्न देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे हम,
0: लेकिन स्वप्नों की अंधी दौड़ में अपन इतने ना खो जाएं कि जो अपने पास है उसको भी अपन भूल जाएं। जो ईश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करें और उसी को मैं अपने संतुष्ट हो गए, एंजॉय करें और आगे के लिए अपन कोशिश करते रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा
0: जी।
1: धन्यवाद आपका।
0: ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।

0: हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं दमोह से बोल रहा हूँ, किशन घी वाला।
0: किशन जी?
1: कौन बोल रही हैं?
0: जी, मैं आकांक्षा बोल रही हूँ। कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: किशन जी, आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं।
1: जी, युवा पीढ़ी के लिए ये है मेरा संदेश कि आप ईमानदारी के साथ सत्य बोलते हुए ही कार्य करते जाइए। अगर हम कहीं पर भी बनावटी बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो उसको फिर संभालने के लिए हमें और भी अधिक बोलने पड़ते हैं झूठ। इसलिए जो जिससे भी बात हो रही

0: होती है उसको सत्य करें, सच्ची बात को याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वो मालूम है जो चीज है वो सत्य सत्य ही रहती है। एक और अपने काम को बड़े लगन से करें, यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो विषय भी आपने लिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से और निष्ठा के साथ पढ़ते जाएं और माता पिता और बड़ों के प्रति पूरा सम्मान रख हमेशा रख। यही मेरा अपने छोटे बेटों के बच्चों को संदेश है।
1: बहुत बड़ी और सही सीख देने की बात आपने कही है किशन जी, क्योंकि बुजुर्गों की दी हुई सीख वो छांव है जो कड़ी धूप में भी हमारे पैर नहीं जलने देती।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही होना चाहिए।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपकी दी हुई सीख सुनने वाले सभी युवा श्रोता, सभी श्रोता मानेंगे, समझेंगे, सराहेंगे। आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किन से हमारी बात हो रही है?
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है दीदी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी, कैसे हैं मनोज जी?
1: बिल्कुल दीदी बढ़िया हैं, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से बढ़िया हैं। आकाशवाणी भोपाल का साथ है बराबर,
0: ये साथ आपका हमेशा बना रहे यही हमारी आकांक्षा है। मनोज जी, आज हमारा बात आपके गीत हमारे में सवाल ये है, आप अपने आने वाली पीढ़ी को, नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को कोई सीख देना चाहते हैं जीवन से जुड़ी?
1: आज का टॉपिक बढ़िया है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको मैं एक ही जनरेशन देता हूं और उनको सिखाता भी हूं कि जो अपनी संस्कृति धरोहर है उनको ना तो भूलें और उनको आत्मा में जो हम बसाए हुए हैं आप भी उनको बसाए रखें, क्योंकि आज की जो नई युवा पीढ़ी है उनको तो पता ही नहीं है कि जो अपनी संस्कृति जो धरोहर है वो होती क्या है, या तो वो किताबों मिलती है मान लो। तो बच्चों को मैं यही शिक्षा देता हूँ कि जो अपनी संस्कृति धरोहर है उनको आप ऐसे ही सजो के रखें।
0: जी, ये तो हो गई धरोहरों की बात कि हाँ हमें अपनी सभ्यता संस्कृति, ये जो हमारी धरोहर है उन्हें बचा के रखना है, लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप क्या सीख देना चाहते हैं?
1: जी बिल्कुल दीदी, अच्छा इंसान अपने हर माता पिता का यही दायित्व होता है कि उनकी अच्छी बढ़िया शिक्षा हो और शिक्षा के साथ साथ उनको ऐसी लाइन पकड़ाई जाए जो अपने पैरों पे आगे चके वो खड़े हो सकें। हर माता पिता की यही लालसा रहती है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें,
0: अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे इंसान बने, और उनमें सब्र होना भी जरूरी है। आप देख रहे हैं आजकल के युवाओं में सब्र नहीं होता।
1: बिल्कुल दीदी, सही बात है, ये बिल्कुल कहें कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर चीज सब्र करना चाहिए, गम अपन जो कहते हैं गांव की भाषा गम खाना चाहिए।
0: जी, असल में आजकल के बच्चे कि जल्दी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही बात,
0: तो उन्हें ये समझना होगा कि जिंदगी के बड़े फैसले और बड़ी सफलताएं वक्त लगता है उनमें।
1: बिल्कुल दीदी,
0: आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। नमस्ते
1: दीदी, आपको भी दिल से धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है?
1: मैडम जी, ग्राम पिपरिया तहसील भिगौन जिला राजस्थान।
0: पिपरिया से जगत सिंह जी, आज है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, इस बारे में आप कुछ कहेंगे?
1: जी, अगली बारी पीढ़ी में ये है मैडम जी, अच्छी बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी उनको बातें बताओ कि अपन को ये करना है, कि किसी से ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, अच्छी बात सुनो, अच्छी समझो बात, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो।
0: ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि गुस्सा नहीं करना है। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें तो सिखा देते हैं, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना ये बच्चों को हम नहीं बता पाते हैं।
1: जी,
0: है ना, कई बार क्या होता है, उनकी हम सारी इच्छाओं को तो पूरा कर देते हैं, तो उसके कारण मान लीजिए कभी हम उनकी बात पूरी नहीं कर पाते हैं तो उनमें गुस्सा आने लगता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है बच्चों को।
1: जी, क्या पहले ही से सिखाना पड़े थे जब बच्चों को, जब सही रहता है, बाद में नहीं सीख पाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं
0: जी
1: नहीं सीख पाते हैं।
0: जी ये हमें बताना होगा कि छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा नहीं करते हैं।
1: जी,
0: ये बहुत अच्छी और अलग बात आपने हमसे कही। जगत सिंह जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते।

0: परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए अपनी नई पीढ़ी के हुनर को तराशने के लिए अगली कॉल लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी?
1: धन्यवाद महोदया, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरिविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरिविलास जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें आज का हमारा विषय है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं?
1: आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा बने, कर्णधार बने, वो भावी अच्छी शिक्षा मिले उन्हें, देश के प्रति उनके प्रति हमेशा प्रेम बना रहे, देशभक्ति पे बल बल जाए, बोलो यही सिखाना चाहते हैं।
0: ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमें उन्हें अच्छा इंसान बनाना है, देश के बारे में बताना है, लेकिन उनमें भी कई छोटी छोटी सी खामियां आजकल हम देखते हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि बच्चे परसेंटेज की दौड़ में लगे हुए हैं, मुझे इतना परसेंट बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार कहीं कभी कभी उनकी ये सफलता की जो दृष्टि है वो उन्हें कमजोर कर देती है, उनमें स्ट्रेस आ जाता है
1: जी,
0: तो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे आजकल।
1: की लगी हुई है जी, जैसे कि मोबाइल की इंटरनेट की लत भी लगी, उससे भी दूर रखना है उन्हें, ये सीख देना, संस्कार देना है, इस तरह के कई अवगुण आते हैं, उनसे तो दूर रखना है बच्चों को।
0: बहुत बढ़िया, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये जो
1: उन्हें सदमार्ग पे चलना ही सिखाना है, संस्कार देना, बस यही अपना फर्ज है।
0: देखिए, टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छे से वो कर लेते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें उन्हें ये सिखाना होगा कि स्क्रीन टाइम और रियल टाइम में बैलेंस कैसे करना है।
1: बैलेंस करना है, इसलिए जीवन पंग तो बन जाए, फिजिकल एक्टिविटी भी होना जरूरी है, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे जीवन का पंग बन जाएगा।
0: जी बिल्कुल सही,
1: परिवार में संवादहीनता आएगी, परिवार भी नहीं जुड़ पाएंगे वो अच्छी तरह से।
0: और देखिए, ये सीख तो हम ही दे सकते हैं ना अपने बच्चों को
1: जी,
0: है ना, तो ये हमें समय समय पे उन्हें बताते रहना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बाकी तो बच्चे आजकल खुद ही बहुत समझदार हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अगर हमारी आंखों के सामने होती हैं तो हमें कई बार उन्हें रोकना होगा, टोकना होगा और समझाना होगा।
1: जी, वो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में थोड़ी भटकते हैं, उनको भटकने से बचाना होगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छी बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: अलका,
0: अलका जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बोल रही हूँ।
0: अलका जी, आज कार्यक्रम में हमारा विषय है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देना चाहती हैं। कोई ऐसी बात है जो आप चाहेंगी कि आपके बच्चे या आने वाली पीढ़ी वो काम ऐसा करे?
1: वैसे तो आज की जो पीढ़ी है, आने वाली, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, समझदार भी बहुत है।
0: जी
1: बहुत कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, जैसे वो लोग आज की टेक्नोलॉजी और इन सब में बहुत ज्यादा है तेज।
0: जी
1: पर मैं फिर भी अपने, जैसे हम लोगों का एक्सपीरियंस होता है, उससे मैं कुछ बातें चाहती हूँ कि बच्चों में होनी चाहिए।
0: जैसे
1: जैसे बच्चे सबसे पहले तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सही बात आपने ये कही है।
1: हाँ, उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभव हैं, बुक्स हैं, लोगों से सीधे बातचीत कहीं अधिक मूल्यवान है इन चीजों से। जो वो स्क्रीन पर सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, उन्हें ही सिर्फ अपने दोस्त समझते हैं जो भी उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये चाहूंगी कि बच्चे अपने लाइफ स्टाइल के साथ अपने हेल्थ को भी साथ में कनेक्शन करके देखें।
0: उसके लिए क्या चाहती हैं, कैसे करें वो ये मैनेज?
1: हाँ, मैं तो उनको ये बोलूंगी कि बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार है, हर चीज के पीछे लॉजिक लेना चाहते हैं। तो एटलीस्ट वो एक वीक का चैलेंज लें कि एक वीक वो, जैसे हमारे बड़े बोलते हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे वो बोलते हैं, उस लाइफ को जीकर देखें। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, खाने में आप अपने घर का जो स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिकदायक हमारा खाना है वो खाएं, जैसे हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, इन सब को करके सिर्फ एक वीक तक पूरे कॉन्शियस होकर उसको फील करें कि हमारे हेल्थ के ऊपर वो क्या प्रभाव डालता है।
0: क्या बात है।
1: उनको अपने कल्चर, हेरिटेज, अपना ट्रेडिशन, मतलब उसमें प्राउड फील, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारतीय हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी और अच्छी बातें आपने बताई हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना, जब तक हम वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, हमारे सिखाने पे वो सीख नहीं लेते हैं। कई बार बच्चा जितना देखता है उतना सीखता है। तो इसके लिए हम पेरेंट्स को भी ये करना होगा कि आप भी वही करें जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करें।
1: बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी चीज और मैं चाहूंगी कि बच्चे, पेरेंट्स भी, जब आपने बोला है ये सही बात है, बिल्कुल जैसा हम करेंगे बच्चे बिल्कुल मिरर होते हैं, जैसे देखते हैं उसी तरह से फॉलो करते हैं वो
0: जी।
1: एक बच्चे, मतलब हम लोग हम्बल भी रहे, जो हमारी माँ प्रकृति है उसके प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। मतलब आप हवा, पानी, जल, वायु, ये सब कुछ तो आप वहीं से ले रहे हो
0: जी।
1: उसको जिस तरह से, मतलब हमें पूरी तरह से कृतज्ञ, ऐसे हम्बल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए उनके लिए।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे थॉट्स हैं अलका जी आपके, बहुत अच्छे विचार हैं। निश्चित ही आपने अपनी जनरेशन को ये चीज़ें दी हैं, तभी आप ये कह पा रही हैं कि और भी जो बच्चे सुन रहे हैं वो इन चीज़ों पर अमल करें।
1: बिल्कुल जी, कोशिश यही रहती है, बोले बच्चे सीखे हमें देखकर बोलने से ज़्यादा।
0: बहुत अच्छा अलका जी, आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं। उम्मीद करते हैं ऐसी ही अच्छी सीख आप और अपने आस पड़ोस के लोगों में, आस पड़ोस के बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगी। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज के इस फोन इन प्रोग्राम का निचोड़ यही है कि चाहे हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को कितनी भी सीख दें, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी सीख हमें खुद उनके सामने एक मिसाल बनकर देनी होगी। और साथ ही बच्चों को देना होगी उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत का पाठ, और ये भी कि वो खुद पर विश्वास करें, सब्र करें और मेहनत करें। एक दिन उन्हें वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे यहीं समाप्त करने की आकांक्षा को दीजिए अनुमति, और आप बने रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम बात आपके गीत, हमारे प्रस्तुत किया था आकांक्षा श्रीवास्तव ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद के सोमवार से शुरू होने वाले

0: एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला कल लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं कोटवा नारायणपुर बालापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। दुबिया नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप और केशव पटेल की। बक्सर बिहार से सरफुरुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी की। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी की। सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एसडी अंसारी, मेहताब अंसारी और आफताब अंसारी और महराज अंसारी की। सुनना पसंद किया है बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ और शाइना शर्मा की। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और उनके परिवार के सदस्य। इंदौर से सपना संगीता रोड से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश,

साक्षी मनन और तानिया की। बरसात फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर ने गीत लिखा।

अगली ख्वाहिश, टावर स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, रफीक खान, अमरनाथ जतन नायक और महेश शुक्ला की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और महसवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। सुनना पसंद किया है विरासत फिल्म का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है, जावेद अख्तर ने गीत लिखा, अनु मलिक की धुन है।

फिल्म विरासत के इस गीत के लिए मिली जुली फरमाइश थी सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि वाघ, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। घंटाघर चौक

खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सम्मति पंचोलिया की। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू की। तो आज कार्यक्रम में बस इतने ही गीत शामिल किए। आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे की तीसरी कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं और वृक वन से निकलकर पैठार गांव पहुंच जाते हैं। उधर अवंती में रानी पिंगला चिंतित हैं। राजपुरोहित देवज्ञ उन्हें ध्यान करके बताते हैं कि राजा भर्तृहरि इस समय दक्षिण दिशा में हैं तथा वो अस्त्र विहीन हैं, उनके पास वाहन भी नहीं है। महामात्य तथा रानी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं कि उनका प्रिय अश्व नीलमणि का क्या हुआ। महामात्य देवज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं तो वे कहते हैं इसे आचार्य नागदत्त के आश्रम में पहुंचा दें। आज हम आचार्य नागदत्त के आश्रम चलेंगे।

0: अवंती से नलवा की ओर जाने वाले एक मार्ग ग्राम्यांचल में बस्ती से कुछ हटकर स्थित है आचार्य नागदत्त का सेवाश्रम, एक सुचर्चित चिकित्सा केंद्र। नागदत्त इसके संचालक हैं। उनके नेतृत्व में त्रिलोचन सहित कई विशेषज्ञ और चिकित्सक इसकी देखभाल करते हैं। अनेक छात्र, शिष्य और सेवक उनके मार्गदर्शन में चिकित्सा और सेवा कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। आश्रम की प्रतिष्ठा कुष्ठ रोग के उपचार के लिए है, लेकिन अन्य रोगों का शमन भी वहां होता है। औषधियों उपचारों के अनुसंधान हेतु कार्यशाला एवं प्रयोगशालाएं हैं। जड़ी बूटियों की कृषि वहां के खेतों में की जाती है। विशाल परिसर में फैले हुए सेवाश्रम में दीनहीन, परित्यक्त और निराश रोगीजन एक परिवार में रहते हुए अपने जीवन का एक नया अध्याय खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। शरीर से अशक्त, गूंगे, बहरे, अंधे लूलों की बुझदी आंखों में आशा की नवल दीप्ति का आश्रय है नागदत्त का यह सेवाश्रम। तभी वहां एक घोड़ा आता है।
1: अरे भैया,
2: अरे अरे अरे अरे, कितना प्यारा है, कितना सुंदर बलून।
0: क्या हुआ, क्या हुआ, कहां से आया, इसका स्वामी कौन है, कितना सुंदर और बलिष्ठ, अवश्य ही कहीं से भटक कर आया है। हटो हटो, हम भी देखें।
3: इस असाधारण अश्व का स्वामी निश्चित ही कोई ऐश्वर्य पुरुष होगा। मित्र, यह आया कहां से? संभवतः रात में किसी ने इस जगह बांध दिया होगा।
4: आहत और क्लांत है,

0: फिर भी चप्पल और जीवन बहुत मूल्यवान प्रतीत होता है। सज्जा भी मणि माणिक और रजत स्वर्ण के उपादानों से की गई है।
1: अरे मित्र, अशु की देह भर में घाव हैं, क्षत बिक्षत घाव भी दो तीन दिन पहले के लगते हैं। मित्र, इन पर मृतिका लेप आवश्यक है बरसाती कीटों और मक्खियों से सुरक्षा के लिए।
0: बिल्कुल।
2: कैसा होगा इनका स्वामी जिसने इसका न तो उपचार किया और न ही इसे छोड़ने के बाद वापस आकर इसकी सुधि ली। लो, ब्रह्मचारी चंद्रसेन आ रहे हैं, संभवतः कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी।
3: अरे, बहुत पीड़ित लगता है, बार बार अपनी टापें उछाल रहा है, जैसे अपनी आर्त विकलता और पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। मुंह से तो कुछ कहेगा भी कैसे, पशु है ना। कोई जाकर आश्रम में सूचित कर दे।
0: क्या लाभ, आश्रम में मनुष्यों के चिकित्सा की व्यवस्था है, पशु चिकित्सा एक अलग अनुशासन है।
1: अरे हमित, हम इसे मक्खियों कीटों के कोप से बचा सकते हैं, व्रणों पर मिट्टी का लेप कर दें और आसपास धुआं कर दें।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
2: सियाता, तब तक इसका स्वामी आ पहुंचे और ज्ञात हो सके कि अश्व कैसे आहत हुआ।
3: आप लोग देखें कि क्या हो सकता है। मैं भेषक त्रिलोचन को सूचना करता हूं। और देखिए, यहां भीड़ ना लगाइए, हटिए यहां से। पशु को विकल होकर अधिक कष्ट होता है। त्रिलोचन संभवतः आचार्य की पर्णकुटी में गए हैं।

0: प्रणाम करता हूं आर्य।
1: सुशांत रहें। अरे त्रिलोचन, आप ही असमय विराजें।
0: उपचार है तो आज कम लोग आए हैं।
1: अच्छा,
0: जो आए भी हैं वह उस अश्व के निकट उत्सुकता से एकत्र हैं जिसे कोई आश्रम के द्वार पर विगत रात्रि बांध गया है।
1: क्या
0: सुना है, दुर्लभ अश्व है और घायल है। चंद्र मुझे उपचार के लिए बुलाने आया था, मैंने सोचा आपको भी बता दूं।
1: अच्छा किया,
0: बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए हैं आज।
1: अस्वाभाविक नहीं है, जानते हो बेशक त्रिलोचन, यहां जो रोगी, दुखी, वृद्ध, वंचित आश्रम के आश्रय में है, वे भी तो हैं मनुष्य ही। महीनों वर्षों से अपने परिवार समाज से कटकर इस एकांत में अपना समय अथवा आयु व्यतीत कर रहे हैं। कीड़ों से बिलबिलाते गली कुष्ठ का रोगी भी मरना नहीं चाहता। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एक अदृश्य विवशता है, घटना विहीन एक रास्ता, खूब तो होती ही है, सब में कुछ नया पाने, नया करने की इच्छा होती है।
0: जी,
1: जीवन में रंजन का भी स्थान है। मुझे लगता है कि धर्मचर्या के साथ आश्रम में मनोरंजन का भी अवसर जुटाना चाहिए कुछ।
0: आर्य, सूचना थी कि मुनि अनंत सागर से सेवा आश्रम में पधारने वाले।
1: उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, संभवतः कहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कहीं रुक गए हो। तुम्हें तो यह ज्ञात ही है कि सेवा आश्रम के प्रेरक वही हैं।
0: क्षमा करें आर्य, जैन मुनि प्रायः चातुर्मास में संचरण नहीं करते।
1: वो रूढ़िवादी मुनि नहीं है भद्र, उन्हें परोपकारवादी कह सकते हैं। वो सेवा को तपश्चर्या मानते हैं। मिलोगे तो जान जाओगे। और हां, तुम भी अश्व को जाकर देख लो, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं वहां। तुम गए नहीं वत्स त्रिलोचन?
0: आपके साथ ही चलूंगा।
1: अच्छा,
0: जिज्ञासाओं को लेकर बैठे रहने की दृष्टता कर गया। आर्य, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि आप कौन हैं, कहां से हैं, इस आश्रम की स्थापना कैसे हुई। एक रहस्य जैसा है यह आश्रम और इसका संचालन।
1: वत्स, रहस्य कुछ भी नहीं है, जो है वो सामने है, खुला हुआ, ताक झांक की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी देख सकता है।
0: आचार्य, मैंने जीवन में बहुत ऐश्वर्य देखा है, खूब सुविधाएं भोगी हैं, उकताने की सीमा तक, कदाचित उन्हीं के फलित का सामना कर रहा हूं।

0: और आज निपट अकेला हूं, निपट अकेला। मां मां भागिनी, पिछड़े हुए 10 वर्ष बीत गए।
1: मनुष्य दुखों के बीच ही अपने सुख का संचार रचता है। ये इच्छा ही दुख से लड़ने और उसे पराजित करने का संकल्प जगाती है। सुख की यही खोज उसे अपने दुख को कम करने, उसे बांट लेने की प्रेरणा देती है। मैं देखता हूं भेषा की त्रिलोचन, तुम्हारा मन आज सुस्थिर नहीं है। चलो मैं भी चलता हूं उस रहस्यमय अश्व को देखने।

0: पर्ण कुटीर से निकलकर त्रिलोचन और नागदत्त आश्रम की उस ओर चल देते हैं जहां अश्व बंधा है।
1: त्रिलोचन, तुमने अभी कहा कि तुम मेरे विषय में कुछ नहीं जानते, तो जान जाओगे। मेरे पास गोपनीय कुछ भी नहीं है, प्रदर्शन योग्य भी नहीं है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म को कर्म। हां, तुम्हारे बारे में जानकर भी मुझे अच्छा लगेगा। एक बात और है वत्स त्रिलोचन, यहां आश्रम में जितने दीनहीन, उपेक्षित, व्यथित हैं, सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा है। कुछ की त्रासदी तो अत्यंत रोचक है।
2: प्रणति महोदय।
1: अरे चंदन राय जी, आप कैसे हैं? आपका रोग कैसा है? चिकित्सा से लाभ तो हो रहा है ना? रोग क्या फिर से उभर आया?
2: वही बात है, देखो ना, मैं इस आश्रम पर भार बनता जा रहा हूं। नागदत्त,
1: निराश ना हो।
2: मुझ जैसे लुंजे बीमार को महाकाल के द्वार से उठा लाए हो तुम नागदत्त। बताओ ना, जिसे परिवार ने मरने के लिए छोड़ दिया, उसका भार तुम सब लोग ढो रहे हो।
1: सब बिसरा दीजिए, भूल जाइए चंदन राय जी। हाँ, ये बताइए, श्वास रोग की कितनी कृपा है आप पर। एक नई औषधि विकसित हुई आश्रम में, सेवन करके बताइएगा कि कितनी प्रभावशाली है।
2: ओहो, तो परीक्षण होगा मुझ पर?
1: जी,
2: उचित है, उचित है। दुष्प्रभाव से मृत्यु भी हो गई तो रोगग्रस्त विकलांग वृद्ध का भार भी तो कम हो जाएगा ना पृथ्वी से।
3: क्या कह रहे हैं चंदन भाई जी?
2: सही कह रहा हूं भाई।
3: ऐसे कैसे हम आपका साथ छोड़ने देंगे? ये सूखे हाथ, जिनके स्पर्श से मिट्टी में प्राणों का संचार हो जाता है, ये आंखें जो वृक्षों और वनस्पतियों में रंग और रस भरती हैं, कान जो ऋतुओं की पदचाप चीनते हैं, आपका होना तो आश्रम के जीवन का होना है। आचार्य श्री कहते हैं कि यहाँ की ऊसर पथरीली जमीन आपके गुण और समर्पण से ही संपन्न हुई।
2: अरे बंधु, मैं अनपढ़ भूमिया, किंतु जब तक पत्नी जीवित रही वह पेट भरती रही, उसकी मृत्यु के पश्चात संतानों ने उपेक्षा की, फिर अनदेखी और अंत में अपमान।
1: त्रिलोचन, हम सबके संसार की कहानियां हमारे आसपास हैं। वो कितना शुभ दिन होगा जब ये स्वस्थ निरोग होकर अपने अपने घर परिवार में लौटेंगे।
4: मैं कभी नहीं लौटूंगा उस नीच मती बांधवों के बीच, स्वार्थी, अमानुष, दुष्ट। हाँ, एक बार मिलूंगा अवश्य उनसे, जाकर यह दिखाने कि यही है वह देह जो कभी यौवनाओं को मोहित करती थी, जिसे मैं इत्र, चंदन, पुष्प की गंध में सराबोर रखता था। वही शरीर पहले अशोभन हुआ और फिर अशुभ, अस्पृश्य। किसे विश्वास होगा कि मैंने अनेक प्रख्यात मल्लों को भूमि सुंघाई? कौन पहचानता है मुझे आज?
3: आप दक्षिणापथ के चालुक्य राज के यशस्वी मल्ल इस दशा में? ओह
1: हाँ, वही है। परंतु तुम इन्हें कैसे जानते हो? बंधु कर्ण कुंडल, अधीर मत होइए, आप निश्चय ही आरोग्य प्राप्त करोगे। और हां, हम सबके साथ इसी आश्रम में रोगियों की सेवा भी करना है आपको।
4: मुझे विश्वास है आर्य, आपकी अनुकंपा से मुझे पुनर्जीवन मिलना ही है।
1: वत्स त्रिलोचन, तुम कर्ण कुंडल को कैसे जानते हो? स्वयं भी क्या दक्षिण पत्र से हो? यद्यपि तुम्हारे आचार्य ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि तुम्हारे अतीत के संबंध में कोई जिज्ञासा न रखी जाए, वंश, गोत्र, ग्राम की कोई पूछताछ न की जाए, पर तुम्हें देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कभी उचित समझो तो बता देना कि कहां से यहां तक पहुंचे हो।
3: बताने जैसा कुछ नहीं है आर्य, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे छुपाकर रखना हो। हां, आपके संबंध में जिज्ञासा इसलिए है कि यह आश्रम आपकी कीर्ति का साकार साक्ष्य है। मुनि अनंत सागर इसकी प्रेरणा है और यहां के सब स्वयं समर्पित होकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
1: त्रिलोचन, वह में तुम मेरे पुत्र से बड़े हो और भ्राता से छोटे, इस प्रकार मेरी पीढ़ी और मेरी अगली पीढ़ी के बीच तुम्हारी उपस्थिति एक संवाद सेतु के जैसी है। अपनी राम कहानी कहते हुए मुझे आंतरिक तृप्ति मिलेगी और कदाचित तुम्हारे सामने एक अनुभव पृष्ठ खुल सकेगा। अरे हाँ, यहां तो समूचा आश्रम ही एकत्र हो गया है, ये क्या हो रहा है?
3: सहज जिज्ञासावश आर्य, अश्व जिन परिस्थितियों में पाया गया है वह रहस्यात्मक है, विशेष रूप से तब जब भटकने के बाद भी उसकी देह पर बहुमूल्य मणिमाणिक किसी ने छुए तक नहीं।
1: आश्चर्य तो है ही।
3: अरे हटिए हटिए, आप लोग पर हटिए। हाँ हटिए, आचार्य श्री अश्व का अवलोकन करने पधारे हैं।
1: अरे ये नीलमणि, ये यहां कैसे आ पहुंचा?
0: अपना नाम सुनकर अश्व हिन हिन आया।
3: आप इसे जानते हैं?
1: मैं ही क्या, पूरी उज्जैनी इसे जानती है। राज्य का रत्न, ये देश देशांतर में ख्यात, महाराज भर्तृहरि का अत्यंत प्रिय, उनका निजी अश्व।
3: किंतु इस अवस्था में कैसे?
1: हे देव, कुछ अमंगल ना घटा हो।
5: आचार्य, इसकी प्रारंभिक शुश्रूषा कर दी है, कीटों और मक्खियों से छुटकारा मिल गया है, इसे व्रणों पर मिट्टी चढ़ा दी है, चैन मिल गया है, अब ये उतना विकल नहीं है। आर्य त्रिलोचन इसे संभाल लेंगे।
1: त्रिलोचन ही क्यों, जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इसकी परिचर्या का दायित्व तुम पर रहेगा चंद्रसेन।
5: जैसी आज्ञा।
1: इसे यहां से हटाकर मेरी पर्णकुटी तक पहुंचा दो।
5: जी जी,
1: वहीं रहेगा ये पूर्ण स्वस्थ होने तक, और तब तुम इसे अवंती ले जाकर महामात्य को सौंप देना।
5: अवश्य आचार्य श्री।
1: मैं पत्र दूंगा तुम्हें महामात्य तक पहुंचाने के लिए। मुझे जानते हैं वे, पता नहीं क्यों महाराज की कुशलता जानने के लिए मन व्यग्र हो रहा है।
5: आचार्य,
1: इस अश्व ने शंकाएं को शंकाएं उत्पन्न कर दी है। हाँ, तुम्हें एक पत्र और भी दूंगा, वसुंधरा के लिए।
5: वसुंधरा कौन देव?
1: चंद्रसेन अश्व को ले जाओ। आप सब यहां से जाएं, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने काम पर जाएं। अश्व का प्रकरण समाप्त हुआ, चलो त्रिलोचन।
3: नीलमणि की दशा आपको विचलित कर गई है आर्य?
1: अन्य संदर्भ भी है त्रिलोचन, मैं उज्जैनी में रहा हूं, मुझे इसके प्रति राजा भर्तृहरि का अनुराग भली भांति विदित है। वो एक पल के लिए भी इसे आंख से ओझल नहीं होने देते थे। नीलमणि यहां है तो राजा भर्तृहरि कहां है? तुम जानते हो कि प्रजा और राज्य की नियति का सूत्रधार नरेश होता है। हाँ। नरेश की अनुपस्थिति संकट के आगमन का संकेत देती है।
3: मैंने उसे देखा है, घाव बताते हैं कि कहीं ना कहीं द्वंद्व हुआ है।

0: किसी शत्रु या दस्यु दल का कार्य हो सकता है, किंतु सारे के सारे घाव शरीर के निचले भाग में ही हैं। मुंह, ग्रीवा, पीठ पर खरोंच तक नहीं है, अतः अश्वरोही भी घायल हुआ होगा।
1: किंतु यहां बांधकर वो चला कहां गया?
0: बांधकर गया है तो लौटेगा भी। इतने हष्ट पुष्ट अश्व को कोई यो ही नहीं छोड़ देता। अरे फिर यह संकेत भी मिलता है कि यह दस्युजनों का कृत्य नहीं है, क्योंकि अश्व की संपदा यथावत है, शत्रु का भी नहीं, क्योंकि वह जीवित है और अपहृत भी नहीं हुआ। जो भी हो, अश्वरोही घायल तो हुआ होगा, किंतु जीवित अवश्य है, जो आश्रम की सुरक्षा में इसे छोड़ गया।
1: तर्कता तुम्हारे अनुमान विवेक सम्मत है त्रिलोचन। आओ कुछ पल यहां बैठे। यहां शीत मंद संचरण है वायु का, थोड़ी शांति मिलेगी, विचार स्थिर होंगे।
0: देव, जब भी अवंती और राजा भरतहरि का विषय आता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपका स्वर करुणा से भर उठता है। कोई गहरा नाता है आपका इनसे, लेकिन शीघ्र ही आप सहज होने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि वहां की कुछ स्मृतियां अवसर पाते ही उभरने लगती हैं आपके मानस में?
1: हाँ अवंती, स्मृतियां साथ नहीं छोड़ती, स्मृति के गर्भ से बार बार कौंध कर बाहर आ जाती है। अवंती के एक मध्यवित परिवार में मैंने जन्म लिया था, ठहरा हुआ सा जीवन था, एक रस, लोग जन्म लेते, व्यवसाय में व्यस्त रहते, संतान उत्पन्न करते और मर जाते।
0: जी देव,
1: वंश की तीन पीढ़ियां मैंने जन्म मृत्यु के इसी क्रम में बीतते देखी।
0: जी,
1: धार्मिक वातावरण था परिवार का, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, महादेव, सभी का क्रमबद्ध पूजन अर्चन, इस याचना इस अभीप्सा के साथ की धरती पर प्रचुर धन प्राप्त हो
0: जी,
1: और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग। पिता बार बार दोहराते थे, तनात धर्म तत सुखम, जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन, पंडित, गुणी, वक्ता, प्रभावशाली और दर्शनीय होता है।
0: सत्य है।
1: मैंने देखा कि पिता ही नहीं, धन को माया समझकर उसकी भर्त्सना करने वाले, त्याग का उपदेश देने वाले संत, उपदेशक, पौराणिक आचार, सब के सब धन के पीछे भाग रहे हैं।
0: जी,
1: धर्म भी धन से ही संभव है, ये जानकर मैं पूरी शक्ति से धन अर्जन में जुट गया। विपणक से सार्थक और फिर सार्थक पति, सामुद्रिक, अंतरराष्ट्रीय, सब ओर व्यापार फैलता गया
0: जी।
1: अनुचर, परिचर, रक्षक, भृत्य, दास, दासियां, वैभव का विस्तार हो रहा था
0: जी देव।
1: इस आपाधापी में मैं महीनों विदेश रहता प्रवास पर। पहले मैं सफल था, अब मैं विशिष्ट हो गया था। महीनों बाद अवंती लौटता तो जन समूह पथ पर पलक पावड़े बिछा देते, विरुद्ध गा रहे चारणों की भीड़ लग जाती, भिक्षुक याचना में खड़े रहकर सुख वैभव की आशीषें उछालती, वारांगनाएं प्रतीक्षातुर दृष्टि से मेरी भंगिमाओं को क्षुधित भाव से निरखती। ये सब सफलता का, विशिष्टता का ताम झाम था, मैंने ये सुख देखा है
0: जी।
1: और एक दिन 11 वर्ष पहले, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन, मैं विपुल धन और वैभव के साथ देशांतरों से लौटकर अवंती पहुंचा था। मेरी अगवानी के लिए सदा नगर द्वार पर मेरी पत्नी मुझे मिला करती थी
0: जी।
1: उस दिन मैं उसे और अपने पुत्र को खोज रहा था, दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
0: फिर क्या हुआ देव?
1: मैं दुश्चिंताओं से घिर गया। तभी मेरा ध्यान एक जनसमूह की ओर गया, जहां बीच में अधपके बालों, चीकट कपड़ों वाला एक उन्मादी सा व्यक्ति लोगों की तालियों के साथ नाच रहा था। उसके कंसुरे गायन पर बाल वृद्ध नर नारी हंसते हुए तालियां बजा रहे थे।

0: त्रिलोचन, जानते हो वो व्यक्ति कौन था?
1: कौन था महोदय?
0: महाश्रेष्ठ ऋतुपर्ण, महाराज गर्भभिल के समय का धन कुबेर, जिसे कभी अपने ही धन का अनुमान नहीं था। मैं स्वयं भी कभी ऋतुपर्ण बनने का सपना देख रहा था। बंधु, धन बहुत अस्थिर होता है, सफलता अस्थाई होती है। मेरा आदर्श, मेरा स्वप्न सामने खड़ा था, विवर्ण विक्षिप्त पितृप ऋतुपर्ण। घर पहुंचा तो पत्नी वसुंधरा मिली, अनुचरी चेटियों से घिरी, मौन यांत्रिक स्वागत किया उसने मेरा, बिना किसी आवेग या उत्तेजना के। पुत्र वहां कहीं नहीं मिला, बताया गया कि अपने मित्रों के साथ बिहार के लिए कहीं चला गया।

0: नागदत्त के मानस पटल पर वह दृश्य सजीव हो उठता है जब उसकी पत्नी वसुंधरा ने उसे त्रास दिया था।
1: वत्स, अनुभव का एक बिल्कुल नया संस्करण तुमने सुना
2: जी।
1: कास्ट पुतलिकाओं का एक विशाल संग्रहालय जहां प्रत्येक गति, हर एक भंगिमा यंत्रचालित है। भावना शून्य अस्तित्व जाने क्या क्या सोचता रहा, खींचता रहा, कभी कभी हंस भी लेता। 11 वर्षों से यही कर रहा हूं मैं। पीड़ा को उस विस्मृत की खूंटी पर टांगे हुए मुनि श्री अनंत सागर के सामने ये सब कह देना चाहता था, पर अवसर ही नहीं मिला।
3: बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है आचार्य।
1: हाँ,
3: प्रतीत होता है कि वृष्टि अभी तीव्र हो जाएगी। चलें?
1: अवश्य चलना ही होगा। और चंद्रसेन से कहना होगा कि नीलमणि के घावों पर पानी न पड़े। मेरी चिंता उचित है ना? वैसे चिकित्सा तुम

0: अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक विनय।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पहली बार है कि जब भारतीय निजी कंपनी द्वारा देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट में इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया ऐतिहासिक अध्याय बताया। प्रदेश सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी विदेश यात्रा, महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी, वीआईपी स्वागत समारोह, हवाई यात्रा, होटलों में होने वाली बैठकों सहित कार्यशालाओं पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही व्हीकल पूलिंग नीति भी अनिवार्य की गई है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक

जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उसे दूर हो जाइए, लेकिन खुद को हमेशा खुश रखिए। इसी सुविचार के साथ हाजिर हूं मैं कल्पना मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो स्वीकारिए हमारा प्यार भरा अभिवादन। नमस्कार बहनों, समय समय पर सरकार महिलाओं के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर हमेशा से ही प्रकाश डालती रही है, जिसके लिए कई तरह के अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं। तो महिलाओं को इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के छोटे छोटे प्रयास करते रहे हैं। और आज हम बात करेंगे शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के बारे में। तो यह फेलोशिप भारत में महिलाओं के मुद्दों पर शोध करने वाले उभरते हुए विद्वानों को सहयोग देने के उद्देश्य से बनाया गया ये 6 महीने का कार्यक्रम है। बहनों, इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, इसके अलावा लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, साइबर सुरक्षा, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, महिलाओं का नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, श्रम भागीदारी, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं और कार्य जीवन संतुलन जैसे विषयों पर शोध करना है। इस फेलोशिप में पात्रता पाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कम ग्रेजुएशन की डिग्री पा चुके 21 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक इस पद के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उच्च अनुसंधान योग्यता प्राप्त कर रहे या पहले से ही योग्यता प्राप्त कर चुके उम्मीदवारों या मजबूत अनुसंधान अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और बहनों, इस फेलोशिप के तहत 1,00,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है वो भी हम जान लेते हैं। तो आवेदकों का मूल्यांकन एक विशेष समिति द्वारा किया जाता है और जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं उनका चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है। बहनों, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। और राष्ट्रीय आयोग ने सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील भी की है। तो बहनों, बातें और भी होंगी, इससे पहले आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर इस गीत के साथ। फिल्म है मेरे सनम और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: अभी हमने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मेरे सनम फिल्म का गीत सुना। बहनों, आज है हमारे बीच मंजुला मिश्रा, जिन्होंने कई वर्षों तक रेडियो में लोकगीतों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। आज उन्हीं से बघेली लोकगीतों के महत्व और बारिश के मौसम में गाए जाने वाले लोकगीतों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: आपका हमारे कार्यक्रम महिला सभा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार
1: मैडम। हमारे बघेलखंड की परंपरा है कि कोई भी जैसे शुभ काम होते हैं उसमें जब तक बघेली लोकगीत

0: ना गाए जाएं तब तक ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अधूरे से लगते हैं।
1: सही बात।
0: तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहें?
1: कितना भी बाहर के मतलब वो हो, कुछ भी लगाओ, लेकिन जब तक अपने पारंपरिक गीत, चाहे शादी हो चाहे किसी भी मौसम में हो, अपने जो पारंपरिक गीत होते हैं उनकी एक अलग ही महत्ता है।
0: जी जी जी।
1: और उसको मतलब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
0: जैसे कि वर्षों से लोग गीत गायन होता रहा है ना, बहुत पहले से ये परंपरा हमारे बघेलखंड में चली आ रही है और आज भी उसने समाज में एक अपनी अलग जगह बनाई हुई है, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है?
1: आजकल लोग गीत का अपना एक अलग महत्व है, चाहे बाहर कितना भी ऑर्केस्ट्रा लोग चलाएं वो गले, लेकिन जब तक अपने पारंपरिक लोकगीत होते हैं, और धीरे धीरे लोकगीत का महत्व बढ़ता जा रहा है। लोग अब कई जगह मतलब ऑर्केस्ट्रा में भी लोकगीत चलने लगे हैं।
0: जी जी। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि मतलब लोकगीत आज भी
1: जीवित है और ज्यादा बढ़ रहा है,
0: उनका
1: लोग पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी, ये बड़ी बात है,
1: ये बड़ी बात।
0: जैसे कि मैडम, तीज त्योहार, शादी ब्याह के अलावा भी पारंपरिक गीतों का चलन है ना। अब जैसे ये बरसात का मौसम ले लीजिए, तो बरसात के मौसम में किस तरह के गीत गाए जाते हैं वो आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सुना दीजिए।
1: हर एक मौसम के अनुसार अलग अलग तरह के लोकगीत रहते हैं। जैसे अब बरसात का महीना अब आ रहा है, सावन भादो त्योहार भी मतलब आ रहे हैं, तो सावन में अपने यहाँ हिंदुली, कजली, झूला गीत,
0: जी जी,
1: ये लोग ज़्यादा गाते हैं और पसंद करते हैं।
0: जी जी।
1: इसी संदर्भ में मैं आपको कजरी की चार लाइन
0: जी जी बहुत सुना है। जी जी।
1: हरे राम घिर घिर आई घटाए बरसे।

0: इस बस सबका रे हारी।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा गाया। इसके अलावा आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका।
0: अब मैं आपको हिंदुली, जो इसी मौसम में गाया जाता है, इसकी चार लाइन सुनाती। नन्ही

0: सकी, अब सावन भी आने वाला है तो कोई सावन गीत आप हमारी श्रोताओं को चलते चलते सुना दीजिए।
1: अब मैं आपको इसी संदर्भ में झूला गीत, जो कि इसी मौसम में मतलब लेडीज लोग बहुत गाती हैं।
0: जी जी।

0: तो मंजुला जी, हम आपको थोड़ा और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई एक और गीत हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: वर्षा गीत में हिंदुली सुनाए।
2: जी जी सुनाए।

0: ओ मंजुला जी, आपने हमसे बातें की और इतने खूबसूरत से लोकगीतों को सुनने का हमें मौका मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: बहनों, अब हम बात करेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर, मुखर कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी कादम्बिनी गांगुली के बारे में। तो आपको बता दें कि आज उनका जन्म दिवस है, तो ऐसी शख्सियत को याद करके नतमस्तक होकर हम सब नमन करते हैं। 18 जुलाई 1861 में ब्रिटिश शासन के दौरान भागलपुर में उनका जन्म हुआ था। बहनों, जिस समय केवल पुरुष ही मेडिकल की पढ़ाई करते थे, तब वह 1884 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाली पहली महिला थीं। इन्होंने इतिहास में भी ग्रेजुएशन किया था और ऐसा करने वाली भी वो पहली महिला थीं। बहनों, इनकी उपलब्धियों की बात करें तो ऐसी कई बातें हैं जो इन्हें और भी महान बनाती है। जैसे दक्षिण एशिया में यूरोपीय चिकित्सा में शिक्षा लेने वाली वो पहली महिला डॉक्टर बनी। इतना ही नहीं, राजनीति में भी उनका वर्चस्व बराबर से रहा है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस सत्र के मंच पर आने वाली पहली महिला बनी। कादम्बिनी गांगुली ने मेडिकल की ट्रेनिंग विदेश में ली थी, मतलब 1892 में वह ब्रिटेन गईं और वहां जाकर डबलिन, ग्लासगो और एडिनबर्ग से आगे की ट्रेनिंग ली और वहां से लौटने के बाद उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। कलकत्ता के लेडी डफरिन अस्पताल में आखिर तक काम किया और प्रैक्टिस जारी रखी। इसके बाद 3 अक्टूबर 1923 को उनका निधन हो गया। आज उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो बहनों, अब वक्त भी है एक छोटे से अंतराल का, तो आइए सुनते हैं एक

अभी हमने असली नकली फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। बहनों, बारिश के मौसम में तीखा चटपटा खाने का मन तो सबका करता है, तो ऐसे में बाहर के खाने के बजाय क्यों ना घर पर ही कुछ लजीज बनाया जाए। आज हम लेकर आए हैं सूजी के स्टफ्ड कचौरी। तो चलिए, बनाते कैसे हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले स्टफिंग के लिए एक फ्राई पैन में 2 छोटे चम्मच तेल लेंगे, गरम होने देंगे। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालकर फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसे अच्छी तरह से मैश करके डालेंगे। साथ में मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, अमचूर मसाला, गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से भूनते हुए चलाएंगे। फिर जब भून जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे। इस तरह स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 कप के करीब पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा अजवाइन, 1 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 उबाल आने देंगे। अब डालेंगे हम 1 कप सूजी, लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि गुथे हुए आटे की तरह नरम ना हो जाए। अब इसे एक बर्तन में निकालकर हाथों से अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा जैसा गूथ लेंगे। इसके बाद हाथों में तेल लगाकर आलू की स्टफिंग करके हाथों से ही कचौरी का शेप दे देंगे। याद रखिए, कचौरियों को फ्राई करने के लिए ज्यादा तेज आंच की जरूरत नहीं है। तेल हल्का सा गर्म होने पर ही इन कचौरियों को सुनहरा होने तक फ्राई कर लीजिए। अब इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। ये ऐसा नाश्ता है जो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रखेगा। तो बहनों, आप ये स्वादिष्ट कचौरियां जरूर बनाइए, खाइए और खिलाइए। अब आखिर

0: अभी हमने आरती मुखर्जी का गाया गीत सुना, फिल्म थी गीत गाता चल। तो बहनों, अब वक्त भी हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो दीजिए अनुमति कल्पना मिश्रा को फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और समय है अंतराल का।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233

0: 2833 पर कॉल करें।
1: आपकी अपनी विविध भारती, आपके अपने टीवी सेट पर डायरेक्ट टू होम डीटीएच।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। पहले सुनिए प्रभा द्विवेदी के स्वर में ये रचना।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए राजकुमार तिवारी के स्वर में भजन।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए आकाशवाणी भोपाल से ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, प्रतिदिन शाम 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर रोचक जानकारियों का साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, प्रति सोमवार दोपहर 1:00।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: सुनिए प्रतिदिन आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रतिदिन सुबह 7:20 से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

ये गीत था फिल्म दिल तो पागल है, इस फिल्म से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था उत्तम सिंह का।

ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, फिल्म है लम्हे, आवाज़ है लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है शिव हरि का।

0: इस गीत के साथ ही सुगम फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। आज नई दिल्ली में फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पतखेड़ा में 2,38,00,000 रुपये की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली की सुविधा मिलेगी। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रतिनिधियों को मूल्यांकन मानदंड, गुणवत्ता मानकों और दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार इससे संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रक्रिया यानी नैक के लिए बेहतर तैयारी में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। आज भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों में शामिल शिवपुरी रेलवे स्टेशन का लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से कायाकल्प होने से क्षेत्र के यात्रियों को अब नया और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। बुरहानपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अब उन लोगों तक पहुंच रही है जो बीमारी से अनजान हैं या लक्षणों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून, सुरगांव, निपानी और पिपल्या तहार का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुपालक संगोष्ठी और पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान, नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
3: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
4: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
4: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
5: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत

0: पोल्स हैं, इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
3: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके फरमाइश के लिए ये पहले फरमाइश है हमारे इन साथियों की। इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम।

सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और पंजाब, रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिंग बिरक, मीका बिरक, उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह परिवार, दीक्षा कोश मूड़त। आप सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है किशोर कुमार की आवाज़ और साथियों की आवाज़ में फिल्म राजपूत का ये गीत, जिसके लिए गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ये अगली फरमाइश है बलिया नारायणपुर से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मिति पंचोलिया, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका, रॉबिन राणा। इन सभी श्रोता साथियों ने पसंद किया है हरे रामा हरे कृष्णा इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है आर डी बर्मन का।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है। बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित। बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आजोरिया, आरजू जाजोरिया। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है दो रास्ते इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है फिल्म आंधी से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गीतकार हैं गुलजार, संगीत है आर डी बर्मन का, और इस गीत को सुनना चाहते हैं कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। तो सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर आंधी फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान सारिका, सुरेखा सोनम बोड़खे, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन तानिया, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है बॉबी फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। नई दिल्ली में आज भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के अनुसंधान भवन में विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण देखा। इसके बाद श्री सिंह ने कहा कि यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र के पहले केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यह यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.2 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: और अब आपको बता दें हमारे शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में 9:30 पर चित्र भारती। ये कार्यक्रम होगा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे सुनिए संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में देवव्रत मिश्रा का सितार वादन, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

और 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। ये थी जानकारी आज शाम के सभा के कार्यक्रमों की। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5:00 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच DTH पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। पहले सुनिए प्रभा द्विवेदी के स्वर में हिंडोली।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनिए राजकुमार तिवारी के स्वर में भजन।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं चित्रपट संगीत।

विश्वात्मा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी साधना सरगम की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था विजू शाह का।

खलनायक फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी मनहर उदास अलका याग्निक की, और गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

बाजीगर इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले विनोद राठौर के स्वर में, गीतकार थे जफर गोरखपुरी और संगीत था अनु मलिक का।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित स्तर की ये प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएस के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं अनमोल धरा। इस कार्यक्रम में वार्ता जल संरक्षण। वार्ताकार हैं चांदनी सोनी।

किरणों से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातों से अवगत कराने जा रहे हैं, जिनसे आप आसानी से पानी की बचत कर सकते हैं। इसके लिए खास तौर से हमारी घर में रहने वाली बहनों को विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन घरेलू उपायों का सिलसिला जिनसे आसानी से पानी बचाया जा सकता है। घर में सबसे अधिक पानी बर्तन धोने में ज़ाया होता है। इसके लिए चाहिए कि अपने बर्तन एवं अन्य सामग्रियों को सीधे नल में धोने की बजाय सिंक या बड़े पात्र में कुछ पानी भरकर धोएं। बहनें कोशिश करें कि गीले बर्तनों को तुरंत धो लें, क्योंकि सूखने पर उनमें अधिक पानी की ज़रूरत होगी। या फिर सूखे हुए बर्तनों को कुछ देर पानी में डालकर रखे रहने दें, फिर उन्हें धोएं, तो कम पानी में आपका काम हो जाएगा। अब हम बाथरूम या वॉशरूम में पानी के उपयोग की चर्चा करते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते ही हैं कि नहाने के लिए प्रतिदिन गैलनों पानी घरों से बहा दिया जाता है। इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो पानी बचाया जा सकता है। जैसे बाथरूम में शावर की बजाय बाल्टी या टब में पानी लेकर नीचे बैठकर नहाएं। नहाने जाने के पहले से नल चालू करके नहीं छोड़ें। बड़ी बाल्टी की बजाय छोटी बाल्टी और छोटे मग का उपयोग करें। बाथरूम का नल टपक रहा है तो उसे प्लम्बर बुलवाकर ठीक करा लें। यदि प्रति सेकंड एक बूंद पानी भी नल से टपकता है तो रात भर में एक बड़ी बाल्टी भर जाती है। इसलिए केवल बाथरूम ही नहीं बल्कि घर के सभी नलों को चेक करें और यदि उनमें से पानी गिर रहा है तो तुरंत उन्हें ठीक करा लें। वॉशरूम में छोटा नल लगाएं ताकि कम प्रेशर में हाथ धोने के दौरान कम पानी का उपयोग होगा। इसी तरह सिंक में भी कम प्रेशर वाला नल ही उपयोग करें तो बेहतर होगा। श्रोताओं, बाथरूम में यदि शावर का उपयोग करना ही है तो अपने शावर को चालू रखने के लिए 5 मिनट के अंदर का ही समय दें। इससे आप प्रति माह 1000 गैलन पानी बचा सकते हैं। यदि बाथटब का उपयोग करते हैं तो उसमें पानी की लाइन चालू करने के पहले उसका प्लग लगा लें। ऐसे ही अन्य उपयोगों के दौरान भी पहले नल चालू करके ना छोड़ें, बल्कि उपयोग के दौरान ही नल चालू करें और जैसे ही उपयोग पूरा होता है तो उसे बंद कर दें। इस तरह से पानी बचाने में आपकी ये अच्छी आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अब हम श्रोताओं, पीने के पानी की बात करते हैं। देखिए, कहा गया है, जल है तो जीवन है। कहीं तो खूब पानी है तो बेवजह बहाया जाता है, जबकि कई शहरों या बस्तियां ऐसी भी हैं जहां पीने के पानी के लाले पड़े हुए हैं। इसलिए हमें पीने के पानी का मोल समझना होगा। हम अपने घरों में भी पीने के पानी के लिए मध्यम आकार के गिलास का उपयोग करें। ज़रूरत पड़ने पर दोबारा ले लें ताकि पानी बचा हुआ फेंकने की नौबत ना आए। इसी तरह घर में जब मेहमान आए तो उन्हें भी मध्यम आकार के गिलास में ही पानी दें ताकि पूरा पानी आराम से पिया जा सके। बड़े गिलास में पानी देने पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई पूरा गिलास पानी पी सके। बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पानी उपलब्ध कराएं ताकि बचा हुआ पानी फालतू ना फेंकना पड़े। ये तो हुई पीने के पानी की बात। अब हम जल के अन्य प्रयोगों की चर्चा करते हैं। देखिए, हर घर में 2 पहिया वाहन अथवा 4 पहिया वाहन होते ही हैं। इन्हें धोने के लिए भी खूब पानी बहाया जाता है। आंकड़े बताते हैं, यदि 2 पहिया वाहन को धोने में औसतन 15 से 20 लीटर पानी लगता है, जबकि 1 4-पहिया वाहन को धोने में 50 से 60 लीटर पानी लगता है। अब यदि हम चाहें कि पानी कम लगे तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रेशर पाइप से धोने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर हाथों से पहले गीला कपड़ा मारें, इसके बाद मग से पानी डालकर कपड़े से साफ करें। इससे आपका 2-पहिया या 4-पहिया वाहन आधे पानी में भी धुल जाएगा और पानी भी बच जाएगा। इसके साथ ही एक काम और कीजिए। जब आप अपना वाहन धोने जा रहे हैं तो उसे ऊंचे स्थान पर खड़ा करके धोएं।

ताकि बहाव का पानी किसी पाइप के जरिए आपके घर के आसपास अथवा किचन गार्डन में पहुंचाया जा सके। इससे पेड़ पौधे में भी पानी पहुंच जाएगा और आपका वाहन भी धुल जाएगा। बस ध्यान रखें कि ज़्यादा साबुन शैम्पू ना हो। ऐसे ही हम वॉशिंग मशीन के उपयोग के दौरान भी पानी बचा सकते हैं। इसके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि कपड़े धोने के समय मशीन में लोड के अनुसार ही पानी भरें। मशीन अगर कम लोड की है और आप पानी ज़्यादा भर देते हैं तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे और पानी बेकार होगा, वो अलग। एक काम और भी कर सकते हैं कि साबुन या शैम्पू से झाग बनाने के पूर्व पानी चलाने के लिए लो फ्लो शावर हेड लगा सकते हैं। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध भी है। श्रोताओं, इसे लगाना बेहद आसान है। साथ ही इससे कपड़े धोने के दौरान 500 गैलन पानी प्रति सप्ताह बचाया जा सकता है। श्रोताओं, हम अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें तो कई कई गैलन पानी बचा सकते हैं। सिंक या वॉश बेसिन में हाथ मुंह धोने के दौरान ज़्यादातर लोग नल को खुला छोड़कर साबुन लगाते हैं, जबकि हाथ मुंह गीला करने के बाद नल बंद करके साबुन या फेस वॉश लगाएं और जब अच्छे से लगा लें तो नल को चालू करें। वही भी आधा ही चालू करें ताकि धीरे धीरे पानी के प्रेशर से हाथ मुंह धुल सकते हैं। ऐसे ही ब्रश करने के दौरान भी ज़्यादातर लोग नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है, जबकि ब्रश और दांत साफ करते समय नल की टोटी बंद रखें और जब आपको मुंह में पानी लेकर कुल्ला करना है तब नल की टोटी खोलें। इससे प्रति मिनट औसतन एक व्यक्ति द्वारा 4 गैलन पानी बचाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सप्ताह में एक परिवार 200 गैलन पानी बचा सकता है। पानी बचाने में ये छोटे छोटे टिप्स बेहद काम की होती हैं, जैसे यह सुनिश्चित करें कि आपका टॉयलेट फ्लपर फ्लशिंग के बाद खुला ना रह जाए, वॉश बेसिन में हवादार नल की टोटी का इस्तेमाल सुनिश्चित करें, अपने बढ़ते हुए छोटे बच्चों को एक साथ नहलाएं, अपने आसपास अथवा क्षेत्र के कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डालें और उस क्षेत्र को पानी से धोने की जगह झाड़ू से सफाई करें। यदि आपके पास वाष्पीकृत एयर कंडीशनर है तो उसके ड्रेनेज पानी को ऐसी दिशा में बहा दें कि वह फूल के पौधों, पेड़ों अथवा आपके लॉन में जाकर एकत्रित हो जाए। इससे पेड़ पौधों को भी पानी मिल जाएगा और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही वॉशिंग मशीन के ड्रेनेज को भी पाइप के जरिए ऐसी जगह पर बहाएं जहां पेड़ पौधे लगे हों। श्रोताओं, हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए पानी का उपयोग करें कि बचे हुए पानी का रिसाइकल हो सके। इसके लिए आप चाहें तो पानी की नांद भी बना सकते हैं ताकि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में आवारा मवेशियों के पीने के काम भी आ सके। गांवों में तो सामूहिक नांद भी बनाकर रिसाइकल किया जाता है जिससे मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए आसानी से एक गड्ढा तैयार करें, उस गड्ढे के पैरेलल में एक दूसरा गड्ढा तैयार करें जो कि पहले से थोड़ा गहरा हो। पहले वाले गड्ढे में पानी भरें और उसका रिसाव दूसरे वाले गड्ढे में छोड़ें। पानी फिल्टर भी हो जाएगा और यह पानी पशुओं के पीने के काम भी आ जाएगा। इस तरह से उपयोग किए गए खराब पानी को भी कचरा रहित बनाया जा सकता है। इस तरह से लाखों गैलन पानी का रिसाइकल कर उपयोग किया जा सकता है। अब हम श्रोताओं कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे ताकि पानी बचाने के अभियान में सफल हो सके। जैसे अपनी वॉशिंग मशीन तभी चलाएं जब वह कपड़ों से भर जाए। एक दो या कम कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन का उपयोग ना करें, बल्कि उन्हें तो आप हाथ से ही धो लें। कम पानी में काम भी हो जाएगा और पानी भी बच जाएगा। इस प्रकार यदि हम ध्यान देंगे तो प्रति माह 600 गैलन पानी बचाया जा सकता है। और हाँ, जब आप अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगा रहे हों उस अवधि में नल की टोटी अथवा शावर को बंद कर दें, क्योंकि इस दौरान पानी फालतू बहता रहता है। इस तरह भी आप प्रति सप्ताह 50 गैलन पानी बचा सकते हैं।

इसके लिए जल बचत वाले नए उपकरणों का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे आजकल बाजार में कम पानी में अच्छे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन भी उपलब्ध है, जो प्रत्येक धुलाई में 20 गैलन पानी बचाती है। पुरुषों को चाहिए कि वे शेविंग करने के दौरान पानी की टोटी बंद रखें, जब पानी की ज़रूरत हो तभी मग्गे में लेकर उपयोग करें। इससे आप प्रति सप्ताह लगभग 100 गैलन पानी बचा सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं तो उस दौरान उसके मैनुअल प्रकार की जगह ऑटोमेटिक प्रकार का चुनाव करें। ये मॉडल कम पानी और कम मेहनत में अधिक कपड़े धोता है। इसकी वजह यह है कि यह पानी की निर्धारित मात्रा ही अंदर लेती है, पानी बर्बादी के लिए कोई अवसर ही नहीं देती। अब हम कुछ बातें किचन से रिलेटेड भी करते हैं। महिलाएं ज़्यादा वक्त अपने किचन में बिताती हैं, जहां पानी का भी सर्वाधिक उपयोग होता है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखें तो कम पानी में काम हो सकता है। जैसे आप अपने किचन सिंक में इंस्टेंट वाटर हीटर का उपयोग करें ताकि पानी गर्म करने के दौरान पानी ना बहे। इसी तरह से फ्रोजन खाद को गर्म करके उस पर पानी ना चलाएं। सब्जियों को काटने के बाद जब आप धोते हैं तो नल को चालू करके एक एक पीस धोने के बजाय एक बर्तन में पानी लेकर धोएं, और बचे हुए पानी को सिंक में बहाने के बजाय बाहर रखे बर्तन या किचन गार्डन के पेड़ पौधों में पहुँचाएँ। काम के दौरान ज़रूरत ना हो तो बार बार हाथ ना धोएं, बल्कि काम होने के बाद ही हाथ धोएं। श्रोताओं, ऐसे ही हम फ्रिज में भी पानी का बर्तन रखकर भी उसे पीने के काम में ले सकते हैं, जबकि ज़्यादातर मामलों में ठंडे पेयजल का नल लगाया जाता है, जिससे अधिक पानी का उपयोग होता है। इसलिए ठंडे पानी के नल की बजाय रेफ्रिजरेटर में पानी का जग भर कर रख दें, जिससे बाद में पीने के उपयोग में ले लें। फ्रिज के नल को बच्चों से ना चलवाएं, इससे ऊर्जा भी बचेगी और पानी की भी बचत होगी। श्रोताओं, अब हम सिंचाई के लिए उपयोग में आने वाले पानी की बात करते हैं। सिंचाई के दौरान कुछ टिप्स अपनाकर हम कई गैलन पानी बचा सकते हैं और आसानी से कम पानी में पेड़ पौधों में सिंचाई भी की जा सकती है। हमें ध्यान रखना होगा, यदि हम पौधारोपण करना है तो उसे मानसून अथवा वर्षा ऋतु के दौरान ही करें, क्योंकि उस समय सिंचाई की आवश्यकता कम रहती है। हमेशा सिंचाई का कार्य प्रातःकाल की शुरुआत में ही करें, उस समय तापमान बहुत कम रहता है, इससे पानी का वाष्पीकरण कम होता है, देर तक नमी बनी रहती है। पौधों के तने के चारों ओर जैविक मल्च बिछाएं ताकि जल का वाष्पीकरण कम हो। यह बहुत आसान है। इसके लिए घास का पुआल या कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसे पेड़ की ज़मीन के आसपास बिछा दें। कई जगह मल्चिंग फिल्म का उपयोग भी नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है। सिंचाई के दौरान याद रखें कि बरे या फ्लड सिंचाई करने की बजाय फव्वारा या टपक सिंचाई की विधि अपनाएं। इससे 10% पानी में ही सिंचाई हो जाती है। आजकल तो ड्रिप सिंचाई भी खूब प्रचलित है, इससे भी काफ़ी पानी की बचत होती है। ऐसे ही निस्तारी के जल का संग्रहण कर उसे घर के पौधों के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। और हाँ, ध्यान रखें कि अपने लॉन में पानी तभी डालें जब आवश्यक हो। पानी की बर्बादी रोकने के लिए कम क्षेत्रों में उगाई घास में हाथों के जरिए पानी डालें। वृक्षों, झाड़ियों, पुष्प पादकों की सिंचाई के लिए पानी बचत वाली ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करें। इसके लिए पौधों के ऊपर से पानी देने के बजाय पौधों की जड़ों में पानी देना अधिक प्रभावकारी होता है। अपने लॉन एवं गार्डन की नियमित निंदाई करते रहें, क्योंकि खरपतवार अन्य पौधों के साथ पोषक तत्वों, प्रकाश एवं पानी के सहयोगी हो जाते हैं। यदि आप अपने बगीचे एवं उद्यान की होज पाइप के जरिए सिंचाई करते हैं तो इसके लिए किचन टाइमर का उपयोग करें। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आवश्यकता से अधिक पानी देने पर पौधे अधिक मरते हैं, इसलिए आवश्यकता हो तभी पौधों को पानी देना चाहिए। श्रोताओं, इसी के साथ जल संरक्षण पर हमारी यह वार्ता यहीं संपन्न होती है। मुझे यानी चांदनी सोनी

अभी आप सुन रहे थे अनमोल धारा में वार्ता जल संरक्षण। वार्ताकार थी चांदनी सोनी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 19/7/2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है बागवानी फसलों में वर्तमान कृषि कार्यमाला। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 19/7/2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 19/7/2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 और दूसरा 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अकेले हम अकेले तुम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक के स्वर में, और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं संग्रहालय से में कामनी काय कांतारे धारावाहिक की तीसरी कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का तीसरा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं और वृक वन से निकलकर पैठार गांव पहुंच जाते हैं। उधर अवंती में रानी पिंगला चिंतित हैं। राजपुरोहित देवज्ञ उन्हें ध्यान करके बताते हैं कि राजा भर्तृहरि इस समय दक्षिण दिशा में हैं तथा वो अस्त्र विहीन हैं, उनके पास वाहन भी नहीं है। महामात्य तथा रानी अत्यंत चिंतित हो जाते हैं कि उनका प्रिय अश्व नीलमणि का क्या हुआ। महामात्य देवज्ञ को स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं तो वे कहते हैं इसे आचार्य नागदत्त के आश्रम में पहुंचा दें। आज हम आचार्य नागदत्त के आश्रम चलेंगे।

0: अवंती से नलवा की ओर जाने वाले एक मार्ग ग्राम्यांचल में बस्ती से कुछ हटकर स्थित है आचार्य नागदत्त का सेवाश्रम, एक सुचर्चित चिकित्सा केंद्र। नागदत्त इसके संचालक हैं। उनके नेतृत्व में त्रिलोचन सहित कई विशेषज्ञ और चिकित्सक इसकी देखभाल करते हैं। अनेक छात्र, शिष्य और सेवक उनके मार्गदर्शन में चिकित्सा और सेवा कार्य में उनका हाथ बटाते हैं। आश्रम की प्रतिष्ठा कुष्ठ रोग के उपचार के लिए है, लेकिन अन्य रोगों का शमन भी वहां होता है। औषधियों उपचारों के अनुसंधान हेतु कार्यशाला एवं प्रयोगशालाएं हैं। जड़ी बूटियों की कृषि वहां के खेतों में की जाती है। विशाल परिसर में फैले हुए सेवाश्रम में दीनहीन, परित्यक्त और निराश रोगीजन एक परिवार में रहते हुए अपने जीवन का एक नया अध्याय खुलने की प्रतीक्षा करते हैं। शरीर से अशक्त, गूंगे, बहरे, अंधे, लूलों की बुझदी आंखों में आशा की नवल दीप्ति का आश्रय है नागदत्त का यह सेवाश्रम। तभी वहां एक घोड़ा आता है।
1: अरे भैया,
2: अरे अरे अरे अरे, कितना प्यारा है, कितना सुंदर बलिश।
0: क्या हुआ, क्या हुआ, कहां से आया, इसका स्वामी कौन है, कितना सुंदर और बलिष्ठ, अवश्य ही कहीं से भटक कर आया है। हटो हटो, हम भी देखें।
3: इस असाधारण अश्व का स्वामी निश्चित ही कोई ऐश्वर्य पुरुष होगा। मित्र, यह आया कहां से? संभवतः रात में किसी ने इस जगह बांध दिया होगा।
4: आहत और क्लांत है, किंतु फिर भी चपल और जीवंत, बहुत मूल्यवान प्रतीत होता है। सज्जा भी मणि माणिक और रजत स्वर्ण के उपादानों से की गई है।
1: अरे मित्र, अशु की देह भर में घाव है, क्षत विक्षत घाव भी दो तीन दिन पहले के लगते हैं। मित्र, इन पर मृतिका लेप आवश्यक है, बरसाती कीटों और मक्खियों से सुरक्षा के लिए।
4: बिल्कुल।
3: कैसा होगा इनका स्वामी, जिसने इसका न तो उपचार किया और न ही इसे छोड़ने के बाद वापस आकर इसकी सुधि ली। लो, ब्रह्मचारी चंद्रसेन आ रहे हैं, संभवतः कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी।
1: हाँ मित्र। अरे, बहुत पीड़ित लगता है, बार बार अपनी टापें उछाल रहा है, जैसे अपनी आर्त विकलता और पीड़ा को व्यक्त कर रहा हो। मुंह से तो कुछ कहेगा भी कैसे, पशु है ना। कोई जाकर आश्रम में सूचित कर दे।
4: क्या लाभ, आश्रम में मनुष्यों के चिकित्सा की व्यवस्था है, पशु चिकित्सा एक अलग अनुशासन है।
1: अरे हाँ मित्र, हम इसे मक्खियों कीटों के कोप से बचा सकते हैं, व्रणों पर मिट्टी का लेप कर दें और आसपास धुआं कर दें।
4: हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
3: सियाता, तब तक इसका स्वामी आ पहुंचे और ज्ञात हो सके कि अश्व कैसे आहत हुआ।

आप लोग देखें कि क्या हो सकता है। मैं भेषक त्रिलोचन को सूचना करता हूं। और देखिए यहां भीड़ ना लगाइए, हटिए यहां से। पशु को विकल होकर अधिक कष्ट होता है। त्रिलोचन संभवतः आचार्य की पर्णकुटी में गए हैं।

0: प्रणाम करता हूं। अरे
1: सुशांत रहें। अरे त्रिलोचन, आप ही असमय विराजें।
0: उपचार है तो आज कम लोग आए हैं।
1: अच्छा,
0: जो आए भी हैं वह उस अश्व के निकट उत्सुकता से एकत्र हैं जिसे कोई आश्रम के द्वार पर विगत रात्रि बांध गया है।
1: क्या
0: सुना है? दुर्लभ अश्व है और घायल है। चंद्र मुझे उपचार के लिए बुलाने आया था, मैंने सोचा आपको भी बता दूं।
1: अच्छा किया,
0: बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए आज।
1: अस्वाभाविक नहीं है, जानते हो बेशक त्रिलोचन, यहां जो रोगी, दुखी, वृद्ध, वंचित आश्रम के आश्रय में है वे भी तो हैं मनुष्य ही। महीनों वर्षों से अपने परिवार समाज से कटकर इस एकांत में अपना समय अथवा आयु व्यतीत कर रहे हैं। कीड़ों से बिलबिलाते गली कुश्त का रोगी भी मरना नहीं चाहता। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? एक अदृश्य विवशता है, घटना विहीन एक रास्ता, खूब तो होती ही है, सब में कुछ नया पाने, नया करने की इच्छा होती है
0: जी।
1: जीवन में रंजन का भी स्थान है। मुझे लगता है कि धर्मचर्या के साथ आश्रम में मनोरंजन का भी अवसर जुटाना चाहिए कुछ।
0: आर्य, सूचना थी कि मुनि अनंत सागर से सेवाश्रम में पधारने वाले।
1: उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था, संभवतः कहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण कहीं रुक गए हों। तुम्हें तो यह ज्ञात ही है कि सेवा आश्रम के प्रेरक वही हैं।
0: क्षमा करें आर्य, जैन मुनि प्रायः चातुर्मास में संचरण नहीं करते।
1: वो रूढ़िवादी मुनि नहीं है भद्र, उन्हें परोपकारवादी कह सकते हैं। वो सेवा को तपश्चर्या मानते हैं। मिलोगे तो जान जाओगे। और हां, तुम भी अश्व को जाकर देख लो, मैं कुछ देर में पहुंचता हूं वहां। तुम गए नहीं वत्स त्रिलोचन?
0: आपके साथ ही चलूंगा।
1: अच्छा,
0: जिज्ञासाओं को लेकर बैठे रहने की धृष्टता कर गया। आरे, मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि आप कौन हैं, कहां से हैं, इस आश्रम की स्थापना कैसे हुई। एक रहस्य जैसा है यह आश्रम और इसका संचालन।
1: वत्स, रहस्य कुछ भी नहीं है, जो है वो सामने है, खुला हुआ, ताक झांक की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी देख सकता है।
0: आचार्य, मैंने जीवन में बहुत ऐश्वर्य देखा है, खूब सुविधाएं भोगी हैं, उकताने की सीमा तक, कदाचित उन्हीं के फलित का सामना कर रहा हूं और आज निपट अकेला। मां भागिनी, पिछड़े हुए 10 वर्ष बीत गए।
1: मनुष्य दुखों के बीच ही अपने सुख का संचार रचता है, ये इच्छा ही दुख से लड़ने और उसे पराजित करने का संकल्प जगाती है। सुख की यही खोज उसे अपने दुख को कम करने, उसे बांट लेने की प्रेरणा देती है। मैं देखता हूं भेषक त्रिलोचन, तुम्हारा मन आज सुस्थिर नहीं है। चलो मैं भी चलता हूं उस रहस्यमय अश्व को देखने।

0: पर्ण कुटीर से निकलकर त्रिलोचन और नागदत्त आश्रम की उस ओर चल देते हैं जहां अश्व बंधा है।
1: त्रिलोचन, तुमने अभी कहा कि तुम मेरे विषय में कुछ नहीं जानते, तो जान जाओ मेरे पास गोपनीय कुछ भी नहीं है, प्रदर्शन योग्य भी नहीं है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म कुकर्म, हां तुम्हारे बारे में जानकर भी मुझे अच्छा लगेगा। एक बात और है वत्स त्रिलोचन,

0: यहां आश्रम में जितने दीनहीन उपेक्षित व्यथित हैं सबकी अपनी अपनी व्यथा कथा है। कुछ की त्रासदी तो अत्यंत रोचक है।
1: प्रणति महोदय।
0: अरे चंदन राय जी, आप कैसे हैं? आपका रोग कैसा है? चिकित्सा से लाभ तो हो रहा है ना? रोग क्या फिर से उभर आया?
1: वही बात है, देखो ना, मैं इस आश्रम पर भार बनता जा रहा हूं नागदत्त।
0: निराश ना हो।
1: मुझ जैसे लुंजे बीमार को महाकाल के द्वार से उठा लाए हो तुम नागदत्त। बताओ ना, जिसे परिवार ने मरने के लिए छोड़ दिया उसका भार तुम सब लोग ढो रहे हो।
0: सब बिसरा दीजिए, भूल जाइए चंदन राय जी। हाँ ये बताइए, श्वास रोग की कितनी कृपा है आप पर। एक नई औषधि विकसित हुई आश्रम में, सेवन करके बताइएगा कि कितनी प्रभावशाली है।
1: ओहो, तो परीक्षण होगा मुझ पर?
0: जी
1: उचित है, उचित है। दुष्प्रभाव से मृत्यु भी हो गई तो रोगग्रस्त विकलांग वृद्ध का भार भी तो कम हो जाएगा ना पृथ्वी से।
2: क्या कह रहे हैं चंदन भाई जी?
1: सही कह रहा हूँ भाई।
2: ऐसे कैसे हम आपका साथ छोड़ने देंगे? ये सूखे हाथ जिनके स्पर्श से मिट्टी में प्राणों का संचार हो जाता है, ये आंखें जो वृक्षों और वनस्पतियों में रंग और रस भरती हैं, कान जो ऋतुओं की पदचाप छीनते हैं, आपका होना तो आश्रम के जीवन का होना है। आचार्य श्री कहते हैं कि यहाँ की ऊसर पथरीली जमीन आपके गुण और समर्पण से ही संपन्न हुई।
1: अरे बंधु, मैं अनपढ़ भूमिया, किंतु जब तक पत्नी जीवित रही वह पेट भरती रही, उसकी मृत्यु के पश्चात संतानों ने उपेक्षा की, फिर अनदेखी और अंत में अपमान।
0: त्रिलोचन, हम सबके संसार की कहानियां हमारे आसपास हैं। वो कितना शुभ दिन होगा जब ये स्वस्थ निरोग होकर अपने अपने घर परिवार में लौटेंगे।
3: मैं कभी नहीं लौटूंगा उस नीचमती बांधवों के बीच। स्वार्थी, अमानुष, दुष्ट, हाँ एक बार मिलूंगा अवश्य उनसे जाकर, यह दिखाने कि यही है वह देह जो कभी यौवनाओं को मोहित करती थी, जिसे मैं इत्र चंदन पुष्प की गंध में सराबोर रखता था। वही शरीर पहले अशोभन हुआ और फिर अशुभ अस्पृश्य। किसे विश्वास होगा कि मैंने अनेक प्रख्यात मल्लों को भूमि सुंघाई? कौन कौन पहचानता है मुझे आज?
2: आप दक्षिणापथ के चालुक्य राज के यशस्वी मल्ल इस दशा में? ओह
0: हाँ, वही है। परंतु तुम इन्हें कैसे जानते हो? बंधु कर्ण कुंडल, अधीर मत होइए, आप निश्चय ही आरोग्य प्राप्त करोगे। और हाँ, हम सबके साथ इसी आश्रम में रोगियों की सेवा भी करना है आपको।
3: मुझे विश्वास है आर्य, आपकी अनुकंपा से मुझे पुनर्जीवन मिलना ही है।
0: वत्स त्रिलोचन, तुम कर्ण कुंडल को कैसे जानते हो? स्वयं भी क्या दक्षिण पथ से हो? यद्यपि तुम्हारे आचार्य ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा था कि तुम्हारे अतीत के संबंध में कोई जिज्ञासा न रखी जाए, वंश गोत्र ग्राम की कोई पूछताछ न की जाए, पर तुम्हें देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जाती है। कभी उचित समझो तो बता देना कि कहां से यहां तक पहुंचे हो।
2: बताने जैसा कुछ नहीं है आर्य, और ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे छुपाकर रखना हो। हां, आपके संबंध में जिज्ञासा इसलिए है कि यह आश्रम आपकी कीर्ति का साकार साक्ष्य है। मुनि अनंत सागर इसकी प्रेरणा है और यहां के सब स्वयं समर्पित होकर अद्भुत कार्य कर रहे हैं।
0: त्रिलोचन, वह मैं

0: मेरे पुत्र से बड़े हो और भ्राता से छोटे। इस प्रकार मेरी पीढ़ी और मेरी अगली पीढ़ी के बीच तुम्हारी उपस्थिति एक संवाद सेतु के जैसी है। अपनी राम कहानी कहते हुए मुझे आंतरिक तृप्ति मिलेगी और कदाचित तुम्हारे सामने एक अनुभव पृष्ठ खुल सकेगा। अरे हाँ, यहाँ तो समूचा आश्रम ही एकत्र हो गया है, ये क्या हो रहा है?
1: सहज जिज्ञासावश आर्य, अश्व जिन परिस्थितियों में पाया गया है वह रहस्यात्मक है, विशेष रूप से तब जब भटकने के बाद भी उसकी देह पर बहुमूल्य मणिमाणिक किसी ने छुए तक नहीं।
0: आश्चर्य तो है ही।
1: हटिए हटिए, आप लोग पर हटिए। हाँ हटिए। आचार्य श्री अश्व का अवलोकन करने पधारे हैं।
0: अरे ये नीलमणि, ये यहां कैसे आ पहुंचा?
2: अपना नाम सुनकर अश्व हिन हिन आया।
1: आप इसे जानते हैं?
0: मैं ही क्या, पूरी उज्जैनी इसे जानती है। राज्य का रत्न, ये देश देशांतर में ख्यात, महाराज भर्तृहरि का अत्यंत प्रिय, उनका निजी अश्व। किंतु इस अवस्था में कैसे? हे देव, कुछ अमंगल ना घटा हो।
2: आचार्य, इसकी प्रारंभिक शुश्रूषा कर दी है, कीटों और मक्खियों से छुटकारा मिल गया है, इसे व्रणों पर मिट्टी चढ़ा दी है, चैन मिल गया है, अब ये उतना विकल नहीं है। आर्य त्रिलोचन इसे संभाल लेंगे।
0: त्रिलोचन ही क्यों, जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक इसकी परिचर्या का दायित्व तो तुम पर रहेगा चंद्रसेन।
2: जैसी आज्ञा।
0: इसे यहां से हटाकर मेरी पर्णकुटी तक पहुंचा दो।
2: जी जी,
0: वहीं रहेगा ये पूर्ण स्वस्थ होने तक, और तब तुम इसे अवंती ले जाकर महामात्य को सौंप देना।
2: अवश्य आचार्य श्री।
0: मैं पत्र दूंगा तुम्हें महामात्य तक पहुंचाने के लिए। मुझे जानते हैं वे, पता नहीं क्यों महाराज की कुशलता जानने के लिए मन व्यग्र हो रहा है।
2: आचार्य,
0: इस अश्व ने शंकाएं को शंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। हाँ, तुम्हें एक पत्र और भी दूंगा, वसुंधरा के लिए।
2: वसुंधरा कौन देव?
0: चंद्रसेन अश्व को ले जाओ। आप सब यहां से जाएं, अपने अपने स्थान पर, अपने अपने काम पर जाएं। अश्व का प्रकरण समाप्त हुआ, चलो त्रिलोचन।
1: नीलमणि की दशा आपको विचलित कर गई है आर्य?
0: अन्य संदर्भ भी है त्रिलोचन। मैं उज्जैनी में रहा हूं, मुझे इसके प्रति राजा भर्तृहरि का अनुराग भलीभांति विदित है। वो एक पल के लिए भी इसे आंख से ओझल नहीं होने देते थे। नीलमणि यहां है तो राजा भर्तृहरि कहां है? तुम जानते हो कि प्रजा और राज्य की नियति का सूत्रधार नरेश होता है। हाँ। नरेश की अनुपस्थिति संकट के आगमन का संकेत देती है।
1: मैंने उसे देखा है, घाव बताते हैं कि कहीं ना कहीं द्वंद हुआ है। हाँ। किसी शत्रु या दस्यु दल का कार्य हो सकता है, किंतु सारे के सारे घाव शरीर के निचले भाग में ही हैं। मुंह, ग्रीवा, पीठ पर खरोंच तक नहीं है, अतः अश्वरोही भी घायल हुआ होगा।
0: किंतु यहां बांधकर वो चला कहां गया?
1: बांधकर गया है तो लौटेगा भी? इतने हष्ट पुष्ट अश्व को कोई यूं ही नहीं छोड़ देता आर्य। फिर ये संकेत भी मिलता है कि ये दस्युजनों का कृत्य नहीं है, क्योंकि अश्व की संपदा यथावत है, शत्रु का भी नहीं, क्योंकि वह जीवित है और अपहृत भी नहीं हुआ। जो भी हो, अश्वरोही घायल तो हुआ होगा, किंतु जीवित अवश्य है, जो आश्रम की सुरक्षा में इसे छोड़ गया।
0: तर्कता तुम्हारे अनुमान विवेक सम्मत है त्रिलोचन। आओ कुछ पल यहां बैठे, यहां शीत मंद संचरण है वायु का, थोड़ी शांति मिलेगी, विचार स्थिर होंगे।
1: देव, जब भी अवंती और राजा भर्तृहरि का विषय आता है तो मुझे लगता है कि जैसे आपका स्वर करुणा से भर उठता है, कोई गहरा नाता

0: आपका इनसे, लेकिन शीघ्र ही आप सहज होने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि वहाँ की कुछ स्मृतियाँ अवसर पाते ही उभरने लगती हैं आपके मानस में?
1: हाँ अवंती, स्मृतियाँ साथ नहीं छोड़ती, स्मृति के गर्भ से बार बार कौंद कर बाहर आ जाती है। अवंती के एक मध्यवित परिवार में मैंने जन्म लिया था, ठहरा हुआ सा जीवन था, एक रस। लोग जन्म लेते, व्यवसाय में व्यस्त रहते, संतान उत्पन्न करते और मर जाते। वंश की तीन पीढ़ियां मैंने जन्म मृत्यु के इसी क्रम में बीतते देखी।
0: जी।
1: धार्मिक वातावरण था परिवार का, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, महादेव, सभी का क्रमबद्ध पूजन अर्चन, इस याचना इस अभीप्सा के साथ की धरती पर प्रचुर धन प्राप्त हो
0: जी।
1: और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग। पिता बार बार दोहराते थे, धनात धर्म तत सुखम, जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन, पंडित, गुणी, वक्ता, प्रभावशाली और दर्शनीय होता है।
0: सत्य है।
1: मैंने देखा कि पिता ही नहीं, धन को माया समझकर उसकी भर्त्सना करने वाले, त्याग का उपदेश देने वाले संत, उपदेशक, पौराणिक आचार, सब के सब धन के पीछे भाग रहे हैं
0: जी।
1: धर्म भी धन से ही संभव है, ये जानकर मैं पूरी शक्ति से धन अर्जन में जुट गया। विपणक से सार्थक और फिर सार्थक पति, सामुद्रिक, अंतर्राष्ट्रीय, सब ओर व्यापार फैलता गया
0: जी।
1: अनुचर, परिचर, रक्षक, भृत्य, दास, दासियां, वैभव का विस्तार हो रहा था
0: जी देव।
1: इस आपाधापी में मैं महीनों विदेश रहता प्रवास पर। पहले मैं सफल था, अब मैं विशिष्ट हो गया था। महीनों बाद अवंती लौटता तो जन समूह पथ पर पलक पावड़े बिछा देते, विरुद्ध गा रहे चारणों की भीड़ लग जाती, भिक्षुक याचना में खड़े रहकर सुख वैभव की आशीषें उछालती, वारांगनाएं प्रतीक्षातुर दृष्टि से मेरी भंगिमाओं को क्षुधित भाव से निरखती। ये सब सफलता का, विशिष्टता का ताम झाम था, मैंने ये सुख देखा है
0: जी।
1: और एक दिन 11 वर्ष पहले वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन मैं विपुल धन और वैभव के साथ देशांतरों से लौटकर अवंती पहुंचा था। मेरी अगवानी के लिए सदा नगर द्वार पर मेरी पत्नी मुझे मिला करती थी
0: जी।
1: उस दिन मैं उसे और अपने पुत्र को खोज रहा था, दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
0: फिर क्या हुआ देव?
1: मैं दुश्चिंताओं से घिर गया। तभी मेरा ध्यान एक जनसमूह की ओर गया, जहां बीच में अधपके बालों, चीकट कपड़ों वाला एक उन्मादी सा व्यक्ति लोगों की तालियों के साथ नाच रहा था। उसके कंसुरे गायन पर बाल वृद्ध नर नारी हंसते हुए तालियां बजा रहे थे। त्रिलोचन, जानते हो वो व्यक्ति कौन था?
0: कौन था महोदय?
1: महाश्रेष्ठी ऋतुर्पण, महाराज गर्भभिल के समय का धन कुबेर, जिसे कभी अपने ही धन का अनुमान नहीं था। मैं स्वयं भी कभी ऋतुर्पण बनने का सपना देख रहा था। बंधु, धन बहुत अस्थिर होता है, सफलता स्थायी होती है। मेरा आदर्श, मेरा स्वप्न सामने खड़ा था, विवर्ण, विक्षिप्त, पितृरूप ऋतुपर्ण। घर पहुंचा तो पत्नी वसुंधरा मिली, अनुचरी चेटियों से घिरी, मौन यांत्रिक स्वागत किया उसने मेरा, बिना किसी आवेग या उत्तेजना के। पुत्र वहां कहीं नहीं मिला, बताया गया कि अपने मित्रों के साथ बिहार के लिए कहीं चला गया।

0: चेतरास दिया था।
1: वत्स, अनुभव का एक बिल्कुल नया संस्करण तुमने सुना
2: जी।
1: कास्ट पुतलिकाओं का एक विशाल संग्रहालय, जहां प्रत्येक गति, हर एक भंगिमा यंत्र चालित है। भावना शून्य अस्तित्व जाने क्या क्या सोचता रहा, खींचता रहा, कभी कभी हंस भी लेता। 11 वर्षों से यही कर रहा हूं मैं। पीड़ा को उस विस्मृत की खूंटी पर टांगे हुए मुनि श्री अनंत सागर के सामने ये सब कह देना चाहता था, पर अवसर ही नहीं मिला।
3: बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है आचार्य।
1: हाँ,
3: प्रतीत होता है कि वृष्टि अभी तीव्र हो जाएगी, चलें?
1: अवश्य चलना ही हो, और चंद्रसेन से कहना होगा कि नीलमणि के घावों पर पानी न पड़ने दे। मेरी चिंता उचित है ना? वैसे चिकित्सा

0: अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का तीसरा भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक विनय उपाध्याय, चंदन राय, मनोज राजानी, कर्ण कुंडल, दिलीप बेहरे, आश्रमवासी रामरतन सेन, चंद्रसेन, बद्रवास्ती, त्रिलोचन, उबेदुल्ला खां, नागदत्त।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत कामिनी काय कांतारे की तीसरी कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित निवास में आयोजित बैठक में 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक एवं 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि आधार ऐप के डाउनलोड की संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो सुविधाजनक और डिजिटल फर्स्ट पहचान सेवाओं में लोगों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माई जीओवी मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है, जिसका उद्देश्य इंडिया पोस्ट के लिए ऐसा आधिकारिक शुभंकर तैयार करना है जो संगठन के विश्वास, विश्वसनीयता, सेवा और डिजिटल नवाचार जैसे मूल्यों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करे। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15

अगस्त है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम

दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीला कार्बन क्या है? अगर नहीं तो जानते हैं आज के ये वाणी में। साथ ही बात होगी अमृत सरोवर योजना और मेघालय रूट ब्रिज की, और आप सुन पाएंगे अपने पसंदीदा गीत हमारे विशेष स्तंभ इंद्रधनुष में। दोस्तों, आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्यूपवाणी। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, नीला कार्बन मतलब ब्लू कार्बन, बहुत आसान शब्दों में कहें तो समुद्र और समुद्र किनारे की हरियाली द्वारा सोखा गया कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे जंगलों को हरा कार्बन कहते हैं, वैसे ही समुद्र के पास उगने वाले मैंग्रोव मतलब बरगद जैसे पेड़, समुद्री घास और नमकीन दलदली इलाकों को नीला कार्बन कहा जाता है। ये जगह कार्बन को बहुत तेजी से सोखती हैं और लंबे समय तक अपने अंदर जमा करके रखती हैं। दोस्तों, पेड़ हवा से कार्बन सोखते हैं, लेकिन मैंग्रोव और समुद्री घास उससे भी ज्यादा कार्बन अपनी जड़ों, मिट्टी और तने में बंद करके रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये नीले इकोसिस्टम पूरे विश्व में कार्बन स्टोर का बहुत बड़ा हिस्सा संभालते हैं, जबकि ये पृथ्वी की सतह का सिर्फ 0.5% हिस्सा ही घेरते हैं, यानी थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा काम। लेकिन ये क्यों जरूरी है? दोस्तों, आजकल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की बड़ी समस्या है। कार्बन बढ़ने से धरती गर्म हो रही है। नीला कार्बन हमें प्राकृतिक तरीके से इस समस्या से लड़ने में मदद करता है। ये सिर्फ कार्बन सोखता ही नहीं बल्कि तूफान से किनारों की रक्षा भी करता है, मछलियों को घर देता है और मछली पकड़ने वाले लोगों की आजीविका बचाता है। दुर्भाग्य से शहर बनाने, खेती और प्रदूषण के कारण ये मैंग्रोव और समुद्री घास तेजी से खत्म हो रहे हैं। जब ये नष्ट होते हैं तो जमा कार्बन फिर से हवा में निकल जाता है, जो और ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? दोस्तों, सरकारों, एनजीओज और स्थानीय लोगों को मिलकर इन इलाकों की रक्षा करनी चाहिए। नए मैंग्रोव लगाना, प्रदूषण रोकना और इन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित करना बहुत जरूरी है। कई देश अब ब्लू कार्बन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, क्योंकि ब्लू कार्बन प्रकृति का छिपा हुआ खजाना है जो हमें मुफ्त में जलवायु कूलिंग दे रहा है। अगर हम इसे बचाएंगे तो हम खुद को, अपने बच्चों और समुद्र की जिंदगी को बचा पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जहां हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपनों से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं शान और उस्ताद सुल्तान खान की खूबसूरत आवाज में गाए हुए इस गीत के साथ।

0: और दोस्तों अब सृष्टि गौतम से जानते हैं तालाबों को किस तरह से बचाया जाए।
1: दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले के समय में बहुत से तालाब होते थे और आज के समय में जब हम गांव का रुख करते हैं तो या तो हमें वो तालाब सूखे नजर आते हैं और या तो उनकी जगह कोई बिल्डिंग नजर आती है। तो सूखे तालाब को फिर से भरने के लिए और नए तालाब बनाने के लिए दोस्तों भारत सरकार की एक बहुत बड़ी अच्छी सरकारी योजना है अमृत सरोवर योजना, जो हमारे गांवों और शहरों में पानी की समस्या को कम करने के लिए शुरू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस मिशन की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य है हर जिले में कम से कम 75 तालाबों या सरोवरों को नया बनाना या पुराने तालाबों को साफ करके दोबारा उपयोगी बनाना। पूरे देश में कुल 50,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जब तक 68,000 से ज़्यादा सरोवर पूरे हो चुके हैं। जानते हैं क्यों जरूरी है यह योजना? हमारे गांवों में पुराने तालाब सूख रहे हैं, गंदे हो रहे हैं या भर दिए गए हैं। इससे पानी की कमी हो रही है, भूजल गिर रहा है और सूखा पड़ता है। अमृत सरोवर योजना इन तालाब को फिर

इसे जीवंत बनाती है। हर सरोवर कम से कम 1 एकड़ का होना चाहिए और उसमें अच्छी खासी पानी जमा करने की क्षमता हो। कैसे काम होता है? ग्राम पंचायतें, स्थानीय लोग, युवा एनजीओ और विभिन्न मंत्रालय मिलकर काम करते हैं। तालाब खोदने, साफ करने, चारों तरफ पेड़ लगाने और मिट्टी को मजबूत करने का काम होता है। लोग खुद अपनी मेहनत

पीढ़ियों को साफ पानी और हरा भरा भविष्य मिलेगा। ये योजना हमें सिखाती है कि पानी है तो जीवन है। छोटे छोटे प्रयास से हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, जीवन की राह में हमें खुशियां भी मिलती हैं और चुनौतियां भी। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में आपको सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारे भारत देश में आपने बहुत सी अनोखी चीजें देखी होंगी। उन्हीं में से एक अनोखी चीज के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, भारत के मेघालय राज्य में एक अनोखी चीज है रूट ब्रिज, मतलब जीवित जड़ों के पुल। ये पुल लकड़ी, लोहे या सीमेंट से नहीं बने, बल्कि पेड़ों की जड़ों से उगाए गए हैं। इन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि इंसान ने प्रकृति के साथ कैसे मिलकर इतना खूबसूरत और मजबूत पुल बनाया। मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, नदियां, झरने और गड्ढे जगह जगह हैं। पुराने समय में खासी और जयंतिया जनजाति के लोग जंगल में रबर फिकस, मतलब फिकस इलास्टिका नाम का एक पेड़ लगाते थे। इन पेड़ों की हवाई जड़ें लंबी लंबी निकलती हैं। फिर लोग बांस की मदद से इन जड़ों को नदी के दूसरे पार खींचकर एक दूसरे से जोड़ देते थे। धीरे धीरे ये जड़ें मजबूत और मोटी होती गईं। सालों

के साथ ये पुल और भी ताकतवर बनते जाते हैं। दोस्तों, कुछ पुल तो 100 से 200 साल पुराने हैं और आज भी हजारों लोग रोज इन पर चलते हैं। ये पुल 50 से 60 लोगों का वजन एक बार में संभाल लेते हैं। सबसे मशहूर है नांगरियात का डबल डेकर रूट ब्रिज, एक पुल और उसके ऊपर दूसरा पुल, जैसे कि दो मंजिला पुल हो। एक और पुल 175 फीट लंबा भी है। दोस्तों, ये पुल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। ट्रैकिंग करके जंगल में पहुंचना, ऊपर से नीचे देखना और हरे भरे पहाड़ों के बीच ये जीवित पुल देखना एक अद्भुत अनुभव है। ये पुल सिर्फ यातायात का साधन नहीं होते बल्कि पर्यावरण का मजबूत हिस्सा भी है। ये पेड़ हवा साफ करते हैं, मिट्टी को मजबूत रखते हैं और जीव जंतुओं को घर देते हैं। यूनेस्को ने भी इनको विश्व धरोहर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आजकल युवा पीढ़ी इन पुलों को बचाने और पर्यटकों को सही तरीके से घुमाने का काम कर रही है। मेघालय के रूट ब्रिज हमें सिखाते हैं दोस्तों कि प्रकृति के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर अगर काम किया जाए तो चमत्कार हो सकता है। अगर आप कभी मेघालय घूमने जाएं तो इन पुलों को जरूर देखिएगा। ये सिर्फ पुल नहीं, हमारी संस्कृति और प्रकृति प्रेम की मिसाल है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारे अपने लोग और उनसे जुड़ी यादें होती हैं। यही रिश्ते हर मुश्किल समय में हमें सहारा देते हैं। इन्हीं भावनाओं को समेटे सुनते हैं ये अगला गीत, जुबीन नौटियाल की खूबसूरत आवाज में।

0: और दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे आज के शाम के गीत संगीत से सजे विशेष स्तंभ इंद्रधनुष की ओर। दोस्तों हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हर ठोकर हमें आगे बढ़ना सिखाती है। उम्मीद, मेहनत और विश्वास के साथ जीवन का हर सपना पूरा हो सकता है। इसी पॉजिटिविटी के साथ सुनते हैं आज की शाम का ये आखिरी गीत,
1: के और पलक मुछाल की खूबसूरत आवाज में।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव लिख भेजिए हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanirivaa@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल न करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का अगला गीत। संगीत दिया था एआर रहमान ने और फिल्म थी स्वदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म माचिस से। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत विशाल का है, आवाजें हरिहरन और सुरेश वाटकर की।

माचिस। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना हरिहरन और सुरेश वाटकर की आवाज में। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत विशाल का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिहरन के गाए कुछ चुनिंदा गीत। एक ऐसा ही खूबसूरत गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है सपने फिल्म से। आवाज हरिहरन और साधना सरगम की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की है और संगीत AR रहमान का।

और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हमसे है मुकाबला का गीत आवाज हरिहरन की। शब्द रचना पी के मिश्रा की है और संगीत ए आर रहमान का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय। खरीदारी के लिए कपड़े का थैला लेकर जाएं। पॉलीथीन बैग्स को हटाना है, धरती को बचाना है।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग
2: अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का आज दौरा किया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित निवास

0: में आयोजित बैठक में कल 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक एवं 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का आज समापन किया गया। प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा, शहडोल तथा सागर संभागों में बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेशे फिल्म संगीत।

लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुर फिल्म का गीत। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीत एम करीम का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए दिल से फिल्म का गीत लता मंगेशकर और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलजार और मलयालम लिरिक्स हैं इसके शिरीष पुलुत के। संगीत दिया है ए आर रहमान ने। तो आइए सुनते हैं दिल से फिल्म का ये गीत।

दिल से। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म लव आजकल से, आवाज राहत फतेह अली खान की, शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत प्रीतम का।

लव आजकल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। शब्द रचना थी इरशाद कामिल की और संगीत प्रीतम का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अनजाना अनजानी, इस फिल्म का गीत अब सुनिए राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा है विशाल डडलानी ने और संगीत भी विशाल डडलानी का ही है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत वो लम्हे। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं के की आवाज में। शब्द रचना नीलेश मिश्रा की है और संगीत प्रीतम का है।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुनिए एजेंट विनोद फिल्म का गीत। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत प्रीतम का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कुमार सानू की आवाज में आप सुनिए इंदिवर का लिखा गीत। संगीत MM करीम का है और फिल्म का नाम है क्रिमिनल।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना क्रिमिनल फिल्म का गीत, शब्द रचना थी इंदिवर की और संगीत M.M. करीम का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म लाइफ इन मेट्रो से, आवाज सोहम की, शब्द रचना सैयद कादरी की और संगीत प्रीतम का।

लाइफ इन मेट्रो, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोहम की आवाज़ में। शब्द रचना थी सैयद कादरी की और संगीत प्रीतम का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अब सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज़ में इरशाद कामिल कल का गीत। संगीत विशाल शेखर का है और फिल्म है सुल्तान।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सुल्तान फिल्म का गीत। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और संगीत विशाल शेखर का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए पंडित बिरजू महाराज और कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाज़ में पंडित बिरजू महाराज का लिखा गीत। संगीत पंडित बिरजू महाराज का ही है और फिल्म है देवदास।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई औचक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक सरक

0: दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन जियरा गयो धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क।
1: देवदास फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: छे छप छे छपा के छे पानियों पे छीटे उड़ाती हुई लड़की।
5: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
6: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
5: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
6: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
5: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
6: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
5: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
6: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
5: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
6: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
5: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
6: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
5: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
6: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
7: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
6: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
5: समय है पानी बचाने का,
6: पानी का मोल समझने और समझाने का।
5: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
8: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी,

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। ये हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा

0: चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यूफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन यूफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉक ओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब सुनिए आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रम समाचारों के बाद रात 7:21 से होगा आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। सात 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत 8:15 पर, 9:30 पर सुनिए चित्र भारती और 9:30 पर सुनिए, इसे एक बार फिर सुन लीजिए, 9:30 पर सुनिए चित्र भारती और रात 10 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए देवव्रत मिश्रा का सितार वादन। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब हम आपको बता रहे हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का प्रसारण होगा 7:20 पर। सुरमई सवेरा फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:30 पर और 9:00। लोक संगीत का प्रसारण होगा 9:15 पर। कल सुनिए डॉक्टर अरविंद सोनी के गाए बुंदेली गीत सिंधियत जी सुरहान का प्रसारण समय है 9:30। कल इसमें आप सुनेंगे भारती आसुदानी का काव्य पाठ। जिले की चिट्ठी का प्रसारण समय है 10:00 और 10:05 पर सुनिए सामुदायिक गान शिक्षण पाठ के अंतर्गत उड़िया गीत रचना केसी पनिग्रही की। फिल्म संगीत 10:30 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण होगा। इसके अंतर्गत कल सुनिए 7:30 से 8:00 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय है बागवानी फसलों में वर्तमान कृषि कार्यमाला और विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकुल कुमार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत कल सुबह 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है 12:00। 12:30 पर संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का चौथा भाग। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान होगा। लोक संगीत 1:30 पर और 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगी। फिल्मी गीतों का आनंद श्रोता ले सकेंगे दोपहर 2:00 फिल्म संगीत में और 2:50 पर चित्रपट संगीत में। दो बजकर 30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत युवाणी सुनिए शाम 5:02 पर। ये आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। सांतकालीन सभा में फिल्म संगीत शाम 5:33 पर 6:00 और रात 8:30 पर। रात 8:00 आप सुनेंगे

सुर्खियों में डगर विकास की, सुनिए रात 8:15 पर। विषय है राष्ट्रीय आजीवन मिशन, आजीविका मिशन। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रस्तुति आकाशवाणी छिंदवाड़ा की। 9:30 पर संसद के समक्ष मुद्दे और रात 10 अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में सुनिए विदुषी बालमणि ईश्वर का कर्नाटक गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित निवास में आयोजित बैठक में कल 19 जुलाई को भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक और 20 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए जाने वाले विधेयक प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील करेगी। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अशोकनगर जिले के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र के पथखेड़ा में 2,38,00,000 रुपये की लागत से निर्मित नवीन विद्युत उपकेंद्र को क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस विद्युत उपकेंद्र से क्षेत्र के 7 गांवों के नागरिकों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और बेहतर वोल्टेज के साथ बिजली मिलेगी। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि जिस चंदेरी और मुंगावली में कभी 1 या 2 विद्युत सब स्टेशन होते थे, वहां आज 15 सब स्टेशन हैं।
1: मेघोनावाड़ा से अमरोहा की सड़क और उसी के साथ मेघोनावाड़ा से रसुल्ला बदर का 10 करोड़ का पुल भी मैंने आप लोगों के बनाया। मड़ी में रिंग रोड बन गई, घटावना में बन गई। और सब स्टेशनों की तो हम बात करें तो जिस चंदेरी और जिस मुंगावली में 1 या 2 सब स्टेशन होते थे, आज उसी चंदेरी और मुंगावली में 15 सब स्टेशन मैंने आप लोगों के लिए स्थापित कर दिए।
0: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जबलपुर पुलिस ने इस अभियान के तहत आज स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों में गुरु के प्रति सम्मान एवं भारतीय संस्कार

0: और सांस्कृतिक परंपरा विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान एक गुरु एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा, पालक शिक्षक बैठक होगी। इसके साथ ही उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों का सम्मान होगा। वहीं स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। 29 जुलाई को समापन समारोह में विजेताओं और 90% से अधिक परिणाम देने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि स्वस्थ समाज मजबूत राष्ट्र की नींव है। आज नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ के पुरस्कार समारोह में श्री सिंह ने कहा कि चिकित्सा पेशेवर न केवल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं बल्कि देश की विकास यात्रा को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि डॉक्टर अपने समर्पण और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट विक्रम 1 ने आगमन मिशन के अंतर्गत पेलोड को पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में 450 किलोमीटर दूर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। यह प्रक्षेपण आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12:05 पर हुआ। इसके साथ ही भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की सार्वजनिक निजी भागीदारी की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है।
2: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता 4 प्रमुख विषयों पर आधारित होगी, जिनमें वित्तीय संघवाद और सुशासन, कौशल विकास, रोजगार और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, सामाजिक क्षेत्र का व्यय तथा शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण शामिल है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, जबकि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 30 सितंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 22 जुलाई को एक कार्यशाला के दौरान इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ करेंगे। पहले चरण में 341 सरकारी और निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 21 से 23 जुलाई तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। श्रीकांत ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं यामी गौतम ने फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। ममूटी और कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार साझा किया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने वन क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

रायसेन वन परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सांची विधायक ने सिंगल क्लिक के जरिए योजना के 305 पात्र हितग्राहियों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफर की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर नर्मदापुरम में जिला न्यायाधीश ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार पॉक्सो एक्ट श्रम कानून के साथ जरूरी जानकारियां प्रदान की। शिवपुरी जिला अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड के तहत प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर 15 लाख रुपये का पुरस्कार जीता है। राजगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील समितियों में नए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए साक्षात्कार 24 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। धार जिले में आज जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया और जबलपुर पुलिस ने नशे से दूरी अभियान के तहत स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल भोपाल के ग्राम जगदीशपुर में। मुख्यमंत्री ने की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा। संसद का मानसून सत्र सोमवार से। केंद्र सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चंदेरी में विद्युत उपकेंद्र का किया लोकार्पण और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, बारिश को मौसम चल रहा है और बारिश को मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी हवाएं, प्राकृतिक सुंदरता लेकर आता है और यह मौसम जितना मन को सुकून देता है उतना ही अपने स्वास्थ्य के प्रति चुनौतीपूर्ण होता है। भैयारों, बारिश के मौसम में नमी बढ़ जाते हैं, जैसे कहा है कि बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद पनपती है और जाके कारण अपन को कहा है कि सर्दी जुकाम, वायरल बुखार, डेंगू मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में कहा है कि अपन को सावधानी बरतनी चाहिए और बारिश के मौसम में अपन को स्वच्छता को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर अपन कहीं बाहर से आएँ तो अपने हाथ पैर अच्छे से साबुन से धोएं और अगर अपन बारिश के पानी में गीले हो गए हैं तो अपन जो गीले कपड़े हैं बाएँ अपन अधिक देर तक ना पहने, तो क्योंकि जैसे कहा है कि त्वचा संबंधी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और बच्चों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखें। बारिश के समय अपन क्या करें कि उबले हुए पानी पिएं, खुले स्थानों पर मिलने वाले पेय पदार्थ और बर्फ़ का उपयोग बिल्कुल ना करें और पीने को पानी जो है हमेशा ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जैसे कहा है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। भैयारों, अपनी चर्चा चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम और सुनते जी संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भैयारों आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैयारों अपन चर्चा कर रहे थे बारिश के मौसम में अपन अपने स्वास्थ्य को ख्याल कैसे रखें। तो जब मौसम में अपन कोशिश करें कि हल्को ताज़ा और घर को बनो भोजन करें, मौसमी फल हैं, दालें हैं, अंकुरित अनाज हैं, दूध दही है, इन जैसे पौष्टिक पदार्थों को सेवन करें और तला भुना बासी या खुले में रखा हुआ भोजन बिल्कुल ना करें। और सड़क किनारे जो मिलते हैं ना कटे हुए फल देते हैं, चाट देते हैं, इनको खाने से बचें, जहाँ से कहा है कि संक्रमण होवे की संभावना बनी रहते हैं। भैया बारिश के मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जाके लाने अपन विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला है, अमरूद है, संतरा है, नींबू है, इनको सेवन करें। अदरक, हल्दी, तुलसी, काली मिर्च जैसे प्राकृतिक मसालों को अपन संतुलित उपयोग करें। पर्याप्त नींद लें और व्यायाम भी करें, जैसे कहा है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाते हैं, जैसे कहा है कि मच्छर भी तेज़ी से पनपते हैं, तो ये मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलाते हैं और मक्खियों के पनपने से हैजा, डायरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं। तो अपन कोशिश करें कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी की टंकियों, कूलर और गमलों को नियमित साफ करते रहें, रात में मच्छरदानी को प्रयोग करें और मच्छर भगाने वाले साधनों को उपयोग करें और अपने जो पालतू पशु हैं बिनके आसपास भी अपन गंदगी ना रहने दें, उनके गोबर को अपन उचित निपटान करें। और बारिश में भीगने के बाद अपने शरीर को तुरंत सुखाएं। यदि अपन को त्वचा पे खुजली, लाल चकत्ते या जलन महसूस होए तो अपन तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सूती कपड़ा पहनने से शरीर को आराम मिलता है, तो अपन कोशिश करें कि सूती कपड़ा पहने। बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते हैं, तो जैसे कहा है कि वे जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो बिना अपन समय पर पौष्टिक भोजन दें, पर्याप्त आराम करवाएं और अगर कोई परेशानी या बीमारी के लक्षण दिखें तो तुरंत अपन डॉक्टर को दिखाएं। अगर अपन इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बारिश के मौसम में अपन अपने स्वास्थ्य को अच्छे ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ मौसम को भी आनंद उठा सकते हैं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सुपिराम और सुनते हैं जिस संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भैया रो, आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में आपको पुनः स्वागत है। भैया रो, आज है 18 जुलाई और ये दिन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता, समाज सुधारक और नोबल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। भैया रो, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अपन उनके जीवन के संघर्ष और मानवता के प्रति उन्होंने जो योगदान दिया है तो वह योगदान को सम्मान दें और लोगों में समाज की सेवा की भावना को जागृत करें। भैया रो, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के साथ होने

वाले नस्लीय भेदभाव का डटकर विरोध किया और चाकिलाने उन्होंने लंबे समय तक आंदोलन चलाया। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से लोगों को संगठित किया और लोकतंत्र तथा समान अधिकारों के लिए जन आंदोलन किया। तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लगभग 27 वर्षों तक जेल में रखा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने समझौता नहीं किया, अहिंसा के द्वारा अपना आंदोलन जारी रखा। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने शांति और संवाद का मार्ग अपनाया। उनके प्रयासों से रंगभेद व्यवस्था का अंत हुआ और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित हुआ। भैयारों 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और विकास पर ध्यान दिया। नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। भैयारों नेल्सन मंडेला ने अपने संघर्ष, धैर्य और नेतृत्व से ये सिद्ध किया कि सत्य, न्याय और समानता के लिए किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका जीवन मानवता, लोकतंत्र, क्षमा और सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। भैयारों चर्चा अपनी चलत रहेगी, लेकिन आज है शनिवार और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे अपने कार्यक्रम फुल बगिया का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो तनक उनसे बतिया लें, फिर आप लोगों से भी चर्चा करेंगे।

बच्चों आपके अपने कार्यक्रम फूल बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों बारिश का मौसम चल रहा है और चारों तरफ हरियाली होती जा रही है। बच्चों हरियाली कितनी सुंदर लगती है। बच्चों ये पेड़ पौधे जो हैं प्रकृति का सबसे सुंदर और अनमोल उपहार हैं। इनके बिना पृथ्वी पर अपन जीवन की कल्पना करना कठिन है। पेड़ अपन को शुद्ध हवा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और अनेक प्रकार की औषधियाँ देते हैं। वे पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखते हैं। बच्चों अपन देख रहे हैं कि आजकल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और पेड़ों की कटाई के कारण अपना वातावरण पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। इसलिए अपन सभी का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। बच्चों पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, ये केवल एक नारा नहीं है बल्कि अपने उज्जवल भविष्य का संकल्प है। बच्चों पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वे दिन रात बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा करती हैं। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और इसी ऑक्सीजन के कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। बच्चों पेड़ों से हमें आम, अमरूद, नींबू, जामुन, आंवला, अन्य स्वादिष्ट फल भी मिलते हैं और इनके जो फूल होते हैं वो वातावरण को सुंदर और सुगंधित भी बनाते हैं। और कई पेड़ों से अपन को औषधि भी मिलती है, जैसे नीम है, तुलसी है, पीपल है, अर्जुन है। बच्चों पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ों की बहुत भूमिका है। बच्चों पेड़ों के कारण मौसम संतुलित रहता है और वर्षा भी समय पर होती है। यदि पेड़ अधिक होंगे तो गर्मी कम होगी, हवा शुद्ध होगी और अपने चारों तरफ हरियाली दिखाई देगी। बच्चों पेड़ मिट्टी को बहने से भी रोकते हैं, भूजल स्थल बनाए रखने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए बच्चों अपन अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और बच्चों अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपन अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखरेख करें, देखभाल करें और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों चर्चा अपनी चलती रहेगी, अब थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बच्चों अब ये पन्ने सुने ये प्यारा सा गीत, और अपन चर्चा कर रहे थे कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण बचाएं। बच्चों हर वर्ष लाखों पेड़

0: बैठ जाते हैं और इसकी जगह नए पौधे लगाना भी बहुत आवश्यक है। और एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर अनेक लोगों को छाया, फल और स्वच्छ हवा देता है। और यदि अपन हर वर्ष एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें तो हमारा देश या पूरा विश्व हरा भरा हो सकता है। बच्चों, पेड़ों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण स्वच्छ और प्रदूषण कम होता है, वर्षा का संतुलन बना रहता है। अपन देखते हैं ना कि पेड़ों पे छोटे छोटे पक्षियों के घोंसले बने होते हैं, पेड़ों से फल, फूल, लकड़ी और औषधियाँ मिलती हैं और गर्मी कम होती है और पेड़ों से वातावरण ठंडा रहता है। बच्चों, पेड़ों से पृथ्वी सुंदर हरी भरी बन सकती है। तो बच्चों, इसके लिए हर वर्ष कम से कम अपन को एक पौधा लगाना चाहिए और लगाए गए पौधे की नियमित देखभाल करें, बिना आवश्यकता के पेड़ों को न काटें और दूसरों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। स्कूल के आसपास, घर के आसपास साफ सफाई रखें और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लें। बच्चों, पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। इनके बिना स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक बच्चों को पेड़ों से प्रेम करना चाहिए और अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यदि आज हम उनकी पेड़ लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। तो बच्चों, आज हम सबको संकल्प लेना है कि पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं और धरती माँ को स्वर्ग बनाएं। बच्चों, चर्चा अपनी चलती रहेगी और अब सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है नदियाँ हमारी जीवन धारा, और इसके बारे में आपको बताएंगी सुमन लता श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: बच्चों, नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं। आज हम जीवन के इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण इसलिए कि मानव जीवन ही जल पर आधारित है और नदियाँ जल का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आपने तो सुना होगा कि जल है तो कल है। हमारे देश में बहुत सी नदियाँ बह रही हैं और अपने जल से जनजीवन को संतृप्त कर रही हैं। नदियों की महानता उनकी परोपकारी प्रवृत्ति में ही है। आपने पढ़ा ही होगा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। बच्चों, ये नदियाँ हमारे जीवन को सुखी व समृद्ध करने के लिए ही बहती हैं। जिस प्रकार से परोपकारी जन अपने लिए नहीं, देश व समाज के कल्याण के लिए जीते हैं, उसी प्रकार नदियाँ भी निरंतर जन कल्याण के लिए ही प्रवाहित होती हैं और अपने उद्गम स्थल से निकलकर समुद्र में मिलने से पहले अपने मार्ग में पड़ने वाले समस्त तटवर्ती क्षेत्रों को हरा भरा करने का पुनीत कार्य करती हैं। बच्चों, नदियों को हमारी जीवन रेखा इसलिए कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ से आज तक हमारा जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नदियों पर ही आश्रित और आधारित रहा है। हमारे जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नदियों के माध्यम से या नदियों की सहायता से संचालित होती आई हैं। नदियाँ जीवनदायिनी शक्ति होती हैं, तभी नदियों को माँ कहकर बुलाया गया है। हमारे देश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, नर्मदा, चंबल, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, महानदी, ताप्ती, मांडवी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार आदि हैं। ये केवल नदियाँ नहीं हैं, ये हमारी जीवन धारा का प्रतीक हैं। हमारी विकास यात्रा में नदियों का महानतम योगदान है। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यमुना का तट श्री कृष्ण की लीला स्थली रहा है तो सरयू का तट भगवान राम के चरित्र का साक्षी है। बच्चों, विश्व की सभी महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही फलीभूत हैं। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता नदी के किनारे ही फली फूली है। आज भी उसके अवशेष इतिहास के उस कालखंड को हमारे समक्ष सजीव कर देते हैं और हमें सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता की पहचान देते हैं। नदियों का भौगोलिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व तो है ही, इनका सांस्कृतिक महत्व भी उल्लेखनीय है। देश के लगभग सभी प्रमुख नगर नदियों के किनारे

ही बसे हुए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, पटना, गया, जमशेदपुर, सूरत, आगरा, मथुरा आदि नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। नदियों के तट पर बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान नदियों के तट पर ही स्थित हैं। गंगा, यमुना, क्षिप्रा, गोदावरी आदि के तटों पर तो स्थित तीर्थानों में पूरे वर्ष धार्मिक पर्व आयोजित होते हैं। गंगा नदी का सबसे पवित्र नदी माना गया है। नदियां हमारी राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक हैं। स्थान, वर्ग, रंग, जाति भेद जैसे संकीर्ण तथ्यों से परे रहकर निर्विकार भाव से अविरल बहते हुए ये नदियां पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़े रहती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आदिकाल से ही खेती के लिए, पीने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए, पशुपालन के लिए और जीवन की सभी गतिविधियों के लिए हम नदियों के जल पर आश्रित रहे हैं। हमारा व्यापार और उद्योग धंधों का अस्तित्व बहुत हद तक नदियों पर निर्भर है। कल कारखानों की स्थापना और संचालन, कच्चे माल की आपूर्ति और परिवहन में ये नदियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियों पर बांध बनाकर जहाँ एक ओर हमने नहरों का जाल बिछाया और विशाल भूभाग को हरा भरा किया, वहीं नदियों के जल से उत्पन्न हुई बिजली से हमारे घर रोशन होते हैं, हमारे उद्योग धंधे चलते हैं। बच्चों, उत्तर भारत की अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और पहाड़, जंगल और मैदानी भाग को जीवन दान देते हुए या तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं या अन्य नदियों के साथ उनका संगम हो जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, बेतवा, चंबल आदि, नर्मदा अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। गोवा की मांडवी नदी और दक्षिण भारत की अनेक नदियां भी अरब सागर में मिल जाती हैं। तेलंगाना, उड़ीसा क्षेत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। बच्चों, हमारे भारत का प्रमुख धार्मिक आयोजन है कुंभ मेला, जो कि हर 3 साल बाद क्रम से प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। एक और एक स्थान पर यह आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में पड़ता है। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल, हरिद्वार में पवित्र गंगा तट, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी के तट पर आयोजित होने वाला यह मेला हमारी सांस्कृतिक एकता का स्तंभ है। बच्चों, नदियां रोजगार भी उपलब्ध कराती हैं। नौका चालन, मछली पकड़ना आदि कार्यों के माध्यम से मछुआरे अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। नदियों में पाई जाने वाली वनस्पतियों में अनेक औषधीय गुण होते हैं। नदियां असंख्य जल जीवों का घर होती हैं। अनेक स्थानों पर विलुप्त प्राय जल जीवों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। जैसे चंबल सेंचुरी में डॉल्फिन और घड़ियाल का, खेल जगत में भी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे नौकायन, रिवर राफ्टिंग, तैराकी आदि। केरल की बोट रेस तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नदियों की मूल प्रकृति हमें पल पल यह संदेश देती है कि हम कैसे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। बिना रुके आगे बढ़ते रहना और सबका कल्याण करना मानव जीवन को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की लगातार प्रेरणा देता रहता है। बच्चों, आज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है प्रदूषण, जिससे जल प्रदूषण अत्यंत चिंता का विषय है। मैंने अभी आपको बताया कि नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। नदियाँ या और कोई भी जल संसाधन हो, हम आज लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। छोटे स्तर पर हमने नदियों को कचरा डालने का स्थान बना लिया है, तो बड़े स्तर पर कल कारखानों से निकला हुआ रसायन युक्त दूषित जल नदियों को जहरीला बना रहा है। नदियों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक सामग्री प्रवाहित नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं।
बल्कि

0: पूरी प्राकृतिक श्रृंखला भी प्रभावित हो जाती है। हवा को हमने प्रदूषित कर ही रखा है, जल को भी प्रदूषित करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बच्चों, आपको मालूम है पूरा धरती पर शुद्ध जल की मात्रा केवल 2.7% है और इस 2.7% की 0.003% मात्रा नदियों के जल के रूप में है। जरा सोचो तो बच्चों, इतनी बड़ी आबादी और इतना लघुत्तम जल स्रोत, वह भी हम लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो जल से प्रारंभ हुई मानव सभ्यता जल के अभाव में ही नष्ट हो जाएगी। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? जल है तो कल है। हम नदियों को माँ कहते हैं और उन्हीं के जल को प्रदूषित करते हैं। अब भी समय है हम नदियों का जल स्वच्छ रखें, उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। बच्चों, भारत सरकार ने नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। यह बड़ा ही सकारात्मक कदम है। गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, उसे भारत सरकार स्वच्छ करवा रही है। ये कार्य केवल सरकार का ही नहीं वरन सभी भारतवासियों का है, क्योंकि भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब जल होगा, नदियां स्वच्छ होंगी और जल प्रदूषण समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। बच्चों, कल्पना करो कि यदि शुद्ध जल नहीं होगा, नदियां सूख जाएंगी, तो हमारा जीवन ही संभव नहीं होगा। इसलिए बूंद बूंद जल बचाओ, नदियों को बचाओ, उनको प्रदूषित ना होने दो, जल का अपव्यय ना करो, जल प्रदूषित ना करें। नदियों को माँ कहने का मूल कारण यही था कि हम उन्हें सुरक्षित रखें, उनका सदुपयोग करें। जल के बिना यह हमारी सुंदर वसुंधरा, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, जिसकी वादियाँ हम सभी को अत्यधिक सुख प्रदान करती हैं, हमारे नेत्रों को सुंदरता निहारने का अवसर प्रदान करती हैं, नेत्रों को सार्थकता प्रदान करती हैं, मानव जीवन ही संभव नहीं हो पाएगा। बच्चों, इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना ही होगा और हमारे देश के भावी नागरिकों और युवा वर्ग को इस विषय में सचेत होना होगा। हम सबको एकजुटता के साथ प्रयास करके नदियों को साफ व सुरक्षित रखना होगा। देश की सभी नागरिक और सरकार मिलकर एक और एक 11 हो जाएं, तो उनके सहयोग से इसकी जीवन नदियों को हमेशा के लिए सूखने व प्रदूषण की समस्या से बचाया जा सकता है। ये तभी संभव है जब हम सब दृढ़ संकल्प लें कि हम नदियों को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। बच्चों, कल के बच्चों का कैसा हो वसंत, नदी प्रदूषण का जब हो अंत, करोड़ों हाथों को आगे आना है, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना है।
1: बच्चों, अब ये अपन ने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था नदियां हमारी जीवन धारा, और इसके बारे में आपको बता रही थी सुमन लता श्रीवास्तव। बच्चों, इस वार्ता के माध्यम से अपन ने समझा ना कि नदियां हमारी जीवन धारा हैं, नदियों को अपन को प्रदूषित होने से बचाना है और साथ ही साथ पेड़ भी लगाना है, और लोगों को भी समझाना है कि अपने इस वार्ता के माध्यम से एक चीज़ और समझी कि अपनी पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल है वो कितना कम है और उसे अपन प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो इस प्रदूषण के लिए रोकने के लिए अपन को स्वयं आगे आना है और लोगों को भी इसके बारे में प्रेरित करना है। बच्चों, अपनी जो चर्चा का दूसरा विषय है वो है मेहनत सफलता की कुंजी है। बच्चों, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई खिलाड़ी तो कोई कलाकार, लेकिन सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती बल्कि उसे पाने के लिए निरंतर मेहनत करना पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, और मेहनत वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। जो विद्यार्थी ईमानदारी

लगन और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं वो जीवन में अवश्य सफल होते हैं। बच्चों, मेहनत का अर्थ है पूरी लगन, ईमानदारी और नियमितता के साथ अपने कार्य को करना। जीवन में कोई भी लक्ष्य बगैर मेहनत के नहीं किया सकता। बच्चों, पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, हर जगह सफलता के लिए अभ्यास और परिश्रम आवश्यक है। जो विद्यार्थी रोज समय पर पढ़ाई करते हैं, अपने गृह कार्य को पूरा करते हैं, नई बात सीखने का प्रयास करते हैं, वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। और दूसरी ओर जो विद्यार्थी केवल अंतिम समय में पढ़ाई करते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, मेहनत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी कार्य को अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हम उसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बच्चों, दुनिया के सभी महान लोगों ने कठिन परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त की। वैज्ञानिक, खिलाड़ी, लेखक, सैनिक और शिक्षक सभी ने अपने जीवन में लगातार मेहनत की। उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बच्चों, विद्यार्थी जीवन जो है वो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और यदि अपन इस समय मेहनत करेंगे तो अपन अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो बच्चों, अपन को ये संकल्प लेना है कि अपन नियमित मेहनत करेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो, लेकिन अगर अपन मेहनत करेंगे तो अपने अपने लक्ष्य को अपन प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, चर्चा अब चलती रहेगी, अब लेते हैं थोड़ा सा विराम और सुनते हैं ये संगीत।

0: चिड़िया चू चू करती है।
1: बच्चों अभी अपन ने सुना है प्यारा सा गीत और अब होगी चलवे की बेला, तो सभी बच्चों को सुधांशु भैया का ढेर सारा प्यार।

भैयानों, अब होगी चलबे की बेला और चलते चलते हम अपने किसान भैयानों से यही कहेंगे कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें और पानी का जमाव ना होने दें, और अपने कूलर, हैंडपम्प इनके आसपास दवाई का छिड़काव करते रहें। जैसे कहा है कि मक्खी और मच्छर नहीं पनपेंगे तो अपन कई प्रकार की बीमारियों से जब बारिश में बच सकते हैं। तो सभी किसान भैयानों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशीत कुमार।
2: नीति आयोग ने 17 जुलाई को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। शुभमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार
2: शुभमय। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स यानी कि निवेश अनुकूलता सूचकांक क्या है और इससे हम क्या समझें?
3: अगर हम सहज भाषा में इसकी बात करें तो कोई अगर किसी राज्य में जाके अपना बिजनेस करना चाहता है तो वो स्टेट में करना कितना संभव है और या कितना असंभव है, बस यही है इन फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। हम इसको आगे इस पर बहुत सारे बिंदु पर ध्यान दे सकते हैं कि हम कहते हैं कि करना संभव है, करना असंभव है, तो संभव का मतलब क्या होता है, असंभव का मतलब क्या होता है, किस जगह पे कौन सा राज्य क्या सुविधा देती है, कहाँ पे अड़चने आ जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात भी करें तब भी बात वहीं पे से शुरू होती है कि स्टेट में काम करना आराम है, आसान है या दुष्कर है। तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का बेसिक या जिसे कहते हैं अंडरलाइंग पॉइंट। और आपने जैसे बताया सही कि ये नीति आयोग ने ये इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स एक जारी किए हैं और ये सिर्फ जैसे आपको मैं बता दूं ये वाला चीज इज पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, बट इस तरीके का स्टेट्स की जैसे मैं कहूँ कि स्टेट्स का कितना यूजफुल है, कितना किस तरीके का स्टेट्स के पॉलिसीज हैं, इस पर बहुत सारे चर्चाएं हुई है। नीति आयोग की तरफ से ही कई सारे रिपोर्ट्स पिछले सालों में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि वो भी मोर ऑर लेस सेम चीजों को ही दर्शाता है। एक रिपोर्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या किस स्टेट्स किसने तरीके से अपने पॉलिसीज को बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर को पता चले कि भाई यहाँ जाना चाहिए या यहाँ पे जाने से क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या सहायता मिल सकती है।
2: लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें शुभमय, तो कहाँ तक ये जो इंडेक्स सामने आया है इस ग्राउंड रियलिटी को कहाँ तक दर्शाता है, किस हद तक सफलतापूर्वक दर्शाता है अगर मैं पूछूं आपसे?
3: अशीत जी, ग्राउंड रियलिटी की ही इसमें ये मापदंड है या इसका ही अनुसरण किया गया है। सिंपल बात है कि अगर एक निवेशक किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य में उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्रोडक्ट्स हैं या कौन से सर्विसेज हैं जिसपे वो स्टेट माना जाता है, अगर है तो उन प्रोडक्ट्स के बिजनेस में स्टेट कितनी सहायता देती है या कितने तरीके का अपॉर्चुनिटीज सामने प्रदान करते हैं। एक तरफ होता है इसमें कि हम अगर मोटा मोटी अगर इन चीजों को देखें कि एक तरफ तो होता है इंडिया में कि राजतंत्र यानी कि ब्यूरोक्रेसी वो कितना सहायक है या वो कितना दुष्कर है हैंडल करने में। म्युनिसिपल गवर्नेंस, म्युनिसिपल लॉ

0: कुछ अगर रिस्की प्रोडक्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके स्ट्रक्चर ही बहुत फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए किस तरह के सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीजें ही हमें दर्शाता है। और इसी चीज से एक बिजनेस पर्सन को पता चलता है कि भाई इस स्टेट में काम करना मुनासिब है या इसमें मुनासिब नहीं है। जी,
1: अनुकूलता की बात जहां आती है वहां एक तरह से ये कहें तो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के बीच में, स्टेट्स के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। हालांकि ये बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सूचकांक में आगे बढ़ने के लिए या बिल्कुल ऊपर जाने के लिए एक रेस टू द बॉटम जिसे कहें, रेस टू द बॉटम का मतलब ये है कि क्या स्टेट्स ऊपर पहुंचने के लिए सूचकांक में कुछ ऐसे अनसस्टेनेबल फिस्कल इन्वेस्टमेंट या इंसेंटिव नहीं देंगे जो कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा। आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ कहीं पर ऐसी कुछ गुंजाइश बन सकती है जहां पर कि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ ऐसे बहुत ही अनसस्टेनेबल फिस्कल इंसेंटिव दे देंगे जिसमें कि एट द कॉस्ट ऑफ लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होगा?
0: हम अगर देखें तो राज्यों में जो टैक्स की जो स्टेट लेवल टैक्सेस है, मैं म्यूनिसिपल लेवल जो लेवीज है उसको मैं इससे अलग रख रहा हूँ, स्टेट लेवल टैक्सेस है उसको करीब करीब इक्वलाइज कर दिया गया है जीएसटी के चलते। अभी किसी भी राज्य के लिए जीएसटी के अलावा कोई दूसरा सपोर्ट मैकेनिज्म देना लगभग असंभव है। और चूंकि जीएसटी इज अ नेशनल लेवल तो जो भी स्टेट जो भी करेंगे वो जीएसटी के तहत ही आएंगे, तो एक तो वो चीज है। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस भी राज्य नहीं केंद्र सरकार तय करते हैं। कस्टम्स ड्यूटी भी राज्य सरकार नहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। कुछ कमोडिटीज ऐसे हैं जिनके कस्टम्स ड्यूटी पर राज्य का बनता है तो उस पर जरूर कुछ कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन स्मार्ट स्टेट्स वही है जो टैक्सेस को इस तरह से चलाते हैं ताकि अपना बजट भी सही रहे और आगे जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम का गुंजाइश ना आए। तो ये तो रही फिस्कल चीजों की बातें अगर हम इसको छोड़े। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि बाकी और क्या चीजें हो सकता है, किसी भी इंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी को, किसी भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, खासकर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ही बात करें तो किसी भी इंटरप्राइज को चार चीजों की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एक रिस्क कवर। अगर हम इन चारों चीजों को अगर हम एक एक करके देखें, लैंड में इनफैक्ट इसमें तो प्रतिस्पर्धा उल्टा होना चाहिए। ज्यादातर राज्यों में अभी भी लैंड मामले में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस है। किसी भी राज्य में आप भारत में पहुंच जाइए, जमीन खरीदना किसी भी इंडस्ट्री के लिए और खासकर ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बाधक होता है। बड़े इंडस्ट्रीज तो अपना लॉयर्स लगा के ये लगा के वगैरह करके निकल जाएंगे, लेकिन छोटे जो उद्योग है, क्षुद्र उद्योग है, जो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए छोटे उद्योग जो होते हैं उनके लिए शहर से दूर बैठ के कोई काम करना असंभव है। उनको शहर के पास ही नहीं, शहर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पास वो उनका वो टर्नओवर में उनके पास कैपेसिटी नहीं होगा कि वो अपना चीज लेकर शहर तक जाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी भी शहर में, राज्य में अगर कितना बारीकी से वो इन चीजों को देखे हैं उस पर काफी संदेह है। राज्य लैंड इज समथिंग जिस पर लोग स्टेट्स ने अटेंशन नहीं दिया है और बहुत सारे वजह से इसको इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सो इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में एक ये चीज उभर के सामने आता है कि लैंड इश्यूज में स्टेट्स ने कितना काम किए हैं, और आप देखेंगे कि जिस स्टेट्स ने काम किए हैं थोड़ा बहुत भी अगर काम किए हैं तो वहां पे स्मॉल इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज की सक्सेस या फेलियर में लैंड का अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा होता है लेबर। हमारे देश में इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि औसतन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में हर टेक्सटाइल यूनिट में एवरेज एम्प्लॉयमेंट इज 1.5, यानी कि सिर्फ आदमी खुद और किसी से पार्ट टाइम हेल्प ले रहा है, बस यही है इंडस्ट्री कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट का चित्र। और वो चित्र इसलिए है क्योंकि लेबर को एम्प्लॉय करना, लेबर को किसी काम में रखना हमारे लिए इतना दुष्कर बना हुआ है। और इसीलिए ये भारत सरकार की अभी का जो पहल लेबर कोड्स, जो चार लेबर कोड्स आए हैं, वो एक बहुत ही बड़ा सुदूर प्रसारी सुदूर काम है कि उसने काफी हद तक ये लेबर लॉस को रिलैक्स किए हैं। अभी भी देखिए जैसे हमारे देश में कोई जैसे टेक्सटाइल की हम बात कर रहे थे या दूसरे इस तरह के यूनिट्स में लोगों की जरूरत होती है, मतलब अगर यूनिट अगर सच में अगर कामकाजी का हो तो करीब 10,000 से 15,000 लोगों की जरूरत होती है एक यूनिट में। 10,000 से 15,000 से नीचे कोई यूनिट चल ही नहीं।

0: सकता है अगर वो सच में अगर एक्सपोर्ट मार्केट में चलेंगे। आप सोचिए 10 से 15 हजार लोग, कितने एम्प्लॉयमेंट, कितना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र खुल जाता है। लेकिन अभी भी भारत सरकार के उद्योग के बावजूद रूल ये है कि सिर्फ कि जिस यूनिट में 300 लोग हैं, यानी कि रिलैक्सेशन दिया गया है कि अप टू 300 पीपल का हायर तक रूल्स रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन 300 से ऊपर जाते ही रूल्स काफी कठिन है। अब भारत सरकार की तरफ से प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार सिर्फ यहीं तक कर सकते थे, लेकिन इसके आगे कि 300 तक इंडिया गवर्नमेंट ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो आगे चल के जो रिलैक्सेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है।
1: बिल्कुल।
0: अब हम बात कर रहे हैं 10,000 या 15,000 लोग जैसे लोगों के एम्प्लॉयमेंट का, वहां पे 300 लोग आए या ना आए उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सारे जो रिलैक्सेशन है ये बहुत बड़ी जरूरी है, तो एक वो बड़ी चीज है। तो ये रेस टू द बॉटम नहीं, ये तो रेस टू द पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी है अगर स्टेट्स अगर इन चीजों को समझे। तो एक हुआ लैंड, दूसरा हुआ लेबर, तीसरा है कैपिटल। कैपिटल के मामले में मैं समझता हूँ कि स्टेट्स को एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कैपिटल ज्यादातर आते हैं बैंक से या बड़े बड़े कंपनी से, एनबीएफसी से, जिन पर राज्यों का बहुत ज्यादा हाथ नहीं होता है। हालांकि वहां भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, वो जरूर दे सकते हैं। दूसरे जैसे फ्रीबीज वगैरह आपने टिप्पणी किया और वो बात सही है कि वो फ्रीबीज वगैरह देने के बजाय अगर इंटरेस्ट सबवेंशन दे तो बहुत काम हो सकता है। एक पॉजिटिव चीज जो स्टेट्स ने किए हैं, कुछ कुछ स्टेट्स ने किए हैं, वो है कि वुमेन ट्रेवल बहुत सारी जगह पे उसको फ्लेक्सिबल कर दिए हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में। अब जैसे बिहार में अभी शुरू हो गया है पिंक बसेस, बाकी बहुत सारे स्टेट्स में भी ये कदम लाया जा रहा है, दिल्ली में भी शुरू हुआ है कि वुमेन के लिए एक फ्री ट्रेवल का एक प्रोग्राम चल पड़ा है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो बहुत अच्छा चीज है कि वुमेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो खर्चा है वो खर्चा कम हो जाए। लेकिन साथ में चीज है सिक्योरिटी कि वुमेन जब शाम को ऑफिस घर से फैक्ट्री से आएंगे तो उस वक्त उनको सिक्योरिटी कहां तक मिलता है। अब हर वुमेन के पीछे तो एक पुलिस पर्सन नहीं खड़ा सकता है ना, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी का जो एनवायरमेंट है वो सिक्योरिटी का एनवायरमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार नहीं कर सकते ना, ये तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा सिक्योरिटी का एस्टेब्लिशमेंट पुलिस में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि वुमेन वर्कफोर्स काम में कर सके। ग्राउंड रियलिटी की आप जो बात कर रहे थे बहुत सही है कि ग्राउंड बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इस मामले में बहुत अच्छे अच्छे कदम अपनाए हैं, और इस वजह से उस स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयज का संख्या एकदम जिसे कहते हैं तेजी से आगे बढ़ा है। मैं एक एग्जाम्पल दूं दो स्टेट्स का, गुजरात और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग किया गया है, इन दोनों स्टेट्स में वुमेन एम्प्लॉयमेंट और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जहां पे वुमेन की जरूरत खास ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर से बोलिए या इवन सिंपल घड़ी मैन्युफैक्चरिंग, वॉच मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत होती है, तो वहां पे वो लोग कर पाए हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव प्रोवाइडेड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ वुमेन सिक्योरिटी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंड डेवलप कैपिटल रिस्क वाली चीज हम बाद में बात कर सकते हैं, बट ये तीनों चीजों में ही अगर स्टेट्स अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सॉल्यूशंस उनके सामने निकल के आएंगे।
1: शुभम, अगर हम बात करें ये कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो नेचुरली ये होगा ही होगा इनटू टियर्स लाइक टॉप परफॉर्मर्स। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो एस्पायरिंग स्टेट्स होंगे, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर के ब्रैकेट में होंगे, कुछ बीच में होंगे, कुछ नीचे होंगे। तो आपको क्या लगता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर ऐसा क्या करें जिससे कि जो एस्पायरिंग स्टेट्स हैं जो नीचे हैं सूचकांक में वो भी उसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएं?
0: बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज जिसका हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार कर रहे हैं, नीति आयोग खासकर इसमें बहुत काफी काफी काफी अच्छे काम किए हैं। नीति आयोग ने बहुत सारे स्टेट लेवल में क्या काम सफल हुआ है, किस स्टेट में कौन सा वाला काम सफल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा लिस्ट ही नहीं, बार बार उस लिस्ट को आगे रिवाइज करते जा रहे हैं। तो वो केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा सक्षम कार्यक्रम है कि नीति आयोग का जो देखें डेटा एनालिस केस स्टडीज और काफी डिटेल्ड मात्रा में उन्होंने काम किया है इसमें। अभी उन्होंने म्यूनिसिपल गवर्नेंस के ऊपर भी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट्स। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स जब काम कर रहे हैं, जो स्टेट्स पीछे हैं, बहुत सारे टाइम में स्टेट सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स का जारी करने का वजह यही है। ये बात सिर्फ कैश सपोर्ट की नहीं है, इनफैक्ट कैश सपोर्ट से ये काफी दूर है। ये है टू डू स्मार्ट पॉलिसीज, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग या स्मार्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कोई कैश वाली बात नहीं है, इट इज सिंपली अबाउट कि हम स्टेट्स अपना अपना जो कैपेसिटी है उसको काम में लगाएं।
1: आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभम,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नीति आयोग का निवेश अनुकूलता सूचकांक और

0: राज्यों में प्रतिस्पर्धा और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लैला मजनू फिल्म के गीत से, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना साहिर की है और संगीत मदन मोहन का।

लैला मजनू, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर ने और संगीत मदन मोहन का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत तलाश। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत SD बर्मन का।

तलाश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीत लिखा था मजरू ने और संगीत एसडी बर्मन का था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए कुछ चुनिंदा गीत। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुनिए गुलजार का लिखा गीत, फिल्म है स्वयंवर और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए कुछ चुनिंदा गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आप सुनिए शैलेंद्र का लिखा गीत, फिल्म है प्रोफेसर।

एक थी लड़की। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जे एम दुर्रानी और साथियों की आवाज़ में। गीत लिखा है विनोद ने और संगीत अजीज कश्मीरी का।

0: और कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत मदन मोहन का।
1: छड़ी रे छड़ी कैसी गले में।

0: मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाश।

20. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमीदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
6: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसैलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसैलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसैलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी

विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवरेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी।
अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के इस महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में स्मृति शेष में नमन, फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज, और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एम एस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है, जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
2: सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइज सगन बिछा दे।
4: क्या खड़ा हो गया यार?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थीं। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, एके हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
6: तूने जरू की सूरत देखी है? उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने? बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, तू सुख नहीं बात करे? उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
7: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर।
7: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा, रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज नेहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की,

0: कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें,
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994।
2: किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो।
0: पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनीले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल, सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म

के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नाबीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र नमन।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा। आउटडोर में न अच्छी लाइटिंग होती है, न आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बीताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।
2: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारतीय राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र ICCR के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, BHU कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड USA से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बॉर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा एंड underwent formal training in the sitar under the guidance of his father, Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra. An influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devbrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaro, Sankat Mochan Sangeet Samaro, Saptak Sangeet Samaro and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries such as USA, Canada, Spain,

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाय देवव्रत मिश्रा। In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashvani Varanasi, this program...

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से

0: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।